सुप्रभात। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। आज रविवार है। शक संबत 1948 की आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जुलाई महीने की 5 तारीख। हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों में हम आपका स्वागत करते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि यह विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉ जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका

0: मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं खेती किसानी, जानकारी लेते हैं बीजोपचार के महत्व के बारे में। वाचन है अनीता तिर्की का।
2: बीजों को खेत में बोने से पूर्व बीज में अनुशंसित रासायनिक को निश्चित मात्रा में मिलाना ही बीज उपचार है। बीज उपचार नहीं करने से फसल के उत्पादन में 15-20% तक की हानि देखी गई है। बीज उपचार मुख्यतः 3 विधियों से की जाती है। पहली है सूखी विधि। इस विधि में सीधा सीधा सूखे बीज में अनुशंसित सूखा रसायन ही मिलाना है। इसके लिए बीज यदि अधिक मात्रा में हो तो बीजोपचार ड्रम, थोड़ी मात्रा के लिए हो तो घड़ा या पॉलीथीन सीट या थैला लिया जाता है। इन पात्रों में 1/3 बीज लेकर अनुशंसित मात्रा की रसायन को धीरे धीरे डालकर अच्छी तरह से तब तक मिलाते हैं जब तक हर बीज के ऊपर एक परत ना चढ़ जाए। इस विधि में धान, मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन इत्यादि बीजों का प्रयोग किया जाता है। यानी धान, मक्का, गेहूं, दलहन और तिलहन का यदि बीज उपचार करना है तो सूखी विधि को अपनाते हैं। दूसरी विधि है गीली विधि। इस विधि में थोड़ी मात्रा की छोटे दानों के बीज जैसे सब्जी, दलहन, तिलहन इत्यादि के बीजों का उपचार करते हैं। इसमें अनुशंसित दवा का पेस्ट बना लेते हैं। इसके बाद बीज को डालकर अच्छी तरह लकड़ी या पॉलीथीन में या घड़ा में रखकर तब तक मिलाते रहते हैं जब तक कि सभी बीजों पर एक परत ना चढ़ जाए। इसके बाद इसे निकालकर छाया में 6 घंटे तक सुखाते हैं। जब बीज सूख जाए उसके बाद बुआई करते हैं। और तीसरा जो है वो घोल विधि है। इस विधि में कंद वाली बीज, धान या तना आदि के बीजों का उपचार किया जाता है। इसमें पानी की मात्रा के अनुसार अनुशंसित दवा को पानी में मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। बीजों को घोल में 2 घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद बीजों को निकालकर 6-8 घंटे के लिए छाया में सुखाते हैं। इसके बाद खेतों में इसकी बुआई करते हैं। बीज का उपचार ये मुख्यतः 3 विधियों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन कुछ और भी विधियां हैं जो सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे सूक्ष्म परजीवी या जीवाणु उपचार या गर्म जल द्वारा या फिर सूर्य के ताप द्वारा बीजों का उपचार किया जाता है। बीज के उपचार के लिए कई रसायन हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कार्बेंडाजीम जो बाजार में बेविस्टिन धनुष

0: हिस्टिन हिस्टास्टिन डेरोसोल के नाम से बिकती है। इसी प्रकार विटावेक्स पावर साफ सिक्सर आदि के नाम से उपलब्ध है। इसकी मात्रा होगी 2 ग्राम 1 किलो बीज के लिए। प्रति लीटर पानी की दर से बीज का उपचार करते हैं, यानी 1 किलो यदि आपने बीज लिया इसमें 1 लीटर पानी देना है और जो दवा की मात्रा है वो सिर्फ 2 ग्राम होगी। ट्यूबोकोनाजोल इसकी मात्रा है 1 ग्राम प्रति किलो बीज की मात्रा। परजीवी में ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास आदि से भी बीज का उपचार आप कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर उपचारित करना है। बीज उपचार सिर्फ रोगों के निदान के लिए ही नहीं लेकिन कीटों के उपचार के लिए भी है, फिर पोषक तत्वों के लिए भी उपचारित किया जाता है। इसमें कीटनाशक दवा जैसे क्लोरपाइरीफॉस 20 EC जो कि बाजार में ट्राइसेल डर्मेट धनुषवान रडार आदि को 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर उपचारित किया जाता है। रोगनाशी कीटनाशी पोषक तत्वों से यदि कराना है तो सबसे पहले रोगनाशी का उपचार करना है, इसके 2 घंटे बाद कीटनाशी से करना है, इससे 8 घंटे बाद सूक्ष्म पोषक तत्व से करना है और इसके 2 घंटे के बाद राइजोबियम से आप कर सकते हैं। इस तरह रोग कीट जनित बीज के निदान के साथ पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा किया जा सकता है।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में आप जानकारी ले रहे थे बीजों के उपचार के महत्व के बारे में। वाचन था अनीता तिर्की का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन।

0: जीवन में प्रायः ऐसे पल आते रहते हैं जब मन उचाट और उदास होने लगता है, एक भय पैदा होने लगता है कि कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं होने जा रहा है। अकारण मन का उदास होना अवचेतन मन की हताशा और आत्मविश्वास की कमी को प्रकट करता है। जब प्रत्यक्ष कारण हो तो भी यह खंडित विश्वास और नकारात्मक मानसिकता का प्रतीक है। मनुष्य का विश्वास तभी डोलता है और मन तभी निराश होता है जब वो ईश्वर पर अविश्वास कर रहा होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी यदि मन में ईश्वर के प्रति विश्वास और आभार का भरपूर भाव नहीं है तो इसे उसकी अज्ञानता ही कहा जाएगा। मनुष्य योनि में होना ही विश्वास और आशा का सबसे बड़ा आधार है जो कभी उसके मन को डीगने नहीं देता है। यदि उसे मनुष्य योनि मिली है तो ये सबसे बड़ा कारण है प्रसन्न और आशान्वित रहने का कि उसे आवागमन के चक्र से मुक्त करने और संसार के माया जाल से उबरने योग्य समझा गया है। उसे मनुष्य के रूप में जो समय मिला है वो हताशा और निराशा में व्यर्थ जाने देने के लिए नहीं है, इसका सदुपयोग करना आना चाहिए। दूसरी बात भय और चिंता की है जो परमात्मा को ना समझने के कारण है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अनहोनी कहा जा सके। जो हो रहा है या भविष्य में जो होने वाला है उसे रोका नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ईश्वर की इच्छा है, जिसके हम पात्र हैं वही हमें दे रहा है। इसलिए किसी तरह की चिंता और आशंका व्यर्थ है। किसी भी आशंका से दूर जब ईश्वर के न्याय पर विश्वास करना आ जाता है तो मन प्रसन्नता से भर उठता है। ईश्वर की दया का इसी से पता लगता है कि उसने सृष्टि में जितनी भी रचनाएं रची हैं उन सभी में कुछ न कुछ गुण दिए हैं। संसार में कुछ भी गुण विहीन नहीं है, भले ही राह की धूल या रोड़ा ही क्यों ना हो, हर चीज का कोई ना कोई उपयोग है। सर्वाधिक गुण मनुष्य में है। जब उसे यह आभास हो जाए कि वो कितनी अद्भुत शक्तियों का स्वामी है तो वो ऐसे गर्व की अनुभूति से भर उठेगा कि निराशा सदा के लिए उसके जीवन से पलायन कर जाएगी। ईश्वर के न्याय के प्रति आश्वस्त होना ही जीवन में हर्ष भाव का मुख्य उत्प्रेरक तत्व है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन और वाचन था दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले देशभक्ति गीत अनूप जलोटा का गाया हुआ।

आप सुन रहे थे अनूप जलोटा द्वारा गाया देशभक्ति गीत, और आइए सुनते हैं कुछ भक्ति संगीत लता मंगेशकर का गाया हुआ, शब्द रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का ही गाया हुआ एक और भजन, जिसे लिखा है पंडित नरेंद्र शर्मा ने, संगीतबद्ध किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

लता मंगेशकर के गाए इस भजन के साथ ही संपन्न हुआ आज का भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

वन गमन के समय श्री राम के शोक में व्याकुल अयोध्या के नरनारी किसी प्रकार भी उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं हुए। वे रथ के पीछे खींचे से चल दिए। प्रेम युक्त वचनों द्वारा उन्होंने लोगों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु स्नेह डोर में बंधे लोग किसी भांति लौटने को तैयार नहीं होते। शोक और परिश्रम से थके लोग जब रात्रि में सो गए तो उन्हें देवताओं की माया से गाढ़ी नींद आ गई। दोपहर रात गए श्री राम ने सुमंत्र को रथ कुछ इस प्रकार हांक ले चलने को कहा कि पृथ्वी पर उसके पहियों के निशान ना दिखें। इस प्रकार शिव के चरणों में सिर नवाकर सीता और लक्ष्मण सहित राम अयोध्या के नर नारियों को सोता छोड़कर चल दिए। सवेरा होने पर जब लोग जागे तो श्री राम को न पाकर हाहाकार मच गया। कहीं रथ के पहियों के निशान तक नहीं मिले। संताप से भरे लोग प्रलाप करते अयोध्या लौट चले। उधर सीता तथा मंत्री समेत दोनों भाई गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। रथ से उतरकर उन्होंने पतित पावनी गंगा को हर्षित होकर प्रणाम निवेदित किया।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता, महिलाओं में बढ़ता तनाव, कारण और बचाव। भेंटवार्ताकार होंगी डॉक्टर अर्चना पाठक, उनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। समय याद रखें 7:05 पर। सुबह सुरीली हर दिन की तरह आप सुनेंगे 7:15 पर। खुला आकाश का वक्त होगा 7:45 पर। समाचार प्रभात 8:00 से, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर और प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 8:30 पर। संवेद गान शिक्षा का वक्त होगा 8:45 पर। रसरंजन आप सुनेंगे 9:05 पर।

शास्त्रीय संगीत में 9:30 पर आप सुनेंगे श्री अभिराम पाठक द्वारा गाया हुआ राग देसी में आलाप और धमार। पखावज पर संगत करेंगे रामवचन पाठक और हारमोनियम पर संचाली नाग। बाल स्वभाव सुनेंगे 10 बजे से। सूत्रधार होंगे अवधेश कुमार और रानी शुक्ला। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे के। जोहार रांची आप सुनेंगे 10:30 पर। आपकी पसंद 11:30 पर। महिलाओं के लिए विशेष प्रसारण गृहलक्ष्मी आप सुनेंगे 12 बजे से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा निधि की पाठशाला। सूत्रधार होंगी निधि और खुशबू। प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। भारत भारती में आज आप 12:30 पर सुनेंगे मघी लोकगीत। कलाकार होंगे जनार्दन प्रसाद सिन्हा और साथी। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान 12:45 पर।

उप शास्त्रीय संगीत अनुरंजनी 1:20 पर 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, फिल्म संगीत 3 बजे से रांची मेलोडीज आप सुनेंगे 3:25 पर।

सांझ सरगम 4:35 पर। युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम में युवाणी आप सुनेंगे शाम 5:02 पर। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की।

0: प्रस्तुति प्रभु शरण की, खेती बारी 6:02 पर प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। आप सुनेंगे प्रश्नोत्तरी अदरक और हल्दी की वैज्ञानिक खेती के बारे में। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सविता एक्का। हमारी दुनिया कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:32 पर। आप सुनेंगे खोरठा वार्ता जलवायु परिवर्तन, वार्ताकार होंगे अजय कुमार दास। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। आप जानकारी ले रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामि चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकण्डक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्यनिर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्रिणा अश्विनीवैष्णवेन घोषितं यत् 26+2023 यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21तमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनाङ्कात् अगस्तमासस्य 23-दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलै मासस्य 20 दिनाङ्कात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है। और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि

0: पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, सुनते हैं भेंट वार्ता, महिलाओं में बढ़ता तनाव, कारण और बचाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अर्चना पाठक, उनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
2: मित्रों नमस्कार। मित्रों, हर जगह आजकल तनाव का वातावरण है, खासकर हमारी महिलाओं और माताओं में तनाव का वातावरण बना रहता है। तो हमारी माताएं और बहनें तनाव से क्यों घिर जाती हैं, क्या उसका कारण है और हम उस चीज़ों से अपना बचाव कैसे करें और कौन कौन सी सामान्य बीमारियां हो जाती हैं जिससे वो तनावग्रस्त हो जाती हैं, बातचीत करेंगे डॉक्टर अर्चना पाठक से, स्त्री रोग विशेषज्ञ। स्वागत है आपका। महिलाओं में आए दिनों तनाव का कारण क्या है? हम क्या हमारे बिगड़ती जीवन शैली है या महिलाएं दोहरी जिम्मेदारियों का वहन करती हैं, उन्हें घर का भी कार्य करना पड़ता है और बाहर की जिम्मेदारियों भी उन्हें निर्वहन करना पड़ता है?
3: जी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं ये बताना चाहूँगी कि स्वास्थ्य से हम ये समझते हैं कि दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं में खासकर अगर हम देखें तो तनाव के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि अभी कोविड का जो पीरियड था या कोविड का जो ड्यूरेशन रहा, उसमें लोगों ने काफ़ी अपने लोगों को खो दिया या फिर उनको फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत फेस करने पड़े। एक जो खुशी थी वो उनके पास नहीं रही, कारण बहुत सारे तनाव से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आगे और डेवलप हो रहे हैं। अभी अगर हम देखते हैं तो उसमें एक बहुत मेन रीज़न है कि महिलाएं अपने परिवार को अपने से आगे रखती हैं, तो जिसके कारण वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं और खान पान में पूरा ध्यान नहीं देने के कारण यहाँ पे अनीमिया उनको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो शरीर में उनके खून की कमी हो जाती है, तो वो अनीमिया के कारण भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो उनमें शारीरिक काफ़ी बदलाव आता है और वो बहुत कमजोर महसूस करती हैं। अभी थायराइड का भी काफी पहले से केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि सरकार ने अपने तरफ से बहुत कुछ किया है इसके लिए, जैसे कि आयोडीन युक्त नमक वगैरह जो उन्होंने प्रोवाइड कराया है, बट लोगों में अभी भी इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं है और महिलाओं में खासकर ये थायराइड के प्रॉब्लम भी पहले से काफी ज्यादा बढ़े हैं और इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है अभी आजकल कि जिसके कारण हाइपरटेंशन जैसे है, बीपी के प्रॉब्लम है, बीपी भी काफी बढ़ा है, डायबिटीज के केसेस हैं। और आजकल तो काफी देखा जा रहा है कि जैसे जो यंग जो महिलाएं हैं या जो युवावस्था में जा रहे हैं उनको पीसीएस के प्रॉब्लम ज्यादा हो रहे हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। वो प्रॉब्लम काफी महिलाएं फेस कर रही हैं अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण।
2: तो इस तरह की बीमारियां महिलाओं को हो जा रही है और इससे तनाव से वो घिर जाती हैं, तो बचाव कैसे करें, जो हमारी जीवन शैली है उसको कैसे व्यवस्थित करें, घर के काम और बाहर के कामों में किस प्रकार अपने आप को सामंजस्य करें, क्योंकि महिलाएं घर परिवार को देखती हैं और फिर उनके खान पान में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो खान पान और अपनी जीवन शैली को किस प्रकार व्यवस्थित करें हमारी माताएं और बहनें?
3: देखिए, जो भी प्रॉब्लम आजकल महिलाएं फेस कर रही हैं वो बेसिकली अगर हम बोलें तो वो एक अपने जीवन शैली में उनको सुधार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हम अपनी जीवन शैली में सुधार करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अगर महिलाएं शिक्षित हैं और अगर महिलाएं अपने परिवार का विकास करती हैं, अपना विकास करती हैं, तो ही उनके परिवार का विकास हो सकता है, तो ही उनके समाज का विकास हो सकता है और उसी से उनके देश का भी विकास हो सकता है। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, और इसके लिए महिलाओं को जो भी उनको पसंद है, जो भी एक एक्टिविटी पसंद है, जैसे कि योगा करना अगर उन्हें पसंद है या मेडिटेशन करना पसंद है, तो वीक में या रोज़ाना कम से कम 20 या 25 मिनट अपना एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर सकती हैं या फिर खान पान पे अपना ध्यान दे सकती हैं। अपने ऊपर ध्यान देंगी तभी वो आगे सभी चीज़ों को कैरी ऑन कर सकती हैं।
2: जी, ये जो आपने बताया कि आजकल की जो महिलाएं हैं

0: युवतियाँ हैं, किशोरी हैं, उनमें PCOD की, जैसा आपने बताया, समस्या उत्पन्न हो जाती है, खून की कमी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा खान पान प्रभावित कर रहा है, हम सही समय से खाते नहीं हैं और ज़्यादा समय तक अपने कामों में हम लगे रह जाते हैं। तो कैसे इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और किन किन चीज़ों का सेवन किया जाए?
1: देखिए, इसमें जो आहार उन्हें लेना चाहिए वो प्रोटीन युक्त आहार हो, जैसे कि अगर वो अंडा ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं, चना ले सकती हैं, तो हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है। मेनली है कि स्ट्रेस ना लें बातों का, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, और बाहर के जो जंक फूड हैं जो आजकल बहुत पैकेज्ड आइटम आ रहे हैं वो भी महिलाओं को या युवतियों को काफ़ी असर कर रहे हैं, क्योंकि वो आइटम कहीं ना कहीं जाके उनके हार्मोन में इम्बैलेंस पैदा करते हैं और उनमें कई तरह की बीमारियां फिर आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा, जो पहले नहीं होती थी, मोस्टली 40-50 ईयर्स के बाद ही होती थी, आजकल काफ़ी यंगर जनरेशन में भी हम उन बीमारियों को देख पा रहे हैं क्योंकि इम्यूनिटी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है।
0: जी, थायराइड या एनीमिया किसी को हो जाता है तो इसका पहचान क्या है, किस तरह से पहचान लें और हम अपना इलाज शुरू कर दें और अपनी जीवन शैली को हम सुधार करें?
1: ये दो तरीके से होता है, या तो हाइपोथायराइड हो सकता है या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो अगर हम देख रहे हैं कि 2-3 महीने में अगर उसका महिला का वजन अत्यधिक बढ़ रहा है या फिर अत्यधिक घट रहा है तो महिला को अपने ऊपर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, इसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी होता है, जैसे कि पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो जाते हैं या कम ही अंतराल पे हों बट जल्दी जल्दी होते हैं, और महिलाओं में थकान बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है, पाल्पिटेशन होने लगता है, शरीर में पसीना आना या बहुत ज्यादा ठंड लगना, ये सब अगर कारण आ रहे हैं तो ये थायराइड की पहचान है। और इसका उपाय भी बहुत सिंपल है, मतलब महिलाएं अगर अपने ऊपर ध्यान दें तो इसकी एक छोटी सी गोली आती है जो सुबह नाश्ते के पहले खानी होती है, उसको रूटीन में लें, उसको रूटीन से अलग ना जाएं अपने, और अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें तो वो बहुत हद तक ठीक हो सकते हैं। और दूसरा, एनीमिया में भी है कि खून की कमी हो जाती है तो उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा अपने को कमजोर महसूस करती हैं, और खासकर गर्भावस्था में, जो हम देखते हैं कि गर्भावस्था में एनीमिया जो है लेडीज स्पेशली झारखंड में है बहुत ज्यादा कॉमन फैक्टर है, कि सबको मोस्टली यहाँ पे 8 या 7 हीमोग्लोबिन हम पाते हैं डिलीवरी के दौरान। जब डिलीवरी का प्रॉब्लम आता है तो उसमें महिलाएं फिर पोस्टपार्टम हिमरेज के कंडीशन में आ जाती है, ताकि जैसे डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा उनको ब्लीडिंग कभी कभी होती है और उनका लाइफ सेव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो शुरू से ध्यान दें इन सब बातों को, जो आयरन की गोलियां भी मिलती हैं वो भी नियमित रूप से नहीं लेती हैं, तो अपने स्वास्थ्य पर अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहेंगे।
0: और यही बीमारी तनाव का कारण बन जाती है।
1: जी जी। PCOD जो है बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसमें हम ये बोलते हैं कि जो बच्चेदानी रहती है उसमें या फिर अंडाशय जो रहता है उसमें बेसिकली गांठ बन जाता है, जो कि हार्मोन के डिसबैलेंस से होता है, और मोस्टली जो आजकल यंगर जनरेशन है वो जो बाहर का जो खान पान ले रहे हैं, या जो ओबेसिटी भी एक वन ऑफ द फैक्टर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या बाहर के खान पान जंक फूड से, इसका रिजल्ट ज्यादा बढ़ा है। अभी बेसिकली एडोलेसेंस में ये बोलना चाहेंगे कि वो बाहर का खान पान कम कर दें, एक्सरसाइज करें और वाटर इनटेक अपने बॉडी में बढ़ाएं। इन सब चीज़ों से PCOD या PCOS की जो प्रॉब्लम है, इससे महिलाओं में भी बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी बढ़ जाती है और चेहरे पे या शरीर पे अत्यधिक बाल आने लगते हैं, स्किन थोड़ी मोटी हो जाती है, गले के पास एक काला पिगमेंटेशन डिपॉजिट हो जाता है। जब वो अपनी जीवन शैली को सुधारेंगे तब वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और इसका बेसिकली अगर वो पहले होता है कि जो हम लोग मॉडर्न में दवाइयाँ देते हैं 2-3 महीने देते हैं, अगर उससे वो कंट्रोल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बट वो अपने अगर जीवन को नहीं सुधार पाते हैं तो फिर सर्जरी फिर एक ऑप्शन रह जाता है।
0: यदि नहीं सुधार करेंगे जीवन शैली में बदलाव नहीं लाएंगे तो बीमारियां बढ़ती जाएंगी। महिलाएं हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या सलाह देंगे हमारे सुनने वाली माताओं बहनों को?
1: महिलाओं में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जागरूक होने की, इसके लिए उनका एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर एजुकेशन उन्हें मिलना चाहिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दें, अपने हेल्थ हाइजीन पे ध्यान दें, और एक प्रॉपर समय पे डॉक्टर से मिलके जो नियमित एक चेकअप होता है वो कराना चाहिए, और अपने जो बोलते हैं हम लोग हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मतलब सबसे ज़्यादा धनी हैं उस मामले में। तो मैं वही बोलूँ कि अपना प्रायोरिटी रखना चाहिए, बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी।
0: हेल्थ इज़ वेल्थ, यदि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है तो दुनिया की सारी दौलत आपके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रचना पाठक आज आप इस कार्यक्रम में आए, और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। नमस्कार,
1: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, महिलाओं में बढ़ता तनाव कारण और बचाव। भेंट वार्ता का थी डॉक्टर अर्चना पाठक, उनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल।

आइए सुनते हैं सुबह सुरीली। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म तपस्या का ये गीत, जिसे लिखा है एमजी हशमत ने, संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने, स्वर किशोर कुमार और आरती का।

फिल्म शारदा के गीत अभी आप सुन रहे थे। राज कपूर, मीना कुमारी ने इसमें किरदार निभाया था। शब्द रचना थी राजेंद्र कृष्ण की, संगीत था सी रामचंद्र का, स्वर था लता मंगेशकर और आशा भोसले का।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म हीरो का ये गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और मनन उदास ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: यदि माँ एचआईवी से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की एचआईवी जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को एचआईवी के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: और आइए अब सुनते हैं फिल्म बॉबी का ये गीत, लता मंगेशकर का गाया हुआ। शब्द रचना है आनंद बक्सी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म गोलमाल का ये गीत। शब्द रचना गुलजार की, संगीत आर डी बर्मन का, स्वर किशोर कुमार का।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म गोलमाल के इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ आज सुबह सुरीली आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं खुला आकाश, सुनते हैं विश्व फलक पर हिंदी कविता। वार्ताकार हैं डॉक्टर रवि भूषण।
1: स्थान विशेष और भाषा विशेष में सीमित केंद्रित रहने के बाद भी एक बड़ा कवि किसी स्थान विशेष और भाषा विशेष में बंधा नहीं होता। कवि विश्व नागरिक है और उसकी चिंता में यह समस्त चराचर जगत है। मनुष्य होकर भी उसका संसार केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, पूरी प्रकृति पृथ्वी से आकाश तक सभी कविताओं में ध्वनित चित्रित वर्णित होते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि कहा जाता है। तुलसी, कबीर, मीरा, जायसी जैसे भक्तिकालीन कवियों के साथ हिंदी के अन्य कई मूर्धन्य कवि भी इसी आधार पर मात्र हिंदी कवि न होकर भारतीय कवि हैं, जिन्हें हम उनकी वैश्विक चिंताओं के कारण विश्व कवि भी कह सकते हैं। कवि की काया वर्तमान में रहती है, पर उसकी कविताओं में एक साथ तीनों काल, स्मृति, यथार्थ और कल्पना के रूप में विद्यमान होते हैं। कवि विजनरी होता है, भविष्य दृष्टा और स्वप्नदर्शी। उसकी रचनाशीलता का महत्व किसी रचनाशील समाज में ही समझा जा सकता है। हिंदी कविता का इतिहास हजार वर्ष से अधिक का है, सरहपा से लेकर आज तक। इस सुदीर्घ काल यात्रा में हिंदी कविता विकास के कई चरणों से गुजरी है। यह काव्य समृद्धि चकित विस्मित करती है। कविता का विषय बदला, रूप शिल्प बदला, इस सतत परिवर्तनशीलता के साथ वह जिस मूल भित्ति पर अवस्थित होती है वह प्रायः सभी भाषाओं की कविताओं में लगभग समान है, क्योंकि कविता निर्माण करती है। मुक्तिबोध ने कविता को कालयात्री कहा है और यह लिखा है कि वह कहीं भी खत्म नहीं होती। कविता की यात्रा कई रूपों में होती है। छापे खाने के आविष्कार और पुस्तकों के प्रकाशन के बाद कविता भौगोलिक और भाषाई सीमा में बंधी नहीं रही, वाचिक और मौखिक परंपरा में भी वह भ्रमण करती रही है। पर अपने देश और भूभाग से निकलकर वह दूसरे देशों और भूभागों में कम पहुंचती रही थी। 21वीं सदी में हिंदी कविता जिन रूपों में विश्व फलक पर है उस रूप में वह पहले नहीं थी। एक ध्रुवीय विश्व और भूमंडलीकरण तथा विश्व ग्राम के दौर में हिंदी कविता ने अपनी सर्वत्र उपस्थिति दर्ज कराई और यह उपस्थिति अनेक रूपों में है। 19वीं शताब्दी के अंत से पहले हिंदी की किसी प्रमुख काव्यकृति का अनुवाद अंग्रेजी में नहीं हुआ था। यूरोपीय उदासीनता केवल हिंदी कविता और साहित्य के प्रति न होकर पूरे भारतीय साहित्य और ज्ञान के प्रति थी। मैकाले के उस सुप्रसिद्ध कथन की याद अब भी की जाती है कि भारत का सारा साहित्य और ज्ञान भंडार एक अलमीरा में है। समय बदला, दृष्टि बदली। 19वीं सदी से जिस तुलनात्मक भाषा साहित्य और अनुवाद कर्म का आरंभ हुआ वह 20वीं सदी के अंत तक उस मुकाम पर पहुंच गया जिसे देखकर आश्चर्य होता है। गारसा दत्तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे हिंदी साहित्य के आरंभिक इतिहासकारों के बाद भी उस समय हिंदी कविता की पहचान की बात तो दूर रही, प्रमुख काव्यकृतियों के अनुवाद भी फ्रेंच और अंग्रेजी में नहीं हुए थे। 1872 ईस्वी तक यूरोप के अधिकांश प्राच्यविद विद्वान संस्कृत, पाली और प्राकृत के अध्ययन में जुटे थे। ब्रिटिश म्यूजियम और प्राय सभी यूरोपीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में हिंदी की न तो पुस्तकें थीं न पांडुलिपियां। 19वीं सदी में अनुवाद को हतोत्साहित किया गया और हिंदी साहित्य के प्रति एक नकारात्मक और निषेधात्मक दृष्टिकोण था। 19वीं शताब्दी के 70 के दशक में पहली बार यूरोप के पुस्तकालयों में हिंदी की कुछ पुस्तकों और पांडुलिपियों को जगह मिली। ब्रिटिश भाषा शास्त्री जॉन बिन्स ने 1872 में द इंडियन एंटीक्वेरी के

0: प्रवेशांक में यह बताया कि यूरोप के अनेक ओरिएंटल विद्वान संस्कृत, पाली और प्राकृत के गंभीर अध्ययन में लगे हुए हैं। वे इन भाषाओं और इनमें रचे गए साहित्य के प्रति गंभीर थे। बिन्स ने पुरानी हिंदी पांडुलिपियों की खोज अनेक स्थलों पर की। ब्रिटिश म्यूजियम में उन्हें हिंदी की एक भी पांडुलिपि नहीं मिली। बोडेलियन में उन्हें चंद की एक पांडुलिपि मिली जिसे संस्कृत कविता के अंतर्गत शामिल किया गया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में मात्र आधा दर्जन हिंदी पुस्तकें थी। बिन्स ने मध्यकालीन हिंदी ग्रंथों को साहित्यिक उपलब्धियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना था, पर वे तुलनात्मक भाषा शास्त्र की दृष्टि से हिंदी को देख रहे थे। ब्रिटिश राज के औपनिवेशिक प्रशासकों ने हिंदी साहित्य को सामान्य रूप से खारिज किया था। उनके अनुसार यह साहित्य अर्थहीन और सामान्य था। 1876 की उत्तर पश्चिमी राज्य और अवध की रिपोर्ट में यूरोपीय दृष्टि से हिंदी की मात्र 4 पुस्तकों को सामान्य मूल्य का माना गया था, जिसमें हिंदी की एक भी पुस्तक का उल्लेख नहीं था। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के सहयोगियों साथियों का साहित्य समय था। 1878 और 1883 की रिपोर्ट भी अनुकूल नहीं थी। उस समय केवल ब्रॉकहास हिंदी साहित्य के संबंध में कुछ कह रहे थे और चंद वरदाई, कबीर, तुलसी का नामोल्लेख कर रहे थे। इंग्लैंड में ही नहीं, जर्मनी में भी स्थिति समान थी। वहां की सबसे पुरानी ओरिएंटल सोसाइटी जो टैले में थी, में बिम्स और होयरनल द्वारा पृथ्वीराज दासों का अनुदित एक संक्षिप्त संस्करण 1873 का था। अंग्रेजी में अनुवाद किसी भी प्रमुख हिंदी काव्यकृति का तुलसीकृत रामचरितमानस का फ्रेडरिक ग्रोज का था, जिसे 1877-80 में संपन्न किया गया था। यह अनुवाद सामान्य पाठकों को ध्यान में रखकर किया गया था। गार्सा दत्तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास के अतिरिक्त उस समय प्रकाशित कई जर्नलों के जरिए हिंदी कवियों और उनकी कविताओं से बाहर के लोग परिचित हुए। 19वीं सदी के अंत से आज तक स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। उस समय विश्व फलक पर हिंदी कविता कहीं नहीं थी। आज विश्व फलक पर हिंदी कविता की अपनी पहचान है और किसी भी भाषा की कविता की तुलना में हिंदी कविता कम नहीं है। कबीर पर बाहर जितना काम हो रहा है और केशव दास सहित अनेक मध्यकालीन कवियों पर उनकी कवि दृष्टि पर उस समय पर जितनी गंभीरता के साथ कार्य हो रहे हैं, उनसे भारतीय विश्वविद्यालयों के अधिकांश हिंदी प्रोफेसर अपरिचित हैं। तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद कर्म को महत्व देने के साथ ही हिंदी कविता विश्व में फैल गई है। प्रवासी भारतीयों की बात छोड़ दें, जिनका संबंध भारत और हिंदी भाषा साहित्य से अब भी बना हुआ है, विश्व के प्रायः सभी देशों में कहीं कम कहीं अधिक हिंदी कविता मौजूद है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेषतः स्वतंत्र भारत में हिंदी में जो नई कविता का दौर है, उसमें यूरोपीय देशों के साथ अन्य देशों में हिंदी कवियों का काव्य पाठ एवं व्याख्यानादि के लिए जाना आरंभ हुआ। बच्चन ने बाहर से ऊंची शिक्षा प्राप्त की। अज्ञेय काव्य पाठ और व्याख्यान के लिए कई विदेशी विश्वविद्यालयों में जाते रहे। बाहर की दुनिया में हिंदी कविता अनुवाद, भाषण, व्याख्यान, कार्यशाला, वार्तादि के रूप में पहुंचने लगी। 21वीं सदी में सारे बंधन टूटे, भौगोलिक और भाषाई दूरियां मिटी, प्रत्येक भाषा का कवि अपना कवि दिखाई देने लगा। 70 के दशक से सभी प्रमुख विदेशी कवियों के हिंदी में अनुवाद हुए। आज किसी भी भाषा, चाहे उसके बोलने वालों की संख्या कुछ लाखों में ही क्यों न हो, के प्रमुख कवियों का हिंदी में अनुवाद हो चुका है। खिड़कियां खुल चुकी हैं और एक व्यापक काव्य परिसर में सभी प्रमुख कवि एकत्र हैं। अशोक वाजपेयी ने भारत भवन में वर्षों पहले विश्व कविता का एक गंभीर आयोजन किया था, जिसमें कई नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि मौजूद थे। 19वीं सदी के अंत से लगभग 1950 तक हिंदी कविता कहीं से भी विश्व फलक पर मौजूद नहीं थी। स्वतंत्र भारत में इसमें गति आई और आज यह स्थिति है कि हिंदी का कोई भी ऐसा प्रमुख चर्चित समकालीन नहीं है जिनकी कविताओं का विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद न हुआ। भक्तिकालीन हिंदी कवियों पर जितना गंभीर काम भारत में हो रहा है, उससे कम से कम 10 गुना अधिक गंभीर काम बाहर हो रहा है। कबीर इनमें सबसे प्रमुख है। फ्रैंकफुर्ट विश्वविद्यालय से लेकर केवल जर्मनी में ही नहीं, अन्य देशों के कई विश्वविद्यालयों में कबीर पर गंभीर आयोजन हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां हुई। प्रायः सभी प्रमुख देशों के प्रमुख विश्वविद्यालयों में दक्षिण एशियाई देशों और उनके साहित्य संस्कृति के जो विभाग हैं उनमें अनेक में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है। कई विश्वविद्यालयों में हिंदी का स्वतंत्र विभाग है। हिंदी के प्रायः सभी प्रमुख कवि विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में अनुदित हो चुके हैं। कविता का एक स्वतंत्र विश्व बन रहा है। सभी प्रमुख कवियों को पढ़ा जा रहा है। अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, पोलिश आदि भाषाओं में हिंदी कविताओं के अनुवाद हो रहे हैं। पोलिश में कई समकालीन कवियों अशोक वाजपेयी समेत की कविताओं के अनुवाद हो चुके हैं। अनेक दूतावासों की मुख्य भूमिका रही। विश्व के करीब 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी कविता का अध्ययन, अध्यापन और उस पर गंभीर शोध कार्य हो रहा है, अनुवाद हो रहा है, कार्यशालाएं हो रही हैं और अनेक हिंदी कवि वहां जाकर काव्य पाठ कर रहे हैं, इन भाषाओं के कवियों से मिल रहे हैं। यह कवि संवाद जो विश्व स्तर पर जारी है उसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। विश्व में कई विमर्श डिस्कोर्स जारी, उनमें स्त्री विमर्श वुमेन डिस्कोर्स विशेष प्रमुख है। लैंगिक जेंडर और स्त्री अध्ययन के दौर में ही पश्चिम में मीराबाई की कविताओं के अनुवाद और अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्य रूप से भक्तिकालीन कवियों और समकालीन कवियों की कविताएं विश्व फलक पर अपनी पहचान बना रही, जिनमें भक्तिकालीन कवियों की कविताओं पर विशेष ध्यान है। कालेवारेट की द मिलियनियम कबीर, चार्लोट व्राडेविले की द वेवर नेम्ड कबीर, जीएच वेस्टकॉट की कबीर एंड कबीर पंथ के साथ कई ऐसे पुस्तकों की सूची बनाई जा सकती है जो कबीर और कबीर पंथ पर केंद्रित हैं। लिंडा हेस और डेविड लारेंजन के काम से अधिकांश लोग परिचित हैं। विश्व फलक पर हिंदी कविता की उपस्थिति कई रूपों में है। कवियों की कविताओं के अनुवाद कई प्रकार से संपन्न हो रहे हैं। विषय को केंद्र में रख कर भी कविताओं के अनुवाद हो रहे हैं और पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। फिलहाल एक उदाहरण डच भाषा में प्रकाशित एक जग डे स्टैड का है, जो मैंने शहर देखा का डच अनुवाद है। यह शीर्षक मंगलेश डबराल के कविता शीर्षक शहर से लिया गया है। इस संकलन का प्रकाशन 2006 में हुआ, जिसमें कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन, अशोक वाजपेयी, मंगलेश डबराल, नीलाभ कुमार विकल, विष्णु खरे, अरुण कमल, कात्यायनी, अनामिका, जावेद अख्तर, अनीता वर्मा, सविता सिंह और गुलजार की कुछ नगर केंद्रित कविताओं का डच भाषा में अनुवाद है, जो अमस्टरडम के इंडिया इंस्टीट्यूट से डिक पलुक्कर और लोडे विस्क द्वारा अनुदित है। कवि की स्वतंत्र कविता पुस्तक, कुछ कविताएं, थीम आधारित कविताओं का चयन, आधुनिक और समकालीन हिंदी कविताओं के अनुवाद के साथ ही कवियों के व्याख्यान, उनसे अंतरंग वार्ता सब के जरिए हिंदी कविता विश्व फलक पर पहचान बना चुकी है। उसकी विविधता और समृद्धि से, उसके गहरे कंसर्न से, उसके कथ्य रूप शिल्प के साथ चमकीली लय से अब बाहर की दुनिया परिचित हो रही है। बड़े बड़े पुरस्कार और सम्मान हिंदी कवियों को बाहर प्राप्त हो रहे हैं। कुंवर नारायण को एक बड़ा कवि सम्मान प्राप्त हो चुका है। उनके साथ केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, विष्णु खरे, मंगलेश डबराल, अरुण कमल सहित 20 अनेक समकालीन हिंदी कवि विदेश की यात्राएं कर चुके हैं। जहां तक कविताओं के अनुवाद का प्रश्न है, वह देश के भीतर भी हो रहा है। कई अंग्रेजी प्रकाशकों ने हिंदी कवियों की और हिंदी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित किए।
1: आप सुन रहे थे डॉक्टर रवि भूषण की वार्ता विश्व फलक पर हिंदी कविता। खुला आकाश कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए

0: प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है।

0: है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
1: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा

0: मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार दो भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of Regional Air Connectivity Scheme, Viksit Udaan, in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे-छोटे शहरों और दूर-दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
3: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है साथियों ये मारवाड़ में पर्यटन व्यापार और रोजगार को नई गति देगा
2: Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu also said that the launch of the Viksit Udaan scheme will mark the next chapter of India's regional connectivity journey. Mr. Naidu said, the scheme launched by Prime Minister with an outlay of over 28,840 crore rupees will facilitate the development of over 100 new aerodromes and 200 helipads, bringing the dream of affordable air travel closer to millions and connecting the aspirations of a rising India.
4: It is the vision of Prime Minister Narendra Modi that wherever there is expansion of civil aviation, it should benefit not just passengers but also the economy of the entire city, businesses, students and every sector as well as citizens. We can see the effect across the country today.
2: Later in the day, Prime Minister Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test or OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
3: Bharat jo thaan leta hai, wo karke dikhata hai. 5 saal pehle Bharat ne sankalp liya tha ki desh ko semiconductor hub banayenge. हम डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है
2: Mr. Modi also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
3: यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे
2: Earlier upon reaching Sanand the Prime Minister toured the high tech plant and inspected the production process He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1875 rupees per quintal to 2125 rupees per

0: स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन। राष्ट्रीय एसटी आयोग की पहल पर गुमला में प्रखंड स्तरीय जनजातीय संवाद आयोजित, सदस्य आशा लकड़ा ने समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। राज्य के स्थानीय कृषि उत्पादों को मिल रहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, देवघर और गुमला से एक एक टन आम्रपाली आम किया गया दुबई निर्यात। राज्य के कई हिस्सों में आज गरज के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और झारखंड कुश्ती टीम की घोषणा, चयनित खिलाड़ी हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का करेंगे प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, डिजिटल गवर्नेंस और आईटी निवेश के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई पहचान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य का डिजिटल रोडमैप प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान झारखंड की भावी विकास रणनीति देश विदेश के उद्योग जगत और नीति निर्माताओं के समक्ष रखी जाएगी। इस दौरान पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर रांची आईटी पार्क को निवेश प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नई दिल्ली में कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान झारखंड से जुड़े सांगठनिक विषयों और राज्य की वर्तमान हालात पर भी चर्चा हुई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी।
1: फॉर दोज ऑफ यू हू हैव वर्क्ड विद मी एंड नो मी, क्रिटिसिज्म को मैं वेलकम करता हूं। आपको कुछ लगे कि हम जो काम कर रहे हैं अगर उसमें कोई कमी है तो आप बताइए, हम आपकी बात सुनेंगे, आपके सुझाव जो हैं उनको हम अपने काम में इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड वी विल मेक द करेक्शन।
0: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पहल पर गुमला के डुमरी प्रखंड कार्यालय में जनजातीय संवाद का आयोजन हुआ। इस दौरान आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, समस्याओं और उनके अधिकारों से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने समस्याओं के त्वरित समाधान का संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।
2: आयोग का जो मूलभूत काम करने का तरीका है, जनजातीय समुदाय का संरक्षण और सुरक्षण और उनका सेफगार्ड करने के लिए काम करती है। इसी निमित्त और संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जो जनहित से जो योजना विकास प्रक्रिया है उनमें तमाम ऐसे योजना जो आज तक गांव तक नहीं पहुंच पाई है, इन सब के बारे भी जानकारी लिए है।
0: आईआईटी आईएसएम धनबाद ने असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एवं ग्रेड 2 के कुल 30 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के साथ पीएचडी की डिग्री अनिवार्य है। झारखंड स्वास्थ्य मिशन रांची के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 150 लोगों की सामान्य रोग, नेत्र, त्वचा एवं श्रवण संबंधी स्वास्थ्य जांच की गई। आयोजकों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकती हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में राज्य के स्थानीय कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी

0: पलाश, जिला प्रशासन और एपीडा के संयुक्त प्रयास से कल गुमला से एक मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले आम्रपाली आम का दुबई के लिए निर्यात किया गया। इधर देवघर से भी एक टन आम्रपाली आम की खेप को हरी झंडी दिखाकर दुबई के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए रवाना किया गया। संभावित कम वर्षापात और वैकल्पिक कृषि नवाचार मोटे अनाजों दलहन तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक साहिबगंज जिले के सभी प्रखंडों पंचायतों तक बिरसा कृषि रथ चलाया जा रहा है। साहिबगंज जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद इक्का ने बताया कि पंचायत के किसानों को विभिन्न संगोष्ठियों के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया जा रहा है।
1: 1 जुलाई से 15 जुलाई तक साहिबगंज जिला में सभी प्रखंडों के पंचायतों में बिरसा कृषि रथ का परिचालन किया जा रहा है। बिरसा कृषि रथ के माध्यम से किसानों को सरकार के विभिन्न तरह के कृषि विभागों की योजनाओं की जानकारी दिया जाएगा। साथ ही साथ किसानों को कम वर्षापात की स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक फसलों की खेती करने हेतु जागरूक किया जाएगा।
0: सिमडेगा में पुलिस ने हत्या के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं जुआ खिलवाने के 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। डीएसपी रणवीर सिंह ने बताया कि मामला कुरडेग और बानो थाना क्षेत्र का है।
2: 2 भाइयों के बीच आपसी विवाद हुआ, जिसमें बड़े भाई सुमन डुंगडुंग ने हमें लाठी से वार किया, जिससे वह जख्मी हो गया और इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें बड़े भाई सुमन डुंगडुंग को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आगे का समाचार।
0: राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि निम्न दबाव के कारण अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है।
3: लो प्रेशर अभी बना हुआ है और तो इसे आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में आप देखिएगा कि झारखंड में भी बारिश आपको बढ़ते हुए दिखेगी। अभी बारिश लगभग रोज देखने को मिलेगी और 2-3 दिन बाद से लगभग सभी इलाकों में आपको ठीक बारिश देखने को मिलेगी।
0: झारखंड राज्य कुश्ती संघ ने आधार सत्यापन के बाद वर्ष 2026 के लिए झारखंड अंडर 23 सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती टीम की घोषणा कर दी है। चयनित खिलाड़ी 10 से 12 जुलाई तक हरियाणा के रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आइए सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकतर प्रमुख अखबारों ने गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर बुलडोजर एक्शन की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर चला बुलडोजर, 8 घंटे तक चली कुर्की, शीर्षक के साथ खबर को प्रभात खबर ने सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण लिखता है बड़गांई और कांके अंचल के 5 मौजा की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज पर लगाएं रोक, ईडी ने किया पत्राचार। हिंदुस्तान ने लिखा है ट्रेजरी घोटाले में 10 के खिलाफ चार्जशीट। दैनिक भास्कर ने लिखा है वैभव का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय मंच पर रखेंगे राज्य का डिजिटल रोडमैप। 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित होगा नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन। राष्ट्रीय एसटी आयोग की पहल पर गुमला में प्रखंड स्तरीय जनजातीय संवाद आयोजित, सदस्य आशा लकड़ा ने समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। राज्य के स्थानीय कृषि उत्पादों को मिल रहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, देवघर और गुमला से 1-1 टन आम्रपाली आम किया गया दुबई निर्यात। राज्य के कई हिस्सों में आज गरज के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और झारखंड कुश्ती टीम की घोषणा, चयनित खिलाड़ी हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का करेंगे प्रतिनिधित्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

रक्तदान महादान है। एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने पर रक्तदान कर सकता है और अपने जीवन में कई जिंदगियां बचा सकता है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म 9-2-11 का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, शब्द रचना मजरूह की।

और अब सुनते हैं फिल्म माया का गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत है सलील चौधरी का।

बॉम्बे का बाबू, यह है फिल्म जिसका गीत अब आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वर में। शब्द रचना मजरूह की, संगीत एच डी बर्मन का।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए फिल्म बॉम्बे के बाबू के इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं रस रंजन। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म बात एक रात की का ये गीत, जिसे गाया है हेमंत कुमार ने, शब्द रचना मजरूह की, संगीत एच डी बर्मन का।

जब प्यार किसी से होता है, यह है फिल्म जिसका गीत अब आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वर में। शब्द रचना है हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
4: रुक जा बुड्ढू।
5: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
3: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मुनीम जी का गीत। गीत था साहिल लुधियानवी का, संगीत एचडी बर्मन का। और आइए अब सुनते हैं फिल्म गाइड का ये गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। शैलेंद्र के बोल हैं, संगीत है एचडी बर्मन का।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म ज्वेल थीफ का गीत, किशोर कुमार का गाया हुआ। शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत एच डी बर्मन का।

फिल्म काला पानी का गीत अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। शब्द रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत था एचडी बर्मन का। और आइए अब सुनते हैं फिल्म तीन देवियां का ये गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत है एचडी बर्मन का।

फिल्म तीन देवियां के इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ आज का रसरंजन। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। सुनते हैं श्री अभिराम पाठक द्वारा राग देसी में आलाप और धमार गायन। पखावज पर संगत कर रहे हैं रामवचन पाठक और हारमोनियम पर संचाली नाग।

आप सुन रहे थे श्री अभिराम पाठक द्वारा राग देसी में आलाप और धमार गायन। पखावज पर संगत कर रहे थे रामवचन पाठक और हारमोनियम पर संचाली नाग। इसके साथ ही संपन्न हुआ आज का शास्त्रीय संगीत। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

रजनीगंधा आप सुनेंगे रात्रि 7:30 पर, रात्रि 8:30 पर सुर्खियों में। रूपों का अखिल भारतीय कार्यक्रम 9:30 से प्रसारित होगा। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा।

श्रमिक लोग आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जलवायु के रक्षा के लिए वनों की भूमिका, मानसिक तनाव को समझें, समाधान अपनाएं, श्रमिक कल्याण की दिशा में नई श्रमिक संहिता, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में कैसे सहायक है, इस विषय पर भी आपको जानकारी मिलेगी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। हमारी दुनिया कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:32 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, सकारात्मक सोच का महत्व, जलवायु परिवर्तन पर खोरठा वार्ता भी आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे। वार्ताकार होंगे अजय कुमार दास। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं बाल सभा। सूत्रधार हैं रानी शुक्ला और अवधेश कुमार, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।

0: जय हिंद बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और बारिश के इस सुहाने मौसम का भरपूर आनंद भी उठा रहे होंगे। कोई खिड़की से बारिश की बूंदों को निहार रहा होगा तो कई बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में तैराने की कोशिश कर रहे होंगे, तो कोई बारिश की फुहारों में भीगने की जिद कर रहे होंगे। क्यों बच्चों, सही कहा ना?
1: जी दीदी,
2: बिल्कुल बच्चों, आखिर बारिश का मौसम होता ही इतना प्यारा है। रिमझिम बरसती बूंदें, भीगी मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू और ठंडी हवाओं का स्पर्श, चारों ओर फैली हरियाली, ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने हरी चादर ओढ़ ली हो, है ना? और ये सब देखकर हमारा मन क्या हो जाता है? हमारा मन खिल उठता है, प्रसन्न हो जाता है ना बच्चों?
1: जी भैया।
0: हाँ भैया, बिल्कुल। और इस मौसम में पेड़ पौधे भी जैसे नए जीवन से भर उठते हैं। पेड़ों की डालियाँ हवा के साथ झूमती हैं, पत्तियाँ मुस्कुराती सी लगती हैं। ऐसा लगता है मानो वे भी बारिश का स्वागत करते हुए खुशी से नाच रहे हों।
2: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा दीदी। लेकिन बच्चों, आपने कभी सोचा है कि हमारे आस पास तो कुछ गिने चुने पेड़ ही होते हैं, लेकिन जहाँ ऐसे अनगिनत पेड़ पौधे एक साथ हों, वहाँ का नजारा कितना मनमोहक होता होगा। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और न जाने कितने ही जीव जंतु खुशी से विचरण करते होंगे।
0: भैया आप वनों की बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि ऐसा तो वनों में जंगलों में ही होता है, क्यों बच्चों?
1: जी दीदी,
2: बिल्कुल सही समझा आपने बच्चों। बच्चों, वन यानी पेड़ पौधे, लताओं, झाड़ियों और तरह तरह के जीव जंतुओं से सजा प्रकृति का एक सुंदर संसार, जहाँ नदियां भी हैं जो कल कल कल कल करके बहती हैं। कहें तो यहाँ प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में नजर आती है।
0: हाँ बच्चों, वन केवल धरती की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि ये तो प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। हमारे जीवन के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। हम जो सांस लेते हैं उसमें पेड़ पौधों, वनों का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे?
2: और ये वन हमें क्या देते हैं बच्चों?
1: शुद्ध हवा और ऑक्सीजन।
2: और वातावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखते भी हैं, है ना? ताकि हम स्वस्थ और सुखद जीवन जी सकें।
0: बिल्कुल सही कहा बच्चों, वन हमें केवल शुद्ध हवा ही नहीं देते, बल्कि स्वादिष्ट फल, औषधियाँ, बहुमूल्य लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ वर्षा के चक्र को संतुलित बनाए रखने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
2: और ये हमारी धरती को हरा भरा तो रखते ही है बच्चों, साथ ही असंख्य पशु पक्षियों तथा जीव जंतुओं को भी सुरक्षित आश्रय भी देते हैं। और इतना ही नहीं, पेड़ों की मजबूत जड़ें मिट्टी को मजबूती से थामे रखती है, जिससे मिट्टी का कटाव क्या हो जाता है? रुक जाता है। नदियां और अन्य जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहता है, है ना?
1: हाँ भैया।
0: बच्चों जरा सोचिए, अगर किसी दिन ये पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाए तो वन ही ना रहे तो
3: मन उदास हो जाएगा।
2: और मन इसलिए उदास हो जाएगा क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पक्षी भी नहीं होंगे, और चारों ओर जो हरियाली होती है वो हरियाली भी हमें नजर नहीं आएगी, है ना?
3: हाँ।
2: और ऐसे में धरती सुनी सुनी सी दिखाई देगी, है ना?
0: हाँ बच्चों, प्रकृति की हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी है। यदि एक कड़ी कमजोर होगी तो उसका असर हम सब पर पड़ेगा, और पेड़ पौधों वनों के बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है।
2: इसलिए बच्चों, ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। घर हो, विद्यालय हो या आसपास की कहीं खाली जमीन हो तो वहाँ हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए।
0: और सिर्फ पेड़ पौधे लगाए ही नहीं, बल्कि उसकी देखभाल भी करें और प्रदूषण ना फैलाएं, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने का प्रयास करें। और इसके लिए आप अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकते हैं।
2: हाँ बच्चों, प्रकृति हमें बिना किसी स्वार्थ के इतना कुछ देती है, अब हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम उनका संरक्षण करें और अपने आसपास हरियाली बढ़ाने का प्रयास करें।
0: क्योंकि बच्चों सच तो यही है कि जब वन सुरक्षित रहेंगे तभी हम सबका जीवन और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। और बच्चों प्रकृति की बात हो और उसके प्यारे प्यारे जीवों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
2: बिल्कुल, जंगल में रहने वाले जीव हो या हमारे घर आंगन में रहने वाले पालतू जानवर, हर जीव प्रकृति का

0: एक अनमोल हिस्सा है। तो आप लोगों के घर में कौन कौन सा पालतू जानवर है बताइए?
1: गाय।
0: हाँ, आपके घर में गाय, और आपके घर में?
1: बिल्ली।
0: बिल्ली, और डॉग भी होगा?
1: हाँ।
0: तो बच्चों ये सब पालतू जानवर हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, खरगोश या रंग बिरंगे पक्षी भी होंगे, है ना? बहुत सारे बच्चों के घर में ये सब भी होंगे, और ये हमारे कितने अच्छे दोस्त बन जाते हैं ना, और इनके साथ हम बहुत खुश भी रहते हैं। लेकिन बच्चों जितना जरूरी इन्हें दोस्त बनाना है, प्यार से उनकी देखभाल करना है, उतना ही जरूरी इनके साथ रहते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए।
2: बिल्कुल बच्चों, पालतू जानवरों के साथ हमेशा प्यार और अपनापन रखें, लेकिन उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान ना करें, विशेषकर जब वे खा रहे हों, आराम कर रहे हों या अपने बच्चों के साथ हो, तब उन्हें छेड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होता।
0: और बच्चों अगर कोई जानवर घबराया हुआ हो, गुस्से में हो या बीमार दिखाई दे तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें और तुरंत घर के किसी बड़े सदस्य को इसकी जानकारी दें।
2: हाँ बच्चों, पालतू जानवरों को समय समय पर टीके लगवाना, उन्हें साफ सुथरा रखना और उनके रहने की जगह की स्वच्छता का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। इससे वे भी स्वस्थ रहते हैं और हम भी सुरक्षित रहते हैं।
0: और बच्चों यदि खेलते समय किसी जानवर से खरोंच लग जाए या वो काट ले तो उसे कभी भी हल्के में ना लें, नजरअंदाज न करें, घाव को तुरंत क्या करना है, साफ करना है और बिना देर किए डॉक्टर से मिलना है। याद रखें बच्चों, दया, संवेदना और जिम्मेदारी ही एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। तो चलिए बच्चों, बातें तो बहुत सारी हो गई, अब कुछ मनोरंजन होना चाहिए, तो चलिए हम आप लोगों को सुनवाते हैं एक प्यारा सा बाल गीत।
3: लग

0: बच्चों कैसा लगा आपको ये बाल गीत?
1: बहुत अच्छा।
0: तो अब आपकी बारी है, क्योंकि हमें पता है कि आप भी कुछ सुनाना चाहते हैं।
2: तो सबसे पहले कौन सुनाएगा?
3: मैं सुनाऊंगी।
2: तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम प्रीशा नाया है।
2: सबसे पहले तो ये बताइए कि आप किस कक्षा में पढ़ती हैं?
3: टू
2: में। तो आज अपने दोस्तों को आप क्या सुनाएंगी?
3: कविता।
2: सुनाइए।
3: जागो प्यारे हुआ सवेरा, देखो भागा दूर अंधेरा, है पूरम में लाली छाए, बागों में कलियां मुस्काए, तोता जागा मैना जागी, बछड़ा जागा गैया जागी, चहक चहक रही है गुरैया, तुम भी चेको मेरे प्यारे भैया, लल्ला तुम भी आंखें खोल, उठो हाथ मुंह अब तो धोलो, उठो बरो को सीख झुका, आनंदो मुन्नो खुद राम, मीठी मीठी बातें बोलो, सबके मन में मिस घोलो, धन्यवाद।
2: वाह, मीठी मीठी
3: बातें बोलो
2: और सबके मन में
3: मिश्री घोलो।
2: वाह, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। और क्या सुनाएंगे आप?
3: विनती।
2: विनती कविता?
3: हाँ।
2: अच्छा, चलिए सुनाइए।
3: ईश्वर तुमने सूर्य बनाया, जो अंधियारा दूर भगाता, प्रभु तुमने चंदा चमकाया, स्वयं जागता हमें सुलाता, तुमने जल की धार बहाई, हमसे कहते बढ़ते जा, झजे स्वर में झरना गाता, कभी ना तुम मन में घबरा, दीपक जल का हमें सिखाता, तुम दुख सह कर भी सुख देना, धरती का कण कण सिखलाता, सिर पर सारे दुख सह रहना, हम इस धरती पर रहते, धरती माँ के संतान बने, है प्रभु हम पर दया करो, हम भी अच्छे इंसान बने, धन्यवाद।
2: वाह, बहुत अच्छी कविता। हम पर प्रभु दया करो, हम भी अच्छा इंसान बने। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम श्रावणी आत्मजा है।
2: श्रावणी, आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
4: मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ।
2: कक्षा 7 में। आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाएंगी?
4: आज मैं अपने दोस्तों को एक कविता सुनाऊंगी।
2: कौन सी कविता?
4: यह कदम का पेड़। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता, यमुना तीरे मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठे आंखें नीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख में धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता, तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे।
2: वाह, बहुत अच्छी कविता, ये कदम का पेड़। इसके कवि कौन हैं?
4: इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान।
2: तो प्रीशा और श्रावणी ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई दीदी।
0: हाँ हाँ।
2: तो अब हमारी बारी है कि हम भी बच्चों को कुछ सुनाएं।
0: हाँ बिल्कुल, बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। बच्चों, अभी हमने वनों के महत्व के बारे में बातें की, पालतू जानवरों की बातें की, और इन बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि चाहे पेड़ पौधे हो, वन हो या पशु पक्षी, इन सबकी रक्षा करना ही तो पर्यावरण की रक्षा करना है। क्यों बच्चों?
1: जी दीदी।
2: लेकिन अक्सर बच्चों आप लोग सोचते होंगे कि पर्यावरण की रक्षा करना तो केवल बड़े लोगों का काम है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना? पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में आपकी यानी बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका है। बच्चों, छोटे छोटे कदम मिलकर ही बड़े बदलाव लाते हैं, है ना?
0: हाँ बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो इतने छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों याद रखिए, किसी भी अच्छे काम के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं होता, बड़ा होना चाहिए आपका विचार, आपका लगाया हुआ एक पौधा, बचाया हुआ पानी का हर एक बूंद और स्वच्छता की एक छोटी सी आदत भी पर्यावरण संरक्षण में अमूल्य योगदान बन सकती है। बच्चों
2: आपके छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।

0: जैसे अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, पानी की बचत करना, बिजली का अनावश्यक उपयोग ना करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखना।
1: और इतना ही नहीं, अगर कहीं कोई पेड़ काटा जा रहा हो या कोई गंदगी फैला रहा हो तो बड़े लोगों को इसकी जानकारी देना और अपने दोस्तों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, ये भी तो एक जिम्मेदारी है जिसे हम सभी को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए।
0: हाँ बच्चों, याद रखिए, प्रकृति हमारी जरूरतें तो पूरी कर सकती है लेकिन हमारा लालच कभी नहीं। प्रकृति हमें हर दिन अनगिनत उपहार देती है, वो भी बिना किसी भेदभाव के।
1: तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उसका आभार उसके संरक्षण के माध्यम से व्यक्त करें। और पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है बच्चों, बल्कि हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है।
0: और इसकी शुरुआत आप आज से, अभी से और सबसे पहले खुद से कर सकते हैं, क्योंकि आज का जागरूक बच्चा कल का जिम्मेदार नागरिक बनता है। तो आप क्या करेंगे बच्चों?
2: अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे।
0: हाँ, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने हैं और लोगों को बताना भी है ना, पेड़ पौधे लगाने के लिए, और उन पौधों की देखभाल भी करनी है।
1: हाँ बच्चों, यदि हम प्रकृति की देखभाल करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमें स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरियाली और स्वस्थ जीवन का उपहार देती रहेगी।
0: और यही तो प्रकृति और मनुष्य का सबसे सुंदर रिश्ता भी है बच्चों, प्रेम का, संरक्षण का और जिम्मेदारी का। और हमें विश्वास है कि इसे आप जरूर निभाएंगे।
2: बिल्कुल भैया।
1: वो कैसे करेंगे बच्चों? पेड़ पौधे लगाकर, बिजली पानी की बचत करके और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से दूर रहकर। क्यों, सही कहा ना बच्चों?
2: हाँ दीदी।
1: याद रखिए बच्चों, आज का आपका छोटा सा प्रयास ही कल की हरी भरी धरती की सबसे बड़ी उम्मीद है।
0: तो बच्चों, बातें तो बहुत सारी हो गई और अब हम आपको सुनवाते हैं एक बाल कहानी, और कहानी का नाम है शबनम परी। इसे लिखा है कर्मजीत सिंह गठवाला ने।
3: मंद मंद समीर बह रही थी, पूर्व दिशा से सूरज धीरे धीरे उग रहा था। आसमान में हल्की सी सुनहरी लाली छा गई थी। हर जोत नींद से जल्दी जाग गया। आज रविवार था, उसको स्कूल भी नहीं जाना था। वो अपने बगीचे में खेलने आ गया। घास पर जमी ओस की बूंदे ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने हरे मखमल पर हीरे बिखेर दिए हों। वो झुक कर एक ओस की बूंद को निहारने लगा। तभी सूरज की किरण उस बूंद पर पड़ी और बूंद अचानक सात रंगों में चमक लगी। हरजोत की आंखें चौंधी आ गई। वह खुशी से चिल्लाया, वाह, ये तो इंद्रधनुष बन गया।
4: वो कुछ देर तक देखता रहा। हर ओस कण पर वो किरण गिरती तो उसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी रंग, सब रंग झिलमिलाने लगते। हरजोत को ये जादू सा लगा। वो बोला, ये कैसे हुआ? क्या ओस के अंदर रंग छिपे रहते हैं? उसके इतना कहते ही उन ओस की बूंदों में से एक नन्ही परी प्रकट हुई। बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और पंख इंद्रधनुषी रंगों के थे। वो मुस्कुराई और बोली,
3: मैं शबनम परी हूँ। तुमने मुझे प्यार से देखा है और तुम्हारे मन में मेरे लिए उत्सुकता जागी है, इसलिए अब मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी।
4: हरजोत हंस पड़ा, सचमुच तुम ओस से निकली हो?
3: परी बोली, हाँ, हर बूंद में थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा जादू छिपा होता है। जब सूरज की किरण उस पर पड़ती है तो प्रकाश सात रंगों में बिखर जाता है, इसलिए मैं इंद्रधनुष जैसी लगती हूँ। ये प्रकृति का खेल है और मैं हूँ उसका रूप।
4: हरजोत के ओठों पर मुस्कान खेल रही थी। उसने पूछा, ओ प्यारी परी, भला ओस और घास में क्या रिश्ता है?
3: परी मुस्कुराई, तुम्हारा प्रश्न तो बहुत प्यारा है। घास धरती का सबसे विनम्र संतान है। दिन भर सूरज की गर्मी झेलती है और रात में जब हवा ठंडी होती है तो आकाश की नमी उसके ऊपर आकर ठहर जाती है। वो नमी ही ओस बन जाती है। बस यूं समझो, घास और ओस माँ बेटी जैसी हैं। घास धरती से जन्म लेती है और ओस आकाश से उतरती है। दोनों मिलती हैं तो धरती माँ मुस्कुराने लगती है।
4: हरजोत की नजर बगीचे के फूलों पर पड़ी। उन पर भी ओस की बूंदें चमक रही थी। उसने पूछा, और फूलों का रिश्ता क्या है ओस से?
3: परी ने कहा, फूल ओस को अपनी सखी मानते हैं। रात में जब वे सो जाते हैं तो ओस आकर फूलों को चूमती है, उन्हें दुलारती है, उनकी थकान मिटाती है और सुबह उन्हें नई ताजगी देती है। अगर ओस ना हो

0: तो फूल मुरझा जाएं, इसलिए तो कहते हैं जहां ओस गिरे वहां जीवन खिले।
1: हरजोत कुछ सोचते हुए बोला, लोग ओस की तुलना आंसू पसीने और अमृत से क्यों करते हैं?
0: परी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि ओस हर भावना की तरह अलग अलग रूप में समझी जाती है। देखो, जब किसी की आंखों से आंसू गिरते हैं तो कभी वे दुख के होते हैं तो कभी खुशी के। ओस भी ऐसी ही होती है, कभी धरती के दुख के आंसू मानी जाती है, कभी प्रकृति की खुशी की हंसी।
1: हरजोत ने उत्सुक होकर पूछा, हर पसीना?
0: परी प्यार से बोली, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ओस धरती का पसीना है। दिन भर जब सूरज उसे गर्म करता है तो रात को वो ठंडक पाकर अपने रोम रोम से नमी छोड़ती है, जैसे कोई मेहनती किसान खेत जोतने के बाद पसीना बहाता है, या कोई मजदूर सारे दिन सख्त काम से पसीने से नहाया सा लगता है। इसलिए ओस में मेहनत और विश्राम दोनों की कहानी छिपी है।
1: और अमृत? हरजोत ने आखिरी प्रश्न किया।
0: परी ने अपनी हथेलियों में चमकती बूंदे उठाई और बोली, जब कोई व्यक्ति सुबह की ओस को देखता है तो उसका मन ताजा और शांत हो जाता है। इसलिए पुरानी कथाओं में इसे देवताओं का अमृत कहा गया है, क्योंकि ये जीवन को नई ऊर्जा देता है।
1: हरजोत ने कहा, तो क्या ओस सिर्फ पानी नहीं है?
0: परी मुस्कुराई, नहीं हरजोत, ओस केवल पानी नहीं, ये धरती की सांस, आकाश का दुलार और जीवन की मुस्कान है। ये हमें सिखाती है कि छोटी चीज भी कितना सौंदर्य और मानसिक शक्ति प्रदान कर सकती है।
1: तभी सूरज ऊपर चढ़ाया, उसकी किरणों में तपस बढ़ने लगी। वो घास पर पड़ी और उसकी बूंदे धीरे धीरे गायब होने लगी। हरजोत बोला, परी तुम जा रही हो, फिर कब आओगी?
0: मैं सुबह आती हूँ और सूरज के साथ लौट जाती हूँ। जब भी तुम ओस को देखो तो समझना कि मैं पास ही हूँ, सात रंगों की मुस्कान बनकर। इतना कहकर परी इंद्रधनुष में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई।
1: हरजोत देर रात तक घास पर बैठा रहा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ओस सिर्फ बूंद नहीं, जीवन का संदेश है, जो कहता है, चाहे ओस की तरह छोटे हो, अपनी शीतलता और रोशनी से इस संसार को सुंदर बनाते रहो। वो मन ही मन मुस्कुराया और माँ को ये सब कुछ बताने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी?
2: बहुत अच्छी।
1: बहुत अच्छी, हाँ। तो चलिए, अब कुछ जानकारी की बातें और होनी चाहिए, है ना?
2: हाँ।
1: तो हर हफ्ते हम आप लोगों को एक जानकारी देते हैं किसी न किसी एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में। तो आज हमारे प्रेरक व्यक्तित्व हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बच्चों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था, तो हम उनका कल मनाएंगे जन्मदिन। बच्चों, उनके पिता का नाम था सर आशुतोष मुखर्जी, भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, न्यायविद और कलकत्ता विश्वविद्यालय के वे कुलपति थे। उनकी माता योगमाया देवी धार्मिक, सादगीपूर्ण और संस्कारवान महिला थी। माता पिता दोनों ने बचपन से ही श्यामा प्रसाद को शिक्षा, अनुशासन और देश प्रेम का संस्कार दिया।
3: बच्चों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद भी एक सामान्य बच्चे थे, लेकिन उनमें एक विशेष बात थी कि उनमें सीखने की प्रबल चाह थी। कहा जाता है कि बचपन में वे घंटों पुस्तकें पढ़ा करते थे। उन्हें केवल पाठ्य पुस्तकें ही नहीं बल्कि इतिहास, साहित्य और समाज से जुड़ी किताबें भी पढ़ना उनको अच्छा लगता था। वे किसी भी विषय को समझने का प्रयास करते थे। यही आदत उन्हें आगे चलकर एक महान विद्वान बनाया। वे समय के महत्व को खूब समझते थे। यही कारण है कि वे समय का सदुपयोग करना अच्छी तरह जानते थे।
1: बच्चों, जब दूसरे बच्चे केवल खेल में व्यस्त रहते थे, तब श्यामा प्रसाद पढ़ाई के साथ साथ खेल, वाद विवाद और अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। वे मानते थे कि जीवन में सफलता के लिए पढ़ाई के साथ अच्छा चरित्र और अनुशासन भी आवश्यक है।
3: बच्चों, उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी अक्सर कहते थे कि ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इस शिक्षा का श्यामा प्रसाद के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कभी भी कठिन परिश्रम से पीछे हटना नहीं सीखा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद ने अपनी पढ़ाई में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त किए। वे अंग्रेजी साहित्य और कानून दोनों के अच्छे विद्यार्थी थे।
1: उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चों अध्यापन और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और केवल 33 वर्ष की उम्र में वे कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने और इतने

0: उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय विकास के लिए कार्य करना था।
1: बच्चों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन हमें कई प्रेरणाएं देता है। पहली सीख कि पढ़ाई को बोझ नहीं समझना चाहिए, उसको अवसर समझे। उन्होंने ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया।
0: हाँ, और दूसरी सीख कि अनुशासन सफलता की कुंजी है। वे समय का सम्मान करते थे और हर काम पूरी लगन से करते थे।
1: उनका मानना था बच्चों कि जीवन भर व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखते ही रहना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
0: बच्चों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन देश प्रेम करना सिखलाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
1: तो बच्चों, यदि आप नियमित पढ़ाई करेंगे, समय का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता और शिक्षकों का आदर करेंगे, ईमानदार रहेंगे और अपने देश से प्रेम करेंगे, तो आप भी अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो बच्चों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, तो हमें आप लोगों से विदा लेनी होगी। लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो गौरव पांडे की थी। तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी बच्चों, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
2: जय हिंद।

0: आप सुन रहे थे बाल सभा। सूत्रधार थे अवधेश कुमार और रानी शुक्ला। प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडेय की।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम जोहार रांची का। थोड़ी ही देर में हम लेकर आएंगे कार्यक्रम, बने रहिए आप हमारे साथ।

0: कार्यक्रम जोहार रांची को लेकर आपके साथ है सुप्रीता
1: और मैं हूं विनोद।
0: श्रोताओं, कुछ लोग शोर मचाकर अपनी पहचान बनाते हैं और कुछ लोग अपनी मेहनत, अपने धैर्य और अपने समय का इंतजार करके इतिहास लिख देते हैं।
1: आज की सुबह सीख देती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।
0: बिल्कुल, इन्हीं खूबसूरत विचार के साथ आज के जोहार रांची के पन्नों को पलटते हैं और कहते हैं जोहार
1: नमस्कार।

0: अब जो हर रांची कार्यक्रम में बात करते हैं आज के खास दिन की, तो श्रोताओं आपको और विनोद जी आपको भी बताएं कि आज यानी 5 जुलाई को मुख्य रूप से राष्ट्रीय कर्मठ दिवस यानी नेशनल वर्कहोलिक डे मनाया जाता है
1: और इसके साथ ही आज के दिन अल्जीरिया का स्वतंत्रता दिवस और अरुणाचल प्रदेश में पारंपरिक ड्रीम महोत्सव भी मनाया जाता है।
0: हर साल 5 जुलाई को मनाया जाने वाला दिन नेशनल वर्कहोलिक डे मनाने का मुख्य उद्देश्य काम के प्रति जुनून रखने वाले वर्कहोलिक लोगों को अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेने, आराम करने के लिए मनाया जाता है
1: और अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है।
0: बिल्कुल, अत्यधिक काम करने और लगातार घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठे रहने से तनाव, थकान और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर तो पड़ता ही है।
1: बिल्कुल, यह दिन लोगों को याद दिलाता है कि काम जरूरी है लेकिन खुद का स्वास्थ्य और परिवार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और आप और हम खुश रहेंगे तभी हर जगह खुशहाली फैलेगी।
0: बिल्कुल।

0: जोहर रांची में अब बातें आज के इतिहास की। तो सबसे पहले आपको बताएं श्रोताओं कि आज के दिन यानी 5 जुलाई सन 1658 को मुगल शासक औरंगजेब ने अपने बड़े भाई मुराद बख्श को बंदी बनाया था।
1: और आज के दिन की बात करें तो 1687 में न्यूटन के प्रिंसिपिया को रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड ने पब्लिश किया। इसमें लॉ ऑफ मोशन और गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी थी।
0: सन 1811 में वेनेजुएला के 7 प्रांतों ने स्पेन के शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी आज ही के दिन।
1: और सन 1922 में नीदरलैंड में पहली बार आम चुनाव हुए। सन 1935 की बात करें तो आज के ही दिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका के नेशनल लेबर रिलेशंस कानून पर हस्ताक्षर किए आज ही के दिन।
0: सन 1950 में नए कानून के तहत सभी यहूदियों को इसराइल में रहने की अनुमति दी गई। और सन 1954 में बीबीसी ने अपने पहले टीवी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया था आज ही के दिन।
1: और सन 1959 की बात करें तो आज के दिन इंडोनेशिया में संविधान बहाल किया गया। सन 1960 में मंगोलिया ने संविधान अपनाया। और सन 1962 में आज के दिन अल्जीरिया 132 वर्षों के फ्रांसीसी शासन से आजाद हुआ।
0: सन 1968 में आज के दिन भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस पहुंची थी। और अगर हम बात करें ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन की नींव भी आज के दिन पड़ी थी। अमेजोन के नाम से दुनिया भर में अपना व्यवसाय चलाने वाली कंपनी की स्थापना वॉशिंगटन में जेफ बोजस ने 5 जुलाई 1994 को आज ही के दिन की थी।
1: इसी दिन 1977 में जनरल मोहम्मद जिया उल हक के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने तख्ता पलटकर देश का शासन पर कब्जा किया।
0: 5 जुलाई 1975 को अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी आर्थर एश ने इतिहास रचते हुए विंबलडन एकल खिताब जीता था। उन्होंने फाइनल में उस समय नंबर 1 और बेहद प्रबल दावेदार जिमी कॉर्नर्स को 6-1, 6-1, 5-7, 6-4 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की।
1: इस जीत के साथ ही आर्थर एश विंबलडन चैंपियनशिप में जीतने वाले पहले अश्वेत खिलाड़ी बन गए थे।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जोहार रांची कार्यक्रम। जोहार रांची कार्यक्रम में अब बातें उन मशहूर शख्सियतों की जिन्होंने आज ही के दिन जन्म लिया। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 5 जुलाई सन 1901 ईस्वी को प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और न्यू थिएटर्स कलकत्ता के संस्थापक B.N. सरकार का जन्म हुआ था। 30 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म क्राफ्ट नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत

0: का भी जन्म हुआ था।
1: बिल्कुल हाँ।
0: आज ही के दिन इन्होंने अपना पूरा जीवन इतिहास की रोमानी कथाओं के नाम कर दिया।
1: सन 2010 में आए उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्य के लिए व्यवसाय सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया था, और इस तरह से अगर कहा जाए तो सबकी जिंदगी खूबसूरत सी हो जाती है।

0: बिल्कुल, जिंदगी खूबसूरत ही होती है। वैसे अगर हम बात करें विनोद जी, तो आज एक मशहूर भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री रंभा भी अपना जन्मदिन मना रही है। रंभा का जन्म आज ही के दिन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी।
1: इन्होंने 8 भाषाओं में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म सरगम से की थी।
0: बॉलीवुड में इन्होंने घरवाली, बाहरवाली, क्रोध, बेटी नंबर 1 जैसे सफल फिल्मों में अभिनय किया।
1: उन्हें सलमान खान के साथ सुपरहिट हिंदी फिल्मों जैसे जुड़वा और बंधन में उनकी भूमिकाओं के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। आइए सुनते हैं अभिनीत इन्हीं पर फिल्माया हुआ फिल्म का ये गीत।

बेटा मुड़ के देख मुझे तो बारा टन टन टन टन टन तारा चलती है कानों से पारा खड़ी खड़ी क्या सोच रही है चल हो जाए नौ तो ग्यारह।

0: कार्यक्रम जोहार रांची में आइए अब बातें करें भारतीय संस्कृति की। तो श्रोताओं, आपको बताएं कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक सबसे बड़ा फेस्टिवल इन दिनों मनाया जा रहा है। यह एक कृषि उत्सव ही है।
1: यह हर साल 2 से 5 जुलाई के बीच जीरो वैली में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य फसल की अच्छी पैदावार और समुदाय की समृद्धि के लिए देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना है।
0: इसे डी ट्री फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। विनोद जी, इस त्योहार का अनूठा रिवाज यह है कि मेहमानों और प्रतिभागियों में, पता है आपको, खीरा ये लोग बांटते हैं, जो भूमि की उर्वरता, अच्छी पैदावार और सब्जियों की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है।
1: 3 से 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान विभिन्न पारंपरिक खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। कुल मिलाकर वहां पहाड़ों पर जश्न का माहौल रहता है।

0: जोहर रांची में श्रोताओं, आइए अब बातें करें रांची और इसके आसपास के इलाकों के मौसम की बातें।
1: बिल्कुल सुप्रीता, अगर देखा जाए तो राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। सुबह की बात अगर बीती रात की अगर हम बात करें तो बीती रात भी बहुत बारिश हुई है, खासकर मतलब कि राजधानी रांची की अगर हम बात करते हैं तो। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगर हम मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो विभाग का कहना है कि निम्न दबाव के कारण अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
0: बिल्कुल, और अगर हम बात करें आज के तापमान की तो अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। और अगर हम बात करें मौसम विभाग की तो इन्होंने बताया है कि कुछ दिनों में झारखंड के कई हिस्सों में मानसून की जो गतिविधियां है ना विनोद जी, वो तेज हो सकती है।
1: ऐसे में गरज चमक और वज्रपात होने की संभावना को देखते हुए खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और घर से निकलते समय छाता या रेनकोट लेकर ही निकलें।
0: लेकिन समय जो भी हो, मौसम का आनंद तभी आप ले सकते हैं जब आप हमारे साथ गुनगुनाएं।

0: जोहर रांची कार्यक्रम में आइए अब बातें करते हैं हेल्थ की। तो जैसा हम देख रहे हैं कि मौसम ने करवट बदली है विनोद जी, तो ऐसे में हमें अपने हेल्थ की देखभाल, अपने हेल्थ के प्रति जो है थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, और चाहे जैसा भी मौसम हो उसके मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जब भी अगर कोई मौसम अगर तब्दीली उसमें आती है, मान लो कि अभी गर्मी थी अब बारिश आ गई, तो अपने साथ साथ कई बीमारियां भी लेकर आती हैं। तो मौसम तो बदलता रहेगा और ये तो नियति है, लेकिन हर समय अपने स्वास्थ्य का इसलिए भी ख्याल रखें, कई चीजें ऐसी होती हैं कि चाहे जो भी मौसम हो उसमें अगर आप इस्तेमाल करें तो निश्चित है कि वो बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसी में एक है मूंग।
0: और अगर हम मूंग की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत फायदेमंद है, तो मूंग प्रोटीन के अच्छे स्रोतों में से एक माना जाता है। इसमें आवश्यक एमिनो एसिड जैसे फेनिलॉइंस, ल्यूसिन जैसे आवश्यक तत्व पाए जाते हैं विनोद जी, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत हद तक कम करते हैं।
1: बिल्कुल, मूंग में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट गंभीर रोगों के जोखिम को भी बहुत हद तक कम करता है।
0: इतना ही नहीं है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम तो करता ही है, हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करता है। इसके सेवन से हाई ब्लड प्रेशर जो होते हैं ना लोगों में, वो भी नियंत्रित रहता है। इसलिए इसका सेवन जितना ज्यादा हो सके लोगों को करना चाहिए।
1: बिल्कुल, इसमें मौजूद फाइबर और रेसिस्टेंट स्टार्च पाचन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इसके पोषक तत्व ब्लड शुगर लेवल को भी बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं।
0: तो श्रोताओं, आप भी स्प्राउट का सेवन करें, मूंग को जहां तक हो सके अपने डेली रूटीन में शामिल करें, और हेल्दी रहें, और हेल्दी होने रहने के साथ साथ आप खुश जरूर रहें। और खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है कि आप गुनगुनाते रहें और गाते रहें।

0: सुप्रीता, और अब बात कुछ खेल जगत की।
1: बिल्कुल।
0: महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताबी मुकाबला आज ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा, जहां मेजबान इंग्लैंड और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगी। ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 7वां खिताब जीतने के इरादे से उतरेगा, जबकि इंग्लैंड की नजर घरेलू सरजमीं पर दूसरे विश्व खिताब पर होगी। और भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय में इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसी तरह से अगर हम डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 की बात करें, तो इसके सफल और सुरक्षित सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विधि व्यवस्था, यातायात, पार्किंग, भीड़ प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा कल ही की गई है।

0: चलते चलते श्रोताओं बस इतना ही। खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं होता, कई बार शांत रहने वाले लोग ही सही समय आने पर सबसे बड़ा जवाब देते हैं।
1: तो आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज के जोहार रांची के पन्नों को अब समेटते हैं। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी कामना के साथ आज के इस अंक के साथ मैं यानी कि विनोद
0: और सुप्रीता को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, जोहार।

अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम हम सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपकी ही पसंद के गाने। तो आइए सबसे पहले लेते हैं ये पहली फरमाइश, जो आई है कांके रोड से शिप्रा, अंकित, आयु, अभिषेक और इनकी माताजी जिनका नाम हीरामणि सिंह है, और साथ ही साथ इनके साथ हैं वेदू। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म नदिया के पार फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना, जिसे अपनी आवाज़ दी है जसपाल और हेमलता ने, और इसके गीत लिखे गीत और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना जो हमने लिया है फिल्म नदिया के पार से।

कार्यक्रम आपकी पसंद का अगला गाना अब जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म कुछ कुछ होता है से। आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की। इस गाने के बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क ने और इसकी धुन बनाई है देव कोहली ने। इस गाने को पसंद करने वाले श्रोता आप सब हैं डोरंडा रांची से रश्मिता, मोनिका, अनु, श्वेता और इनकी सभी सहेलियां। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना।

गोलू, साक्षी और इनके परिवार के सभी सदस्यगण की। इन्होंने सुनना चाहा है जलेबी फिल्म से खूबसूरत सा गाना। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की, शब्द रचना है कुणाल वर्मा की और इस गाने की धुन बनाई है जावेद मोहसिन ने और इसी गाने की फरमाइश आई है औरंगाबाद से। ये हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं जलेबी फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना।

दिल तो पागल है। जी हाँ, अगला गीत हमने लिया है इसी फिल्म से। आवाज है उदित नारायण की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और इस गाने की धुन बनाई है उत्तम सिंह ने। और इस गाने को पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सब। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू।

कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश लीजिए, सुनिए फिल्म तारा रमपम से। आवाजें हैं सुनिधि चौहान और शान की। इस गाने के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है विशाल शेखर ने। इस गाने को पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सब। गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जतेंग बिरक और मीका बिरक। इसी गाने को सुना चाहा है अपर बाजार रांची से शिवांश और श्रेया ने। तो आइए आपकी पसंद का सुनते हैं खूबसूरत सा गाना।

अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। वक्त है हमारी बहनों के कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं निधि और खुशबू। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को निधि का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका। और बहनों, रविवार का दिन है तो आज आप अपनी गति थोड़ी धीमी कर सकती हैं, है ना? किसके लिए? अपने लिए, जाहिर सी बात है। और इस कार्यक्रम में साथ देने के लिए आज हमारे बीच है प्यारी खुशबू।
1: नमस्कार बहनों, मैं हूँ खुशबू, गृहलक्ष्मी में आपकी हम सफर, और स्वागत करती हूँ आप सभी का। मेरी आशा है कि आप सभी रविवार के इस खूबसूरत से दिन को बहुत अच्छे तरीके से बिता रही होंगी, और खूबसूरत सा सुहाना सा मौसम भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छे से हमारी बहनें ये दिन बिताएं, ये हमारी कामना है। और खुशबू, हमारी कोशिश भी तो यही रहती है ना कि हमारी जो श्रोता बहनें हैं अपने भविष्य को लेकर जागरूक बने, नई चीज़ों के बारे में जाने, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और कुछ ऐसी गतिविधियों में भाग लें जिनसे उनकी छिपी हुई प्रतिभा जो है ना वो निखर के सामने आ सके।
1: बिल्कुल। और निधि, हमने भी इस बार कुछ ऐसी कोशिश की है ना कि हम अपनी बहनों के लिए कुछ नया लेकर आए जिससे आपको अपनी प्रतिभा को निखारने में, उभारने में मदद मिल सकती है, है ना? आज कुछ मतलब सरप्राइज है बहनों के लिए।
0: मतलब खुशबू, तुम्हें पता चल चुका है ना? अच्छा, वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे एक सीक्रेट रखूं, लेकिन मैं तुम्हें देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि तुम भी कुछ लेकर आई हो बहनों के लिए, है ना?
1: लेकिन वो थोड़ी देर बाद।
0: बिल्कुल, खैर वो सब हम बहनों को बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं बहनों को कि क्या लेकर आई हूँ। तो बहनों, आज मैं निधि आप सबका दाखिला करवाऊंगी अपनी पाठशाला में, यानी गृहलक्ष्मी के साथ साथ आज मैं आपका स्वागत करती हूँ निधि की पाठशाला में। आप हैरान हो गई ना? और ये बात ही है हैरानी की खुशबू।
1: बिल्कुल, वैसे हैरानी की बात तो है निधि कि भाई हमारी बहनें भी सोच रही होंगी कि ये गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में पाठशाला की बात कहाँ से आ गई।
0: तो मैं बता देती हूँ बहनों को कि वे ज्यादा ना सोचे इस बारे में। मैं अपनी पाठशाला में आपसे कठिन सवाल बिल्कुल नहीं पूछने वाली, और ना ही मैं गणित के प्रश्न पूछूंगी। बस सुरीले गीतों के साथ मनोरंजन करते हुए हम जानेंगे कि किस तरह हम कुछ नया सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। तो बस इतनी सी बात है खुशबू।
1: बिल्कुल। और बहनों, आप बहुत कुछ सोच रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे कार्यक्रम में आपको भी बहुत सारा मनोरंजन और साथ ही साथ ज्ञान की बातें भी मिलेंगी, मतलब जो आप जानते भी हैं। वैसे मैं आपको एक मौका दूंगी अपने वर्कशॉप में भी हिस्सा लेने का, ताकि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसे उभारने की, कुछ नई चीजें बनाने की, और उससे हमारे माध्यम से या अपने माध्यम से आपको हवा मिल सके।
0: बहुत खूब। तो बहनों, आज सबका दाखिला तो हो ही जा रहा है निधि की पाठशाला में। बल्कि दाखिला हो चुका है। और अब मैं बता दूं कि आज मैं अपनी पाठशाला में नई भाषा सीखने की कुछ बारीकियों के बारे में बताना चाहूंगी। तो बहनों, सबसे पहले तो ये विश्वास अपने मन में जगाएं कि आप किसी नई भाषा को सीख सकती हैं, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को सीखती नहीं है वो मुश्किल मालूम पड़ता है ना खुशबू। और उसी चीज को जब हम सीख लेते हैं तो लगता है कि अरे ये तो कितना आसान था।
1: बिल्कुल निधि।
0: तो बहनों, ये तो थी आत्मविश्वास जगाने की बात। और इसके बाद सबसे पहले आपको अपने शब्द कोश को बढ़ाते रहना है, यानी कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए नए नए शब्द जो है ना
1: सीखते
0: रहने हैं, और शब्दकोश इसी तरह से आपका बढ़ेगा। और आप इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर सकती हैं, जैसे आप एक दिन के लिए एक लक्ष्य तय करें, आज आपको कितने शब्द सीखने हैं, जैसे कि 10, 15, 20, अपनी क्षमता के हिसाब से आप याद कर सकती हैं। और अब जब आप नई भाषा सीख रही हैं तो उसकी लिपि या स्क्रिप्ट भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलेगा, उसे लिखना भी होगा, और कहीं आप अगर उसे लिखा हुआ पाती हैं तो उसे पढ़ना भी होगा बिल्कुल सही तरीके से। तो कम से कम 10 अक्षरों का अभ्यास आपको रोज करना है। अक्षरों को पहचानने और लिखने दोनों का ही अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से बहनों, धीरे धीरे आप देखेंगी कि कुछ ही दिनों में आपका शब्द कोश जो है काफ़ी बढ़ गया है, और आप बहुत सारे अक्षरों को पहचानने लगी हैं और बहुत सारे शब्द भी आप सीख गई हैं,
1: नए शब्द सीख गई हैं।
0: बिल्कुल, तो जो शब्द इतने नए लगते थे, बिल्कुल लगता था कि नई भाषा है तो लोग परेशान हो जाते हैं, अब धीरे धीरे लोग उससे वाकिफ जाते हैं और बहुत ही जाने पहचाने से लगने लगते हैं, है ना। और दूसरी बात मैं बता दूं बहनों कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जिन शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं उसे सबसे पहले सीखें। जैसे हम अगर किसी से मिलते हैं तो अभिवादन करना, फिर धन्यवाद देना, क्षमा मांगना, स्वागत करना, शुभकामनाएं देना, तो सभी आप ये जो सारे शब्द हैं वो आप जानने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा ना कि जब उस भाषा को बोलने वाला व्यक्ति आपके सामने आएगा या आप जब उस माहौल में जाएंगी तो आपको लगेगा कि आप धीरे धीरे उस माहौल में घुलने मिलने लगी हैं, क्योंकि ये जो अभिवादन वाले शब्द हैं या धन्यवाद देना या क्षमा मांगना, स्वागत करना, ये सब आप आसानी से बोल सकती है।
1: बिल्कुल, और इससे दूसरों को भी बहुत खुशी
0: अच्छा लगता है और उन्हें भी अपनापन महसूस होता है, तो लोग आपको अपनाना शुरू कर देंगे जो भी भाषा को आप सीख रही हैं। इसके बाद जो दूसरा चरण है वो है कि शब्दों को सीखने के साथ साथ उसका सही उच्चारण भी करना जरूरी है। तो इसके लिए आप बहुत सारे वीडियोस देख सकती हैं, जिसमें आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं खुशबू, जिसमें बहनें सुन सकती हैं कि किस शब्द का, भले ही वो नई भाषा क्यों ना हो, तो नए शब्दों का उच्चारण सही सही किस तरह से हमें करना है। और अब जिस चीज़ को आप रोज़ देखती हैं, जैसे हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपना फ़ोन नंबर हुआ या हमारा अपना एड्रेस पता हुआ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको आप जो नई भाषा सीख रही हैं ना उसकी लिपि में आप लिखना शुरू करें, और आपके घर में बहुत सारी जगहों पे वो दिखने चाहिए। तो किसी चीज़ को भी आप अगर लगातार देखते रहेंगी तो अगर,
1: याद हो जाता,
0: बिल्कुल याद हो जाता है। और अगर आप उसे ज़बरदस्ती याद ना भी कर रही हो ना, तो क्योंकि आपके सामने है वो दिन भर वो शब्द हैं, वो नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, तो वो खुद ब खुद आपके दिमाग में वो छप जाते हैं। तो ये आसान तरीका भी है खुशबू, एक तरह से
1: आसान है।
0: और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रही हूँ, जो हमारे कार्यक्रम से भी संबंधित है खुशबू, वो ये कि संगीत सिर्फ मनोरंजन का ही जरिया नहीं है बहनों, बल्कि गीतों के माध्यम से हम बहुत सारे शब्द सीख सकते हैं, है ना खुशबू?
1: बहुत सारी नए शब्द को जान सकते हैं।
0: सही कहा। और आप जिस भाषा को सीख रही हैं, जो आपके लिए नई है, उसके गाने जरूर सुने। नई भाषा के गीत तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि भले ही आप शुरू शुरू में शब्दों को ना समझें, लेकिन खुशबू हम ये तो जानते ही हैं कि संगीत की तो भाई कोई भाषा होती नहीं, तो सबको ही समझ जाएगा उसे। और जो भाषा होती है उसे आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो गीतों को सुनते सुनते, क्योंकि जो शब्द हैं गीतों में जो संगीत होता है और जो शब्द पिरोए जाते हैं ना, उनका अपना एक अर्थ होता है। और सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी अभिव्यक्तियाँ होती हैं उनमें, जो भावनाओं को एक्सप्रेस करती है, अभिव्यक्त करती है, उसके माध्यम से भी हम सीख लेते हैं। और नई भाषा सीखने की जब बात हो रही है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो अंग्रेज़ी सीखने की ख्वाहिश रखती हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी की ज़रूरत तो हमें हर जगह पड़ती है खुशबू, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं या इस विश्व में कहीं भी चले जाएं, अगर आपको वहाँ की भाषा ना भी आती हो ना, तो अगर आपको अंग्रेज़ी आती हो तो वहाँ के लोगों से आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो सभी को आती है,
1: क्योंकि निधि भाषा जो है ना वो लोगों को जोड़ने का काम करती है और अपनापन भी इससे महसूस होता है।
0: और अंग्रेजी भाषा जो है वो बहुत हद तक हमें जोड़ देती है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ बिल्कुल आपको कुछ भाषा का ज्ञान नहीं है, तो अंग्रेजी से हम काम चला लेते हैं, है ना। तो जो हमारी बहनें अंग्रेजी सीखना चाहती हैं, वो भी इस बात को अपने मन से निकाल दें कि ये बहुत कठिन भाषा है, ये बिल्कुल आसान है। और जैसा कि पहले मैंने बताया कि जब आप किसी चीज़ को सीख लेती हैं तो आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान था, और वहीं जब तक आप उस चीज़ को सीखती नहीं हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। तो मैं आशा करती हूँ बहनों कि आप नई भाषा को सीखने के लिए मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगी और अपनी ज़रूरत के अनुसार नई भाषा सीख लेंगी। तो अब निधि की पाठशाला की होती है छुट्टी, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वक्त है आपको गीत सुनवाने का।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: स्वागत है बहनों आप सबका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और पाठशाला में तो आपका दाखिला हो ही गया और पढ़ाई भी आज की हो गई खुशबू, है ना?
4: बिल्कुल।
3: तो भाई तुमने तो वादा किया था कि हमें वर्कशॉप में आने का मौका दोगी, और चलो अब बहनों को सिखाओ तुम क्या लेकर आई हो आज।
4: बिल्कुल, आज मैं खुशबू की वर्कशॉप लेकर आई हूँ जिसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी के बारे में बताऊंगी।
3: और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत उत्साहित हूँ कि भाई खुशबू हमें क्या नया सिखाने वाली है।
4: बहुत कुछ नया है निधि, और आज का दिन ना बहुत खास भी है क्योंकि आज से शुरू हो रही है हमारी अपनी आप सबकी अपनी रचनात्मक दुनिया यानी खुशबू की वर्कशॉप, यानी एक ऐसा मंच जहां हम किसी नई कला, नए हुनर, नए विचार से रूबरू होंगे। मतलब एक ऐसी रचनात्मक यात्रा जहां हम सीखेंगे, बनाएंगे, सजाएंगे और अपनी कल्पनाओं को नया रंग देंगे। मतलब जहाँ हम सीखते हैं कुछ नया, अपनाते हैं कुछ अच्छा और अपनी प्रतिभा को निखारने की प्रेरणा भी पाते हैं। सखियों एक बात बताइए, क्या आपके घर में भी कभी प्लास्टिक की बोतलें, पुराने अखबार, जूते के डिब्बे, आइसक्रीम की स्टिक या पुराने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हम क्या सोचते हैं निधि?
3: वाह, ये

0: तो मतलब तुमने मेरी मन की बात कह दी खुशबू, कि इतने सारी इस चीजें तो सबके घरों में
1: सबके
0: इकट्ठा,
1: घर में होती
0: और ना
1: हैं।
0: ये एक परेशानी बन जाती है कि भाई हम इसका क्या करें।
1: बिल्कुल, यही सोचते हैं कि अब इनका क्या करें, जैसा कि तुमने कहा, और
0: बिल्कुल।
1: अधिकतर जवाब होता है कि अब इन्हें फेंक देते हैं, है ना। लेकिन सखियों जरा रुकिए, अगर मैं कहूं कि यही बेकार समझी जाने वाली चीजें आपके घर की सबसे सुंदर सजावट बन सकती है, तो आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, आज हम यही सीखेंगे कि कैसे साधारण चीजों को अपनी कल्पना, थोड़ी सी मेहनत और ढेर सारे प्यार के साथ साथ नया रूप दे सकते हैं। और आज का हमारा विषय भी है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी
0: वाह।
1: बेकार नहीं बेहतरीन। सखियों, कभी कभी जो चीजें बेकार लगती हैं वही किसी और के लिए सबसे उपयोगी साबित भी हो सकती है, और यही सोच हमें बनाती है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें नया रूप देना। इससे पैसे भी बचते हैं, रचनात्मकता भी बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, इससे हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं। आज की वर्कशॉप में हम आपको बताएंगे प्लास्टिक की बोतल से, जो सबके घरों में बहुत सारे पड़े होते हैं, एक सुंदर पेन स्टैंड बनाना। और इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है, हमें घरों में आसानी से मिल जाते हैं ये चीज़ें, जैसे कि एक खाली बोतल, कैंची, गोंद, रंगीन कागज और ढेर सारी कल्पना शक्ति। और पेन स्टैंड बनाने के लिए हम सबसे पहले बोतल को साफ कर लेंगे, फिर उसका ऊपरी हिस्सा सावधानी से काट लेंगे, फिर उस पर अपनी पसंद के रंगीन कागज चिपकाएंगे और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए उसे सुंदर तरीके से रिबन, लेस या छोटे छोटे स्टिकर से सजाएंगे। तो लीजिए, कुछ ही मिनटों में तैयार है आपका खूबसूरत सा पेन स्टैंड,
0: वाह।
1: जो हमारे घर की स्टडी टेबल की शोभा भी बढ़ाता है और साथ ही साथ बहुत उपयोगी चीज भी है ना निधि?
0: बिल्कुल, बच्चों के लिए तो बहुत उपयोगी है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें बिना पैसे खर्च किए इतना सुंदर सामान मिल गया, वो भी बाजार भी जाने की जरूरत
1: जरूरत
0: नहीं है।
1: नहीं है और बहुत उपयोगी भी है। वैसे सखियो, हम सभी ये जानते हैं कि प्लास्टिक के बोतल को ना प्राकृतिक रूप से नष्ट होने में काफी साल लग जाते हैं, तो इससे हम पर्यावरण को भी बचाते हैं, है ना,
0: बिल्कुल।
1: अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यदि
0: मतलब
1: इसका
0: रिसाइकलिंग कितनी आसानी से कर दिया तुमने खुशबू,
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: अब वो भी अपनी क्रिएटिविटी के साथ,
0: हाँ।
1: और इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं प्लास्टिक की बोतलों से, जैसे कि आप सुंदर सा वास बना सकते हैं, गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता बना सकते हैं, और भी बहुत तरह की चीजें आप बना सकते हैं। लेकिन यदि अगर हम इन अनुपयोगी समझी जाने वाली चीजों को फिर से उपयोग करते हैं, तो ये कचरा कम करने में अपना छोटा सा योगदान भी देते हैं,
0: बिल्कुल, क्योंकि आम तौर पे तो हम इन चीजों को
1: फेंक देते
0: फेंक
1: हैं, जो पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। तो सखियो, अगर आपके पास कोई पुरानी प्लास्टिक की बोतल हो तो आप उससे क्या बनाना पसंद करेंगी? सोचिए, पेन स्टैंड या फिर बिल्कुल कुछ नया। अपनी कल्पना को उड़ान दीजिए, क्योंकि कला की दुनिया बहुत बड़ी है, और कला केवल हाथों से नहीं बल्कि दिल और सोच से भी बनती है।
0: बहुत खूब।
1: क्योंकि जब हम किसी पुरानी चीज़ को नया जीवन देते हैं, तो हम सिर्फ एक वस्तु नहीं बनाते, बल्कि हम एक उम्मीद, रचनात्मकता और पर्यावरण के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। तो सखियों, आज की खुशबू की वर्कशॉप में हमने ये जाना कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट केवल एक कला नहीं बल्कि एक सोच भी है, एक ऐसी सोच जो हमें सिखाती है कि जो बेकार दिखता है वही कभी कभी सबसे बेहतरीन होता है। तो इसी खूबसूरत संदेश के साथ आपकी दोस्त फिर से आपसे कई बातें करेंगी और एक नई कला, नए विचार और ढेर सारी खुशियों को लेकर आएगी। लेकिन तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो खुशबू, गीत तो बड़ा मस्ती भरा था, बिल्कुल रविवार के लिए अनुकूल था, है ना। और सच ही तो है कि भाई कोई कुछ भी कहे, हमें अपने काम में मस्त रहना चाहिए, है ना।
1: बिल्कुल, हमें दूसरों की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए निधि, क्योंकि ये हमारी जो मानसिक स्थिति है ना उसको थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं।
0: बिल्कुल, तो हमें हमेशा

0: सृजनात्मक कार्यों में अपने को लगाए रखना चाहिए और ज्यादा किसी पे ध्यान नहीं देना चाहिए,
1: फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना
0: चाहिए। बिल्कुल। तो आज बहनें तो पहले डरी गई होंगी कि पाठशाला और वर्कशॉप की बातें सुनकर,
1: क्योंकि बिल्कुल नया,
0: बिल्कुल, और ऐसा उन्हें लग रहा होगा कि आज मनोरंजन कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लीजिए सुनिए एक और गीत।

0: तो बहनों, आज का आपका अनुभव काफ़ी अच्छा रहे, ये हमारी कोशिश भी थी खुशबू, और हमारी उम्मीद भी। और हम यूं ही आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहेंगे बहनों, ताकि आपके चेहरे की मुस्कान यूं ही बनी रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहिए, नया बनाइए, और अपनी रचनात्मकता को ना दुनिया से
0: बिल्कुल, और अपने आत्मविश्वास को कभी कम ना होने दीजिए। तो चलते चलते अब हम बहनों को बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। तो अभी के लिए देवविदा, अपनी सखियों निधि और
1: खुशबू को
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

अभी हम सुन रहे थे हमारी बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। इस कार्यक्रम में आपके साथ थी आपकी सखी निधि और खुशबू। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर पर। आइए सुनते हैं आंचलिक लोकगीतों का कार्यक्रम भारत भारती। आज हम सुनेंगे मगही भाषा में। कलाकार हैं जनार्दन प्रसाद सिन्हा और साथी।

0: अभी हम सुन रहे थे आंचलिक लोकगीतों का कार्यक्रम भारत भारती। आज के कलाकार थे जनार्दन प्रसाद सिन्हा और साथे। इनसे हम सुन रहे थे अंगिका भाषा में लोकगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
2: हेलो, नमस्कार दोस्तों, उड़ान कार्यक्रम में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा है आप अपने परिवार के साथ खुश और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आज का कार्यक्रम शुरू करें, आप हमारा फोन नंबर नोट कर लें। हमारा फोन नंबर है
1: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
3: मित्रता या दोस्ती, दोस्ती के रिश्ते को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर जवानों के बीच। दोस्ती का चुनाव जवानी में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही आगे आपके भविष्य को बनाने या बिगाड़ने में सहयोगकारी होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम दोस्ती का रिश्ता किसी के साथ बना रहे हैं, तो क्या वह व्यक्ति दोस्ती करने के लायक भी है या नहीं, क्या वह व्यक्ति उसकी आदतों में सही है कि नहीं, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बुरा बना देती है। आइए हम एक कार्यक्रम के द्वारा देखें कि दोस्ती या मित्रता किस प्रकार एक जवान व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। आज राहुल का कॉलेज में पहला दिन है। सुबह सुबह राहुल कॉलेज जाने के लिए, नए मित्र बनाने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित होकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकलता है।
4: हेलो, तुम्हारा नाम क्या है?
5: मेरा नाम सुरेश है। तुम्हारा नाम क्या है?
4: मेरा नाम राहुल है।
5: कॉलेज में नए आए हो?
4: हाँ, आज मेरा पहला दिन है कॉलेज में।
5: हाँ, मुझे भी ज्यादा नहीं, एक ही महीना हुआ है। तो फिर दोस्त बनाए कि नहीं?
4: नहीं, अभी तक नहीं, आपसे ही बात हुई है अभी तक।
5: अच्छा, तो आज से हम दोनों दोस्त। मेरी एक और दोस्त भी है, पिंकी, वो भी अभी आती होगी, मिलवाता हूँ उससे भी।
4: थैंक यू सुरेश। क्या तुम मुझे क्लास का टाइम टेबल और टीचर और कॉलेज से जुड़ी बाकी सारी चीजें बता दोगे?
5: इतनी भी क्या जल्दी है, अभी कॉलेज आए हो, एक घंटा भी नहीं हुआ और अभी से इतनी टेंशन। पिंकी से तो मिल लो पहले।
6: हाय सुरेश, ये कौन है?

0: तेरे साथ?
1: अरे ये आज ही कॉलेज में आया है, मेरा दोस्त है ये।
0: ओहो, नया दोस्त।
1: पिंकी, ये राहुल है। राहुल, ये पिंकी है।
2: हाय।
0: हाय।
1: देख पिंकी, दोस्त का दोस्त दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। ये मेरा दोस्त मतलब ये तेरा भी दोस्त।
0: बिल्कुल, तो फिर हम कैंटीन चले।
2: कैंटीन पर? मैं तो घर से ही खाकर आया हूँ, और यहाँ क्लास कब होती है?
1: अरे यार, तू चल तो सही।
2: चलो ठीक है, चल।
1: और मजा आया कि नहीं?
2: हाँ बहुत मजा आया, पर आज तो क्लास ही नहीं ली।
1: क्या यार, चिल मार, क्लास क्लास कर रहा है जब से। चलो घर चलते हैं, अब कल मिलते हैं।
2: माँ।
3: आ गया बेटा। तो कैसा रहा आज का दिन? पढ़ाई हुई? समझ आया कि नहीं कुछ?
2: नहीं माँ, आज कोई क्लास नहीं ली मैंने ना कुछ पढ़ाई की, पर बस दोस्त बनाए और उनके साथ घूमा।
3: अच्छा, पर बेटा ये ठीक बात नहीं है।
2: अरे माँ, पहला ही दिन तो था। तुम भी माँ फालतू बातें कहती रहती हो।
1: राहुल, ये देख, नई फिल्म आई है, बहुत मस्त है भाई, तू जरूर देखना।
2: ये तो घर जाकर देखूंगा फुर्सत से, अभी तू सिगरेट दे मुझे।
1: ये ले।
2: पिंकी कहाँ गई?
1: अरे उसे पता नहीं क्या हो गया है, आजकल ज्यादा रुकती ही नहीं है।
2: तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
1: हाँ तबीयत तो ठीक है, आज बात करता हूँ उससे, क्या बोलती है।
2: हाँ बात करना फिर बताना।
1: चल अब यार घर चलते हैं, लेट हो गई वैसे भी।
2: हाँ चल। माँ जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है, और आज तो मैं बहुत ज्यादा ही थका हूँ।
3: हाँ बेटा, बस 5 मिनट, खाना बन ही रहा है। वैसे आज तो इतना कैसे थक गया?
2: वो आज कॉलेज में बहुत ज्यादा काम था माँ।
3: बेटा आज ये मुँह से अजीब सी, तूने सिगरेट पी है?
2: नहीं माँ, तुम भी ना कुछ भी सोचती हो।
1: राहुल कहाँ है तू?
2: हाँ भाई बोल, क्या हुआ, तू अचानक ऐसे घर आ गया?
1: हाँ जल्दी चल, तुझे कुछ बताना है।
2: भाई खाना खाकर चलते हैं ना।
1: अरे चल ना, बाहर खा लेंगे, अभी बस तू जल्दी से चल, जरूरी बात बतानी है।
2: अच्छा चल यार तू भी।
3: अरे बेटा खाना तो खाकर जा।
2: माँ मैं बाहर खा लूंगा।
3: क्या करूँ इस लड़के का, दिन ब दिन ये तो बिगड़ता ही जा रहा है, और इसके दोस्त तो बिल्कुल सही नहीं है। हे प्रभु, अब तू ही इस लड़के को बुद्धि दे, इसके दोस्त इसको गलत रास्ते पर ना लेके जाए।
2: बोल भाई, क्या इतनी जरूरी बात करनी है तुझे?
1: भाई खुशखबरी है, खुशखबरी।
2: बता भाई जल्दी बता, क्या है?
1: पिंकी तुझे पसंद करती है।
2: जा रहे मजाक मत कर।
1: अरे भाई सच्ची बोल रहा हूँ।
2: पर मैं कैसे मान लूँ?
1: रुक, मैं पिंकी को फोन करता हूँ। हेलो पिंकी।
0: हाँ सुरेश, तेरी बात हो गई राहुल से?
1: हो गई, पर ये मान ही नहीं रहा है।
2: हेलो हेलो पिंकी।
0: हाँ राहुल।
2: सुरेश सच बोल रहा है क्या?
0: हाँ सुरेश सच बोल रहा है।
2: पर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा?
0: बस ऐसे ही डर लग रहा था।
2: मुझसे डर? चलो कल मिलते हैं।
0: ओके बाय।
2: बाय। सुरेश यार आज तो मजा ही आ गया, चल फिर कल मिलते हैं।
1: पिंकी सुन, राहुल को यकीन हो गया है कि तू उसे पसंद करती है, अब बस कुछ समय तक यूं ही नाटक करती रहे, फिर उसको छोड़ देना, और कल जब तू राहुल से मिले तो उसे कहना वो तुझे नया फोन दिलाए।
0: ठीक है।
2: हेलो पिंकी। हेलो सुरेश।
0: हेलो
2: पिंकी, तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो अपन दोनों कहीं घूमने चलें।
1: हाँ अब मेरी थोड़ी याद आएगी।
2: नहीं रे ऐसी कोई बात नहीं है, पर पिंकी से कुछ बात करनी है।
1: ठीक है, तुम दोनों बाहर जाओ और मैं घर जा रहा हूँ।
0: बोलो क्या बात करनी है?

0: आज तो इतने पैसे क्यों ले गया?
1: वो माँ, बस थोड़ा सा काम था।
0: ठीक है बेटा, खाना खा लेना, मैं जरा थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। हेलो चंचल, कैसी है बेटा?
2: मैं ठीक हूँ माँ, आज इतनी देर हो गई, सोई नहीं आप?
0: बेटा आजकल रोज देर हो जाती है, यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बेटा मैं क्या करूँ?
2: क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो?
0: बेटा राहुल आजकल सिगरेट पीने लग गया है, देर रात तक बाहर रहता है, फोन पर लगा रहता है, आज तो अलमारी से बिना बताए 10,000 रुपए ले गया। बेटा चंचल मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है शुरू से ही, और अब बात बढ़ती जा रही है। बेटा हो सके तो तू आ जा, अब राहुल बस तेरी बात समझ सकता है।
2: माँ तुम परेशान मत हो, एक दो दिन में आती हूँ, और राहुल से अभी कुछ मत कहना।
0: ठीक है बेटा।
3: हेलो राहुल।
1: हाँ पिंकी, इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है?
3: एक दिक्कत हो गई है राहुल।
1: क्या हुआ बताओ मुझे जल्दी।
3: यार राहुल मुझे ना 15,000 रुपए चाहिए थे।
1: यार पिंकी, अभी ही फोन के लिए पैसे लिए हैं, अब इतने पैसे, चलो चलो मैं सब करता हूँ, तुम परेशान मत हो।
3: ठीक है राहुल, थैंक यू।
1: ये लो 15,000 रुपए।
3: थैंक यू सो मच राहुल।
1: हेलो पिंकी, आज मिले क्या?
3: ठीक है राहुल। हेलो सुरेश, आज राहुल से मिलने जा रही हूँ।
4: ठीक है, मांगो फिर आज कुछ।
3: बिल्कुल।
1: पिंकी मुझे तुमसे कुछ कहना है।
3: कहू ना राहुल।
1: हमें अपने घरों में बता देना चाहिए अब, और शादी के लिए बात आगे बढ़ानी चाहिए।
3: ये क्या बोल रहे हो तुम राहुल? शादी नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, पागल हो गए हो तुम? क्या बोल रहे हो, कोई शादी नहीं हो सकती, मैं घर जा रही हूँ, बाय। हेलो सुरेश।
4: हाँ बोल पिंकी।
3: यार वो राहुल वो तो शादी के लिए बोलने लग गया, मैं तो उठ के घर आ गई।
4: ये क्या बात कह रही है तू?
3: हाँ जब से आई हूँ तब से फोन पे फोन किए जा रहा है।
4: एक काम कर, उसे सच बोल दे कि तू उसे पसंद नहीं करती, बस ऐसे ही आकर्षित हो गई थी कुछ समय के लिए, और फिर फोन मत उठाना।
3: ठीक है। हेलो राहुल।
1: पिंकी इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो, और ऐसे ही बिना बात किए क्यों आ गई? अभी तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, कुछ समय बाद बोल देना।
3: राहुल मेरी बात सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ना अब भी ना बाद में, मैं बस आकर्षित हो गई थी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, भूल जाओ मुझे, और अब मुझे फोन मत करना, बाय।
1: पिंकी सुनो।
2: राहुल कहाँ था, देख मैं आई हूँ तेरी बहन।
0: बेटा दरवाजा खोल।
2: राहुल पागल हो गया है क्या, ये क्या कर रहा है तू, दरवाजा खोल, बात तो सुन मेरी।
1: नहीं जीना और मुझे।
0: अरे राहुल बेटा क्या कर रहा है तू, ये सही नहीं कर रहा है।
2: अरे भाई ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती जो घर वालों को नहीं बांटी जा सके, ये सब कायर लोगों के काम है, तो दरवाजा तो खोल, अरे बात तो सुन हमारी। तू तो अपनी दीदी को बहुत मानता है ना, मेरी बात नहीं सुनेगा क्या? एक बार दरवाजा खोल यार, बात करते हैं भाई बाहर आ।
1: दीदी वो पिंकी ने मुझे झूठ कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझे छोड़कर चली गई, पर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ।
2: देख राहुल पहली बात तो वो लड़की तेरे लायक ही नहीं थी, और इस बात की वजह से तू खुद की जान ले रहा था, जैसे दोस्तों के साथ

0: रह रहा था ना, उन सब के लिए तो ये सब आम बात है, तो तुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है?
1: माँ प्लीज मुझे माफ कर दो।
0: और अब तू वादा कर, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा और माँ को तो बिल्कुल परेशान नहीं करेगा।
1: थैंक यू दीदी।
2: तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब भी आपके विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमको लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है
3: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
2: अब आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
4: अभी हम सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार। इसके लिए आइए आपको ले चलते हैं

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियान

0: identity, not only across India but also internationally. Her remarkable ability to bring the stories of the Mahabharata to life on stage made her one of the most celebrated exponents of Indian folk culture. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the demise of the renowned Pandwani singer Tijanbai. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh will be leading the Indian delegation to Geneva, Switzerland from tomorrow to participate in the inaugural United Nations Global Dialogue on AI Governance. The annual Shri Amarnath Yatra has witnessed an encouraging start this year, with more than 32,000 devotees offering prayers at the Holy Cave Shrine during the first 2 days of the pilgrimage. On the second day of the Yatra, more than 20,000 pilgrims performed darshan at the revered cave shrine, registering a notable increase over more than 14,000 devotees who visited the shrine on the corresponding second day last year. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Kutch, Konkan, Goa, central Maharashtra and Odisha today. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day. In the Grand Chess Tour in Croatia, Grandmaster R. Pragyananda slipped to the fourth place after a disappointing start of the Blitz section. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:10 हो रहे हैं। वक्त है प्रादेशिक समाचार का। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। वीवीजी रामजी के तहत राज्यों को मदर सैंक्शन की प्रथम किस्त का आवंटन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित गांव बनाने का व्यक्त किया संकल्प। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में एसआईआर अभियान को लेकर मतदाताओं की सुविधा और एन्यूमरेशन भरने के लिए साझा किया वीडियो, लोगों से शेयर करने की अपील। अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कंपनी के निदेशक को सुनाई 3 साल की सजा, इंजीनियर बरी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र का झारखंड में असर। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और रांची में कल से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय अंडर-9 ओपन और बालिका शतरंज चैंपियनशिप का होगा आयोजन। देश भर से 438 खिलाड़ी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने विकसित गांव बनाने का संकल्प व्यक्त किया।
2: प्रतिबद्धता का परिणाम है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में वित्तीय संसाधनों की पैसे की कमी नहीं आएगी। मैं सभी राज्य सरकारों को पुनः आग्रह करूंगा कि भारत सरकार ने अपना शेयर दे दिया, वो अपना शेयर दें ताकि मजदूरों को मजदूरी मिलने में विलंब ना हो। सजग रहना है, सचेत रहना है, ताकि बिना किसी गड़बड़ और अनियमितता के हम मजदूरों को रोजगार देने का काम और विकसित गाँव बनाने का काम के हमारे संकल्प को हम पूरा कर सकें।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की सुविधा और एन्यूमरेशन भरने के लिए एक वीडियो तैयार किया गया है, जिसका शीर्षक अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है। उन्होंने इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करने की अपील की है। धनबाद की सांसद ढुल्लू महतो ने दावा किया कि उन्हें भी गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से कई

0: बार धमकियां मिल चुकी हैं। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को भी उन्हें धमकी मिली थी और इससे पहले भी कई बार ऐसे कॉल आ चुकी हैं। इस संबंध में उन्होंने धनबाद के SSP और केंद्रीय गृह मंत्री को लिखित शिकायत दी है।
1: हमें प्रिंस खान से धमकी आया 1 तारीख को, उसके पहले भी कई बार आया। ये जिला प्रशासन को मैंने सूचना दे दिया है। जिला प्रशासन का काम है क्राइम को कंट्रोल करना, राज्य सरकार का काम है। 2-2 बार 3-3 बार हम गृह मंत्री से मिल चुके हैं। हर क्रिमिनल का घर ढाना चाहिए, उसका तो पहले करना चाहिए।
0: भारत की पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप की पहली खेप कल गुजरात के सानंद स्थित CG सेमीकॉन ओसैट प्लांट से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए रवाना की गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर जमशेदपुर की बेटी तनीषा गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद कर पूरे झारखंड का मान बढ़ाया। आकाशवाणी से बात करते हुए तनीषा गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में झारखंड की बेटियों की सराहना की।
2: प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी लड़कियां झारखंड से थी, जमशेदपुर से थी, इन सारी लड़कियों की बहुत ज्यादा सराहना की है कि झारखंड एक ऐसा पिछड़ा हुआ राज्य जहां पर आज भी बहुत सारी लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, वो सारी लड़कियां अपने घर से 2700 किलोमीटर दूर आके गुजरात में काम कर रही है, सेमीकंडक्टर में काम कर रही है। ये हमारे पूरे देश के लिए, जमशेदपुर के लिए, झारखंड के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है।
0: CISF ने प्रशासनिक फेरबदल करते BCCL धनबाद के नए DIG के रूप में राजीव मिश्रा की नियुक्ति की है। वहीं यहां पदस्थापित DIG जितेंद्र कुमार तिवारी का तबादला BSL बोकारो कर दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@EIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@EIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकती हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के बहुचर्चित 16 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में CBI की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दिलीप कुमार सिंह को दोषी ठहराया है। CBI के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने उन्हें 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 1,00,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने मामले में ट्रायल का सामना कर रहे तत्कालीन जूनियर इंजीनियर सुरेश शर्मा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भांग को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित कैनबिस की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। जस्टिस PK श्रीवास्तव की अदालत ने इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा 7 वर्ष के कठोर कारावास और ₹50,000 जुर्माने की सजा पाए सुनील सिंह को बरी कर दिया। जमशेदपुर के जुगसलाई में कपड़ा दुकानदार पर रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। CTSP ललित मीणा ने संवाददाताओं को बताया कि मामले में फरार चल रहे आरोपी मोहित बाग को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी।
3: फायरिंग की घटना हुई थी, बाद में जब अनुसंधान किया तो उसमें पता चला कि ये फायरिंग रंगदारी मांगने के इंटेंशन से, धमकाने के इंटेंशन से की गई थी। 9 जने पहले पकड़े जा चुके हैं। गाड़ी की बरामदगी हो चुकी है, 5 देसी पिस्तौल की बरामदगी हो चुकी है, खोखा और जिंदा गोलियां की बरामद हो चुकी है और ये व्यक्ति मोहित बाग पकड़ा गया।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रूपये प्रति किलो है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पश्चिमी भाग में बने निम्न दबाव क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड के मौसम पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 39वीं राष्ट्रीय अंडर-9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कल से 12 जुलाई तक रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय महिलोंग में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 438 प्रतिभाशाली बाल शतरंज खिलाड़ी अपनी रणनीति, कौशल और बुद्धिमता का प्रदर्शन

करेंगे। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ एक टीम की तरह कार्य करते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां तय समय सीमा के भीतर पूरी करने पर जोर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वीवीजी रामजी के तहत राज्यों को मदर सैंक्शन की प्रथम किस्त का आवंटन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित गांव बनाने का व्यक्त किया संकल्प। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में एसआईआर अभियान को लेकर मतदाताओं की सुविधा और एन्यूमरेशन भरने के लिए साझा किया वीडियो, लोगों से शेयर करने की अपील। अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कंपनी के निदेशक को सुनाई 3 साल की सजा, इंजीनियर बरी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र का झारखंड में असर। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और रांची में कल से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन और बालिका शतरंज चैंपियनशिप का होगा आयोजन। देशभर से 438 खिलाड़ी लेंगे भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

कार्यक्रम था सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में हम सुनेंगे मिड डे न्यूज और ठीक इसके बाद सुनेंगे दोपहर समाचार। इसके लिए आइए आपको ले चलते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
4: The significance is immense.
3: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और

0: हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: दीने दीने
3: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
4: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
5: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना ले ले चला। सावन में
3: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमरीका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो रहे हैं। वक्त है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम जय भारती का। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे कार्यक्रम जय भारती।

हालात जितने भी कठिन हो, हौसला उतना ही ऊंचा रखें। अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास करें। कार्यक्रम है फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को सुप्रीता का प्यार भरा नमस्कार।

लक्ष्य फिल्म से ये गीत अभी हम सुन रहे थे। आवाज़ें थी शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन और साथियों की। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने। अरिजीत सिंह की आवाज में आइए सुनते हैं कौशल मुनीर का लिखा गीत फिल्म पैडमैन से। इस गाने की धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, आइए सुनते हैं फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से। इस गाने की धुन बनाई है अमाल मलिक ने और इस गाने को गाया है अरिजीत।

चलते चलते आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और विनोद राठौर की खूबसूरत आवाजों में फिल्म बाजीगर से गाना। इस गाने की धुन बनाई है अनु मल्लिक ने और इस गाने के बोल लिखे हैं जफर ने।

0: अभी हम सुन रहे थे जय भारती कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत रांची जिले में इन्यूमिनेशन फॉर्म के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का कार्य तेज है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री के निर्देश पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल ऑफिसर BLO आज सुबह से ही घर घर जाकर मतदाताओं के बीच फॉर्म का वितरण और संग्रहण कर रहे हैं। उपायुक्त ने सभी BLO को निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन सुबह अधिक से अधिक घरों तक पहुंचकर फॉर्म का वितरण और संग्रहण सुनिश्चित करें। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठन को मजबूत बनाने, आगामी राजनीतिक रणनीति और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री मरांडी ने आज बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई मुलाकात सकारात्मक और सार्थक रही। पूर्व मंत्री और गिरिडीह से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा है कि महिलाओं की राजनीतिक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करवाना उनकी पार्टी का लक्ष्य है। श्री चौधरी रांची में आजसू पार्टी की सहयोगी संगठन अखिल झारखंड महिला संघ के राज्य स्तरीय अधिवेशन के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
1: एक एक महिलाएं हर एक बूथ पर रहेगी, उसके बारे में उनको हम पूरी जानकारी दे रहे हैं ताकि जेन्युइन वोटर है उनका नाम नहीं कटे और फर्जी वोटर है उसका नाम हटाया जाए। यह ट्रेनिंग अभी भी हमारे पार्टी की ओर से चल रहा है और जो आरक्षण देने की बात है, नौकरी में लोकसभा में भी बिल पास हुआ लेकिन विरोध किया गया विपक्ष के द्वारा। ये बातें महिलाओं को बताना ज्यादा जरूरी है कि कौन के साथ खड़ा है और कौन आपको धोखा दे रहा है।
0: केंद्र सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और उसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने

0: यहाँ आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में। एंड सबसे जरूरी बात यह है कि एड्स का कोई क्योर नहीं है, ठीक है, तो बचाव ही उसका क्योर है।
1: राजधानी रांची में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने बीती देर रात विशेष अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस की कई टीमों ने एक साथ विभिन्न क्षेत्रों में सड़क किनारे मादक पदार्थों का सेवन करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वाले पब बार रेस्तरा के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की। श्री रंजन ने बताया कि जिन पब और बार में नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार ने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजनबाई के निधन पर गहरा शोक जताया है। गायिका लंबे समय से बीमार थी और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी को विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई थी। उनका निधन कला एवं संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी हम सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं जोश फिल्म से ये गाना। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। इस गाने के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे, समझ

आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे पोस्टकार्ड सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी, जिसका प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
2: श्री मोहन नागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में। जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
3: बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं, बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं।
2: आपको समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली?
3: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गांव में हुआ है, और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने में। मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे, कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य के लिए गए तो समाज ने फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली, तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चलकर के काम आई और पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए, शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए हैं।
2: आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?
3: बिल्कुल, मैं जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहाँ का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहाँ बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी और वहाँ का जो समाज है, विशेषकर जो जनजातीय आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद, खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता था, क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग माह में पदयात्रा की गांव की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान में आया कि पानी गिरता तो पर्याप्त लेकिन रुकता नहीं है, और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किया जाए। वहां के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टॉप डैम बना करके

0: और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हमने हम एकल विद्यालय भी वहां पर 400-500 गांव में चलाते थे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने से 15 से 20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांवों में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं, क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनके एक एक दो दो एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ और उसके साथ में लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला।
1: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एडुकेट किया है, जो वहाँ के पेरेंट्स थे वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
0: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, बाद में तो फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गाँव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे, पूछते थे कि सबसे बड़ी आपके गाँव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गाँव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा उसका चयन किया, उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की। ट्रेनिंग में उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर गांव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है, तो उसके माध्यम से फिर गांव में ये विद्यालय प्रारंभ किया। और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे, उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन, व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परंपरागत जो हमारी गोंडी संस्कृति, कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना, और धीरे धीरे फिर उन बच्चों का शिक्षा के रूप में विकास हुआ, फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। उनमें से कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं। हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किए, क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उसमें भी बच्चे रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं, कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
1: सर, आदिवासी और जनजाति समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्य धारा से जुड़ गए हैं या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
0: हमारा जो जनजाति आदिवासी समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रहकर के तो जंगल खत्म कर दिए, गाँव में जंगल खत्म कर दिया, वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए, जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के। कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णा मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बहके जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए, हमने कुछ बीज उनको दिए और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गोपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहां होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गांव में। और जो पलायन था, फिर सरकार के बीच बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के, पानी, सड़क सब गाँव गाँव तक पहुंची, उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा ही गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया, जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
1: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
0: जी बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षविहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए, और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है, और इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए, इसी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहाँ की जो सोना घाटी उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया, वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहाँ जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की, और उसके लिए हमने समाज को आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने ही है ये सब हमारे ओवर टैंक के पानी की टंकियां हैं, जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं। हाँ। तो ये पहाड़ हमारे पानी की टंकियां हैं, इस वर्षा का जल भर जाता है बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां

0: खुद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4 वर्षों में जहां 1000 फुट पर भी पानी नहीं था वहां 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया। तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा अवतरण था कि उसके गंगा जी को रोको और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था कैच द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहां गिर रहा है वहां पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है। और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहां गिरे वहां उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहां के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा अवतरण अभियान है।
1: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स आप हमारे श्रोताओं को, गर्मियां आएंगी फिर बारिश आएगी तो वो भी जल का संचयन कर सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए 3 उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा
1: जी,
0: कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए। फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा, और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये 3 बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा। ये 3 बातें, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है, और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहाँ गिरता है हमारे घर का पानी घर में रुके। उसके लिए हमारे घर की छत 1000 फुट की भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही कहीं पर, आज हम घर बनाते हैं तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें, कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितना चाहे उतना मन चाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं। अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए और छोटे छोटे काम अपने गांव की, कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गांव का पानी गांव में रुके। इसलिए तालाबों का हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है, मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है उसको बना करके, गांव गांव में तालाब बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपना रोके। फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर भी करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30,000 से 35,000 लीटर पानी केवल उतने माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोना घाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल,
1: वो उसी
0: पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना है जन्म शताब्दी वर्ष में तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों को, आसपास के गांवों का आह्वान किया कि ये सोना घाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई और उसके बाद फिर 32,000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। आज लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं। तो ये काम समाज के माध्यम से कर सकते हैं और ये पूरा हजारों लोगों ने अभियान में पूरा अपना योगदान दिया।
1: बहुत अच्छी बात कही है। चूंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति चतुर्मास, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी बिल्कुल, चतुर्मास जो है प्रकृति को समर्पित, गांव को समर्पित, हमारी नदियों को लेकर के, परंपरागत जो हमारी पद्धति थी उसको लेकर के कि नदियां कैसे बनती है और लोग पानी का संरक्षण कैसे करते थे और हमारे पूर्वजों की क्या परंपरा थी, उसको लेकर के ही उसमें कुछ कविताएं लिखी है। उस कृति को मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी ने और दुष्यंत कुमार पुरस्कार पुरस्कार से भी सम्मानित किया है।
1: आप जन अभियान परिषद में भी उपाध्यक्ष हैं, भारत भारती शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हैं, शासन, शिक्षा और समाज सेवा, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये एक ही काम है, ये एक प्रकार से सेवा की त्रिवेणी है। जब मैं बैतूल जिले में यह काम कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में आया होगा कि यह काम पूरे प्रदेश में होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है। और पिछली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान, उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में हजारों गांवों में जाकर के इस अभियान को लिया, और उनके नेतृत्व में हमने 40 लाख लोगों को जनभागीदारी से इस नेटवर्क से लोगों को जोड़ा। हमने पुरानी 2200 बावड़ियों को स्वच्छ किया, 7000 कुओं को साफ किया, नदियों के तट स्वच्छ किए, और पुरानी जल संरचनाओं को हमने साफ करके समाज के माध्यम से नई जल संरचनाओं का निर्माण किया। अभी पूरे प्रदेश में हमने उसी के माध्यम से 7000 से ज्यादा बोरी बंधान बना करके वर्षा के जल को रोकने का काम किया है, शिक्षा के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से और समाज सेवा ग्राम विकास को लेकर के। और ये जो तीनों बातें हुई है, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का काम करने का अवसर दिया है। पहले एक जिला हमारे कार्यक्षेत्र में था, पूरे 55 जिलों का काम उन्होंने दिया।
1: बिल्कुल मोहन जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जल संरक्षण और उनके प्रति सोचने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपा सिंह।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

अभी हम सुन रहे थे पीपल्स पद्मावन आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे कार्यक्रम रांची मेलोडीज़।

हर वक्त मुस्कुराना फितरत है हमारी, आप यूं ही खुश रहें ये हसरत है हमारी। सुप्रीता के साथ आप हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज में, तो श्रोताओं खुश हो जाइए, आपसे प्यारी प्यारी बातें होगी और हम और आप मिलकर सुनेंगे खूबसूरत गाने। क्यों, कहो ना प्यार है।

जी हाँ दोस्तों, ये आपका और हमारा प्यार ही है जो हम सब आपके लिए खींचे चले आते हैं। वैसे एक बात और है श्रोताओं कि अगर हम देखा जाए तो कहते भी है ना कि समस्या देखकर जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है, क्या पता इसी समस्या के अंदर ही हमारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। कहते हैं अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बहुत बड़ी मिलेगी, इसलिए श्रोताओं परिवर्तन से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए और खुशियां बांटनी चाहिए।

दोस्तों, कठिन समय चल रहा हो या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कि लोग कोई भी परिस्थिति में अगर आपको डाल दे तो आप उस परिस्थिति से निकलने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका हल आपके पास नहीं है। जिंदगी में जितना हो सके दूसरों को देना सीखिए और जितना हो सके खुशियां चारों ओर फैलाइए।

दोस्तों, आप कौन हैं ये तो आप अच्छे से जानते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, अपने गोल्स को लिख कर रखें और एकदम उस पर फोकस करें। उसे पूरा करने के लिए जितनी मेहनत हो सके करें और अपने आप को हर परिस्थिति में खुश जरूर रखें।

0: प्रोग्राम रांची मेलोडीज में वक्त है एक छोटे से विराम का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज। कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं सुप्रीता। फ्रेंड्स, जिंदगी की इस राह में ठहरना बहुत जरूरी है, कभी खुद से मिलना भी बहुत जरूरी है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, पर हर दिन हम अपने हौसलों को कायम रखें, मुस्कुराकर हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, खुलकर हंसते रहें और अगर जरूरत पड़े तो झूम झूम कर गाएं और नाचे भी।

सड़कें खामोश थी पर सफर बोल रहा था। हर मोड़ पर ये दिल कुछ खोल रहा था। हवाओं में घुली थी एक आजादी सी और मुस्कान में छुपी थी एक कहानी सी। ये रास्ते भी अजीब होते हैं श्रोताओं, कभी सिखा देते हैं जीना तो कभी खुद से मिलवा देते हैं। रांची मेलोडीज में चलते चलते आइए आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत रांची जिले में इन्यूमरेशन फॉर्म के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का कार्य तेज है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजेंद्र के निर्देश पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल ऑफिसर BLO आज सुबह से ही घर घर जाकर मतदाताओं के बीच फॉर्म का वितरण और संग्रहण कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठन को मजबूत बनाने, आगामी राजनीतिक रणनीति और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री मरांडी ने आज बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई मुलाकात सकारात्मक और सार्थक रही। केंद्र सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। राजधानी रांची में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने बीती देर रात विशेष अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस की कई टीमों ने एक साथ विभिन्न क्षेत्रों में सड़क किनारे मादक पदार्थों का सेवन करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वाले पब, बार, रेस्तरा के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की। राज्यपाल संतोष गंगवार ने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉ. तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक जताया है। गायिका लंबे समय से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। राज्यपाल ने कहा कि उनका निधन कला एवं संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 9 जुलाई तक बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी हम सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं बाल श्रोताओं का कार्यक्रम बाल सभा।

0: बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और बारिश के इस सुहाने मौसम का भरपूर आनंद भी उठा रहे होंगे। कोई खिड़की से बारिश की बूंदों को निहार रहा होगा तो कई बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में तैराने की कोशिश कर रहे होंगे, तो कोई बारिश की फुहारों में भीगने की जिद कर रहे होंगे। क्यों बच्चों, सही कहा ना?
1: जी दीदी,
2: बिल्कुल बच्चों, आखिर बारिश का मौसम होता ही इतना प्यारा है। रिमझिम बरसती बूंदें, भीगी मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू और ठंडी हवाओं का स्पर्श, चारों ओर फैली हरियाली, ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने हरी चादर ओढ़ ली हो, है ना? और ये सब देखकर हमारा मन क्या हो जाता है? हमारा मन खिल उठता है, प्रसन्न हो जाता है ना बच्चों?
1: जी भैया।
0: हाँ भैया, बिल्कुल।

0: और इस मौसम में पेड़ पौधे भी जैसे नए जीवन से भर उठते हैं। पेड़ों की डालियां हवा के साथ झूमती हैं, पत्तियां मुस्कुराती सी लगती हैं। ऐसा लगता है मानो वे भी बारिश का स्वागत करते हुए खुशी से नाच रहे हों।
1: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, लेकिन बच्चों आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास तो कुछ गिने चुने पेड़ ही होते हैं, लेकिन जहां ऐसे अनगिनत पेड़ पौधे एक साथ हों वहां का नजारा कितना मनमोहक होता होगा। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और न जाने कितने ही जीव जंतु खुशी से विचरण करते होंगे।
0: भैया आप वनों की बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि ऐसा तो वनों में जंगलों में ही होता है, क्यों बच्चों?
2: जी दीदी,
1: बिल्कुल सही समझा आपने बच्चों। बच्चों वन यानी पेड़ पौधे, लताओं, झाड़ियों और तरह तरह के जीव जंतुओं से सजा प्रकृति का एक सुंदर संसार, जहाँ नदियां भी हैं जो कल कल कल कल करके बहती हैं। कहें तो यहाँ प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में नजर आती है।
0: हाँ बच्चों, वन केवल धरती की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि ये तो प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। हमारे जीवन के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। हम जो सांस लेते हैं उसमें पेड़ पौधों वनों का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे?
1: और ये वन हमें क्या देते हैं बच्चों?
2: शुद्ध हवा और ऑक्सीजन।
1: और वातावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखते भी हैं, है ना, ताकि हम स्वस्थ और सुखद जीवन जी सकें।
0: बिल्कुल सही कहा बच्चों, वन हमें केवल शुद्ध हवा ही नहीं देते बल्कि स्वादिष्ट फल, औषधियाँ, बहुमूल्य लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ वर्षा के चक्र को संतुलित बनाए रखने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: और ये हमारी धरती को हरा भरा तो रखते ही है बच्चों, साथ ही असंख्य पशु पक्षियों तथा जीव जंतुओं को भी सुरक्षित आश्रय भी देते हैं। और इतना ही नहीं, पेड़ों की मजबूत जड़ें मिट्टी को मजबूती से थामे रखती है, जिससे मिट्टी का कटाव क्या हो जाता है, रुक जाता है। नदियां और अन्य जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहता है, है ना?
2: हाँ भैया।
0: बच्चों जरा सोचिए, अगर किसी दिन ये पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाए तो वन ही ना रहे तो
3: मन उदास हो जाएगा।
1: और मन इसलिए उदास हो जाएगा क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पक्षी भी नहीं होंगे और चारों ओर जो हरियाली होती है वो हरियाली भी हमें नजर नहीं आएगी, है ना?
3: हाँ।
1: और ऐसे में धरती सूनी सूनी सी दिखाई देगी, है ना?
0: हाँ बच्चों, प्रकृति की हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी है। यदि एक कड़ी कमजोर होगी तो उसका असर हम सब पर पड़ेगा और पेड़ पौधों वनों के बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है।
1: इसलिए बच्चों ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। घर हो, विद्यालय हो या आसपास की कहीं खाली जमीन हो तो वहाँ हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए।
0: और सिर्फ पेड़ पौधे लगाए ही नहीं बल्कि उसकी देखभाल भी करें और प्रदूषण ना फैलाएं, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने का प्रयास करें। और इसके लिए आप अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकते हैं।
1: हाँ बच्चों, प्रकृति हमें बिना किसी स्वार्थ के इतना कुछ देती है, अब हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम उनका संरक्षण करें और अपने आसपास हरियाली बढ़ाने का प्रयास करें।
0: क्योंकि बच्चों सच तो यही है कि जब वन सुरक्षित रहेंगे तभी हम सबका जीवन और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। और बच्चों प्रकृति की बात हो और उसके प्यारे प्यारे जीवों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, जंगल में रहने वाले जीव हो या हमारे घर आंगन में रहने वाले पालतू जानवर, हर जीव प्रकृति का एक अनमोल हिस्सा है। तो आप लोगों के घर में कौन कौन सा पालतू जानवर है बताइए?
3: गाय।
1: हाँ, आपके घर में गाय। और आपके घर में?
3: बिल्ली।
1: बिल्ली। और डॉग भी होगा?
3: हाँ।
1: तो बच्चों ये सब पालतू जानवर हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, खरगोश या रंग बिरंगे पक्षी भी होंगे, है ना? बहुत सारे बच्चों के घर में ये सब भी होंगे और ये हमारे कितने अच्छे दोस्त बन जाते हैं ना, और इनके साथ हम बहुत खुश भी रहते हैं। लेकिन बच्चों जितना जरूरी इन्हें दोस्त बनाना है, प्यार से उनकी देखभाल करना है, उतना ही जरूरी इनके साथ रहते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए।
0: बिल्कुल बच्चों, पालतू जानवरों के साथ हमेशा प्यार और अपनापन रखें, लेकिन उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान ना करें, विशेषकर जब वे खा रहे हों, आराम कर रहे हों या अपने बच्चों के साथ हो, तब उन्हें छेड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होता।
1: और बच्चों, अगर कोई जानवर घबराया हुआ हो, गुस्से में हो या बीमार दिखाई दे तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें और तुरंत घर के किसी बड़े सदस्य को इसकी जानकारी दें।
0: हाँ बच्चों, पालतू जानवरों को समय समय पर टीके लगवाना, उन्हें साफ सुथरा रखना और उनके रहने की जगह की स्वच्छता का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। इससे वे भी स्वस्थ रहते हैं और हम भी सुरक्षित रहते हैं।
1: और बच्चों, यदि खेलते समय किसी जानवर से खरोंच लग जाए या वो काट ले तो उसे कभी भी हल्के में ना लें, नजरअंदाज न करें। घाव को तुरंत क्या करना है? साफ करना है और बिना देर किए डॉक्टर से मिलना है। याद रखें बच्चों, दया, संवेदना और जिम्मेदारी ही एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। तो चलिए बच्चों, बातें तो बहुत सारी हो गई, अब कुछ मनोरंजन होना चाहिए, तो चलिए हम आप लोगों को सुनवाते हैं एक प्यारा सा बाल गीत।
2: लोग

0: बच्चों कैसा लगा आपको ये बाल गीत?
1: बहुत अच्छा।
0: तो अब आपकी बारी है, क्योंकि हमें पता है कि आप भी कुछ सुनाना चाहते हैं।
2: तो सबसे पहले कौन सुनाएगा?
1: मैं सुनाऊंगी।
2: तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है।
1: मेरा नाम प्रीशा नाया है।
2: सबसे पहले तो ये बताइए कि आप किस कक्षा में पढ़ती हैं?
1: टू
2: में। तो आज अपने दोस्तों को आप क्या सुनाएंगी?
1: कविता
2: सुनाइए।
1: जागो प्यारे, हुआ सवेरा, देखो भागा दूर।

0: अंधे है पूरम में लाली छाए, बागों में कलियां मुस्काए, तोता जागा मैना जागी, बछड़ा जागा गैया जागी, चहक चहक रही है गुरैया, तुम भी चेको मेरे प्यारे भैया, लल्ला तुम भी आंखें खोल, उठो हाथ मुंह अब तो धोलो, उठो बरो को सीख चुका नन्नो मुन्नो खुद राम, मीठी मीठी बातें बोलो, सबके मन में मिश्री घोलो। धन्यवाद।
1: वाह, मीठी मीठी
0: बातें बोलो
1: और सबके मन में
0: मिश्री घोलो।
1: वाह, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। और क्या सुनाएंगे आप?
0: विनती।
1: विनती कविता?
0: हाँ।
1: अच्छा, चलिए सुनाइए।
0: ईश्वर तुमने सूर्य बनाया, जो अंधियारा दूर भगाता, प्रभु तुमने चंदा चमकाया, स्वयं जागता हमें सुलाता, तुमने जल की धार बहाई, हमसे कहते बढ़ते जा, झजे स्वर में झरना गाता, कभी ना तुम मन में घबरा, दीपक जल का हमें सिखाता, तुम दुख सह कर भी सुख देना, धरती का कण कण सिखलाता, सिर पर सारे दुख सह रहना, हम इस धरती पर रहते धरती माँ के संतान बने, है प्रभु हम पर दया करो, हम भी अच्छे इंसान बने। धन्यवाद।
1: वाह, बहुत अच्छी कविता। हम पर प्रभु दया करो, हम भी अच्छा इंसान बने। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम श्रावणी आत्मजा है।
1: श्रावणी, आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
2: मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ।
1: कक्षा 7 में। आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाएंगी?
2: आज मैं अपने दोस्तों को एक कविता सुनाऊंगी।
1: कौन सी कविता?
2: यह कदम का पेड़। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता, यमुना तीरे मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठे आंखें नीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख में धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता, तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे।
1: वाह, बहुत अच्छी कविता। ये कदम का पेड़, इसके कवि कौन हैं?
2: इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान।
1: तो प्रिशा और श्रावणी ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई दीदी।
3: हाँ हाँ।
1: तो अब हमारी बारी है कि हम भी बच्चों को कुछ सुनाएं।
3: हाँ बिल्कुल, बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। बच्चों, अभी हमने वनों के महत्व के बारे में बातें की, पालतू जानवरों की बातें की, और इन बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि चाहे पेड़ पौधे हों, वन हों या पशु पक्षी, इन सबकी रक्षा करना ही तो पर्यावरण की रक्षा करना है। क्यों बच्चों?
4: जी दीदी।
1: लेकिन अक्सर बच्चों आप लोग सोचते होंगे कि पर्यावरण की रक्षा करना तो केवल बड़े लोगों का काम है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना? पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में आपकी यानी बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका है। बच्चों छोटे छोटे कदम मिलकर ही बड़े बदलाव लाते हैं, है ना?
3: हाँ बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो इतने छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखिए, किसी भी अच्छे काम के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं होता, बड़ा होना चाहिए आपका विचार, आपका लगाया हुआ एक पौधा, बचाया हुआ पानी का हर एक बूंद, और स्वच्छता की एक छोटी सी आदत भी पर्यावरण संरक्षण में अमूल्य योगदान बन सकती है। बच्चों
1: बच्चों आपके छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, पानी की बचत करना, बिजली का अनावश्यक उपयोग ना करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना, और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखना।
3: और इतना ही नहीं, अगर कहीं कोई पेड़ काटा जा रहा हो या कोई गंदगी फैला रहा हो तो बड़े लोगों को इसकी जानकारी देना और अपने दोस्तों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, ये भी तो एक जिम्मेदारी है जिसे हम सभी को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए।
1: हाँ बच्चों याद रखिए, प्रकृति हमारी जरूरतें तो पूरी कर सकती है, लेकिन हमारा लालच कभी नहीं। प्रकृति हमें हर दिन अनगिनत उपहार देती है, वो भी बिना किसी भेदभाव के।
3: तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उसका आभार उसके संरक्षण के माध्यम से व्यक्त करें, और पर्यावरण संरक्षण

0: किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है बच्चों, बल्कि हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: और इसकी शुरुआत आप आज से, अभी से और सबसे पहले खुद से कर सकते हैं, क्योंकि आज का जागरूक बच्चा कल का जिम्मेदार नागरिक बनता है। तो आप क्या करेंगे बच्चों?
2: अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे।
1: हाँ, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने हैं और लोगों को बताना भी है ना, पेड़ पौधे लगाने के लिए, और उन पौधों की देखभाल भी करनी है।
0: हाँ बच्चों, यदि हम प्रकृति की देखभाल करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, तो प्रकृति भी हमें स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरियाली और स्वस्थ जीवन का उपहार देती रहेगी।
1: और यही तो प्रकृति और मनुष्य का सबसे सुंदर रिश्ता भी है बच्चों, प्रेम का, संरक्षण का और जिम्मेदारी का। और हमें विश्वास है कि इसे आप जरूर निभाएंगे।
2: बिल्कुल भैया।
0: वो कैसे करेंगे बच्चों? पेड़ पौधे लगाकर, बिजली पानी की बचत करके और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से दूर रहकर। क्यों, सही कहा ना बच्चों?
2: हाँ दीदी।
0: याद रखिए बच्चों, आज का आपका छोटा सा प्रयास ही कल की हरी भरी धरती की सबसे बड़ी उम्मीद है।
1: तो बच्चों, बातें तो बहुत सारी हो गई और अब हम आपको सुनवाते हैं एक बाल कहानी, और कहानी का नाम है शबनम परी। इसे लिखा है कर्मजीत सिंह गठवाला ने।
3: मंद मंद समीर बह रही थी, पूर्व दिशा से सूरज धीरे धीरे उग रहा था। आसमान में हल्की सी सुनहरी लाली छा गई थी। हरजोत नींद से जल्दी जाग गया। आज रविवार था, उसको स्कूल भी नहीं जाना था। वो अपने बगीचे में खेलने आ गया। घास पर जमी ओस की बूंदे ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने हरे मखमल पर हीरे बिखेर दिए हों। वो झुक कर एक ओस की बूंद को निहारने लगा। तभी सूरज की किरण उस बूंद पर पड़ी और बूंद अचानक सात रंगों में चमकने लगी। हरजोत की आंखें चौंधी आ गई। वह खुशी से चिल्लाया, वाह, ये तो इंद्रधनुष बन गया।
4: वो कुछ देर तक देखता रहा। हर ओस कण पर वो किरण गिरती तो उसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी रंग, सब रंग झिलमिलाने लगते। हरजोत को ये जादू सा लगा। वो बोला, ये कैसे हुआ? क्या ओस के अंदर रंग छिपे रहते हैं? उसके इतना कहते ही उन ओस की बूंदों में से एक नन्ही परी प्रकट हुई। बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और पंख इंद्रधनुषी रंगों के थे। वो मुस्कुराई और बोली,
3: मैं शबनम परी हूँ, तुमने मुझे प्यार से देखा है और तुम्हारे मन में मेरे लिए उत्सुकता जागी है, इसलिए अब मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी।
4: हरजोत हंस पड़ा, सचमुच तुम ओस से निकली हो?
3: परी बोली, हाँ, हर बूंद में थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा जादू छिपा होता है। जब सूरज की किरण उस पर पड़ती है तो प्रकाश सात रंगों में बिखर जाता है, इसलिए मैं इंद्रधनुष जैसी लगती हूँ। ये प्रकृति का खेल है और मैं हूँ उसका रूप।
4: हरजोत के ओठों पर मुस्कान खेल रही थी। उसने पूछा, ओ प्यारी परी, भला ओस और घास में क्या रिश्ता है?
3: परी मुस्कुराई, तुम्हारा प्रश्न तो बहुत प्यारा है। घास धरती का सबसे विनम्र संतान है। दिन भर सूरज की गर्मी झेलती है और रात में जब हवा ठंडी होती है तो आकाश की नमी उसके ऊपर आकर ठहर जाती है। वो नमी ही ओस बन जाती है। बस यूं समझो, घास और ओस माँ बेटी जैसी हैं। घास धरती से जन्म लेती है और ओस आकाश से उतरती है। दोनों मिलती हैं तो धरती माँ मुस्कुराने लगती है।
4: हरजोत की नजर बगीचे के फूलों पर पड़ी। उन पर भी ओस की बूंदें चमक रही थी। उसने पूछा, और फूलों का रिश्ता क्या है ओस से?
3: परी ने कहा, फूल ओस को अपनी सखी मानते हैं। रात में जब वे सो जाते हैं तो ओस आकर फूलों को चूमती है, उन्हें दुलारती है, उनकी थकान मिटाती है और सुबह उन्हें नई ताजगी देती है। अगर ओस ना हो तो फूल मुरझा जाएं, इसलिए तो कहते हैं जहां ओस गिरे वहां जीवन खिले।
4: हरजोत कुछ सोचते हुए बोला, लोग ओस की तुलना आंसू, पसीने और अमृत से क्यों करते हैं?
3: परी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि ओस हर भावना की तरह अलग अलग रूप में समझी जाती है। देखो, जब किसी की आंखों से आंसू गिरते हैं तो कभी वे दुख के होते हैं तो कभी खुशी के। ओस भी ऐसी ही होती है, कभी धरती के दुख के आंसू मानी जाती है, कभी प्रकृति की खुशी की हंसी।
4: हरजोत ने उत्सुक होकर पूछा, हर पसीना?
3: परी प्यार से बोली,
0: हाँ
3: कुछ लोग कहते हैं कि ओस धरती का पसीना है। दिन भर जब सूरज उसे गर्म करता है तो रात को वो ठंडक पाकर अपने रोम रोम से नमी छोड़ती है, जैसे कोई मेहनती किसान खेत जोतने के बाद पसीना बहाता है या कोई मजदूर सारे दिन सख्त काम से पसीने से नहाया सा लगता है। इसलिए ओस में मेहनत और विश्राम दोनों की कहानी छिपी है।
4: और अमृत, हरजोत ने आखिरी प्रश्न किया।
3: परी ने अपनी हथेलियों में चमकती बूंदें उठाई और बोली, जब कोई व्यक्ति सुबह की ओस को देखता है तो उसका मन ताजा और शांत हो जाता है। इसलिए पुरानी कथाओं में इसे देवताओं का अमृत कहा गया है, क्योंकि ये जीवन को नई ऊर्जा देता है।
4: हरजोत ने कहा, तो क्या ओस सिर्फ पानी नहीं है?
3: परी मुस्कुराई, नहीं हरजोत, ओस केवल पानी नहीं, ये धरती की सांस, आकाश का दुलार और जीवन की मुस्कान है। ये हमें सिखाती है कि छोटी चीज भी कितना सौंदर्य और मानसिक शक्ति प्रदान कर सकती है।
4: तभी सूरज ऊपर चढ़ाया, उसकी किरणों में तपस बढ़ने लगी। वो घास पर पड़ी और उसकी बूंदें धीरे धीरे गायब होने लगी। हरजोत बोला, परी तुम जा रही हो, फिर कब आओगी?
3: मैं सुबह आती हूँ और सूरज के साथ लौट जाती हूँ। जब भी तुम ओस को देखो तो समझना कि मैं पास ही हूँ, सात रंगों की मुस्कान बनकर। इतना कहकर परी इंद्रधनुष में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई।
4: हरजोत देर रात तक घास पर बैठा रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ओस सिर्फ बूंद नहीं, जीवन का संदेश है, जो कहता है चाहे ओस की तरह छोटे हो, अपनी शीतलता और रोशनी से इस संसार को सुंदर बनाते रहो। वो मन ही मन मुस्कुराया और माँ को ये सब कुछ बताने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी?
2: बहुत अच्छी।
1: बहुत अच्छी। हाँ, तो चलिए अब कुछ जानकारी की बातें और होनी चाहिए, है ना?
2: हाँ।
1: तो हर हफ्ते हम आप लोगों को एक जानकारी देते हैं किसी न किसी एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में। तो आज हमारे प्रेरक व्यक्तित्व हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बच्चों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था, तो हम उनका कल मनाएंगे जन्मदिन। बच्चों, उनके पिता का नाम था सर आशुतोष मुखर्जी, भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, न्यायविद और कलकत्ता विश्वविद्यालय के वे कुलपति थे। उनकी माता योगमाया देवी धार्मिक, सादगीपूर्ण और संस्कारवान महिला थी। माता पिता दोनों ने बचपन से ही श्यामा प्रसाद को शिक्षा, अनुशासन और देश प्रेम का संस्कार दिया।
0: बच्चों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद भी एक सामान्य बच्चे थे, लेकिन उनमें एक विशेष बात थी कि उनमें सीखने की प्रबल चाह थी। कहा जाता है कि बचपन में वे घंटों पुस्तकें पढ़ा करते थे। उन्हें केवल पाठ्य पुस्तकें ही नहीं बल्कि इतिहास, साहित्य और समाज से जुड़ी किताबें भी पढ़ना उनको अच्छा लगता था। वे किसी भी विषय को समझने का प्रयास करते थे। यही आदत उन्हें आगे चलकर एक महान विद्वान बनाया। वे समय के महत्व को खूब समझते थे। यही कारण है कि वे समय का सदुपयोग करना अच्छी तरह जानते थे।
1: बच्चों, जब दूसरे बच्चे केवल खेल में व्यस्त रहते थे, तब श्यामा प्रसाद पढ़ाई के साथ साथ खेल, वाद विवाद और अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। वे मानते थे कि जीवन में सफलता के लिए पढ़ाई के साथ अच्छा चरित्र और अनुशासन भी आवश्यक है।
0: बच्चों, उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी अक्सर कहते थे कि ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। इस शिक्षा का श्यामा प्रसाद के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कभी भी कठिन परिश्रम से पीछे हटना नहीं सीखा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद ने अपनी पढ़ाई में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त किए। वे अंग्रेजी साहित्य और कानून दोनों के अच्छे विद्यार्थी थे।
1: उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चों अध्यापन और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और केवल 33 वर्ष की उम्र में वे कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने और इतने कम उम्र में इतने बड़े विश्वविद्यालय का नेतृत्व करना उनकी प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण था। बच्चों,
0: उन्होंने विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और शोध को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उनका मानना था कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि अच्छे नागरिक बनने का माध्यम है।
1: देश की आजादी के बाद वो भारत सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। उन्होंने देश के औद्योगिक विकास के लिए कार्य किया। बाद में उन्होंने अपने सिद्धांतों और विचारों के कारण मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। वे बड़े ही सिद्धांतवादी व्यक्ति थे बच्चों, और वे राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे।
0: सन 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उनका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय विकास के लिए कार्य करना था।
1: बच्चों,

0: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन हमें कई प्रेरणाएं देता है। पहली सीख कि पढ़ाई को बोझ नहीं समझना चाहिए, उसको अवसर समझे। उन्होंने ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया।
1: हाँ, और दूसरी सीख कि अनुशासन सफलता की कुंजी है। वे समय का सम्मान करते थे और हर काम पूरी लगन से करते थे।
0: उनका मानना था बच्चों कि जीवन भर व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखते ही रहना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
1: बच्चों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन देश प्रेम करना सिखलाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
0: तो बच्चों, यदि आप नियमित पढ़ाई करेंगे, समय का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता और शिक्षकों का आदर करेंगे, ईमानदार रहेंगे और अपने देश से प्रेम करेंगे, तो आप भी अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो बच्चों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, तो हमें आप लोगों से विदा लेनी होगी। लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो गौरव पांडे की थी। तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी बच्चों, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
2: जय हिंद।

इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। सूत्रधार थी रानी शुक्ला और अवधेश कुमार, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगले कार्यक्रम से पूर्व आइए आज के कुछ कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते चलें। अब से कुछ देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। संध्या 5 बजे और संध्या 6 बजे आप सुना करते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार, और संध्या 7 बजे का वक्त हुआ करता है प्रादेशिक समाचारों का। पांच बजकर 2 मिनट पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज के लिए चर्चा का विषय है परिवार, दोस्तों और यादों से मिलने का दिन रविवार। साथ ही आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी। पांच बजकर 30 मिनट पर श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक। कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी जलवायु की रक्षा के लिए वनों की भूमिका के संबंध में। साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी मानसिक तनाव को समझें और समाधान अपनाएं। छह बजकर 2 मिनट पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी में चर्चा की जाएगी अनाज भंडारण में सावधानियां। साथ ही आपको अदरक और हल्दी की वैज्ञानिक खेती के विषय में जानकारी देंगी डॉक्टर सविता एक्का। छह बजकर 32 मिनट पर कार्यक्रम हमारी दुनिया। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा सकारात्मक सोच का महत्व। साथ ही आप सुनेंगे डॉक्टर अजय कुमार दास की वार्ता जलवायु परिवर्तन। यह वार्ता खोटा भाषा में है। सात बजकर 15 मिनट पर संताली समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। श्रोता इस समय हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम में आप सुना करते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म कुर्बानी में आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। गीत रचना इंदिवर की है, संगीत कल्याण।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म धर्मात्मा में मुकेश, कंचन और साथियों को। शब्द रचना इंदिवर की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म हाथ की सफाई में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म आंखें में लता मंगेशकर को। शब्द रचना साहिल लुधियानवी की है, संगीत रवि का।

फिल्म आंखें के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: 16 जुलाई को शुरू होने वाला है। रथ यात्रा और मेले के सुचारू संचालन के लिए आज मंदिर न्यास समिति, पुलिस प्रशासन और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि मंडल के बीच एक बैठक हुई। बैठक के बाद अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक ने बताया कि रथ यात्रा और मेले के दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज से ही सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर में आज सुबह एड्स जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम लोगों और युवाओं ने साइकिल से यात्रा की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी।

0: बंधू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना सुनते ही आप मुस्कुरा दिए हो, या फिर वही गाना किसी की याद दिलाकर आंखें नम कर गया हो?
5: कभी कोई धुन आपकी कहानी बन गई हो, या कोई लफ्ज आपके दिल की आवाज लगने लगा हो?
4: तो दोस्तों, आज की ये शाम उन्हीं एहसासों के नाम, जहां हर गीत के पीछे छुपी है एक कहानी और हर कहानी में बसता है एक अनकहा सा जज्बात।
5: मैं हूं आपकी दोस्त वैभवी।
4: और मैं हूं आपकी दोस्त सना।
5: हम दोनों की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा
4: नमस्कार। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे, बल्कि हर गाने के साथ एक कहानी महसूस करेंगे।
5: आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, उनकी शायरियां आज के दौर में हम युवाओं के लिए प्रेरणा और अपने जज्बात बयां करने का एक साधन है। उनकी लिखी शायरी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जैसी अनगिनत शायरियां कल, आज और आने वाले हर पीढ़ी के लिए बेहद खास हैं।
4: बिल्कुल वैभवी, इनका जन्म 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाने में हुआ था। उस वक्त उनके परिवार वाले कहां जानते थे कि ये बच्चा भविष्य में शायर और गीतकारों की दुनिया का साहिर लुधियानवी के नाम से जाना जाएगा।
5: सही बात है, मगर सना, उनके जन्म के वक्त साहिर के पिता ने उनका नाम अब्दुल रखा था।
4: बिल्कुल,
5: साहिर लुधियानवी ने इकबाल साहब की शेर, इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिराज भी, सैकड़ों साहिर भी होंगे साहिबे एजाज भी, इस शेर से साहिर इतना प्रेरित हुए कि उन्होंने अपना नाम 10वीं के परीक्षा के दौरान साहिर कर लिया।
4: बिल्कुल दोस्तों, अब इस शायरी के बाद बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले साहिर लुधियानवी की लिखी गीत आप सबने सुनी होगी, और वह गीत है
6: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई।
7: तेरा मुझ

0: सना, अगर हम बात साहिर साहब की कर ही रहे हैं और अमृता प्रीतम का जिक्र ना करें तो ये फिर हमारे दोस्तों के साथ गलत नहीं हो जाएगा?
1: बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम की दोस्ती ही कुछ ऐसी थी।
0: सही कहा। साहिर साहब की मुलाकात अमृता से 1934 में गवर्नमेंट कॉलेज में हुई थी। अमृता पंजाबी लेखिका थी, साहिर भी अपनी शेरो शायरी के लिए कॉलेज में प्रख्यात थे। अमृता उनकी लेखनी की मुरीद थी और इस तरह उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई।
1: मगर दोस्तों ये सिलसिला जल्द ही खत्म हो गया और यहाँ से साहिर के मशहूर शायर साहिर लुधियानवी बनने की कहानी शुरू हो गई। आगे और भी बहुत सी अनकहे किस्से हैं आपके लिए, मगर एक गाने के बाद, और वो गाना है वैभवी का दूं।
0: बिल्कुल।
1: ओ मेरी

0: दोस्तों, कॉलेज से निकलने के बाद साहिर ने अपनी पहली किताब 1943 में तलखियां नाम से प्रकाशित कराई, जिसे उन्हें एक पहचान मिली। साहिर कहते हैं, इस किताब में तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है उसे लौटा रहा हूँ मैं।
1: बिल्कुल दोस्तों 1951 में पहली बार फिल्म नौजवान में गीत लिखने का मौका मिला। और फिर क्या, अपनी गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए से इन्होंने गीतकार के तौर पर खुद को फिल्म जगत में स्थापित कर दिया।
0: इसके बाद गुरुदत्त के निर्देशन की पहली फिल्म बाजी में साहिर साहब ने स्वतंत्र गीतकार के तौर पर पहली बार काम किया।
1: दोस्तों, साहिर ने बाजी, अरमान, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, मुनी मजी और प्यास जैसी अनगिनत फिल्मों के गीत लिखे, जो आज के दौर में भी हमारे दिल के बेहद करीब है।
0: और ऐसी ही एक गीत साहिर के कलम से लिखी अब हम सुनेंगे, जो मुझे पर्सनली बेहद पसंद है।
1: और वो गाना है उड़े जब जब जुल्फे तेरी, जिसे सुरों से सजाया है मोहम्मद रफी जी, आशा भोसले ने और संगीत है ओमकार प्रसाद ने।

0: सना, साहिर साहब की नज्मों में प्रेम, समर्पण, रुमानियत से भरी शायरी मिलती हैं, मगर साहिर गरीबों, मेहनतकश मजदूरों, जीवन दर्शन, देशभक्ति, बेवफाई, विरह, अलगाव और महिलाओं के हालात पर भी बेहद संजीदगी से गीत लिखा करते थे। साहिर के लिखे हर एक शब्द में जज्बात और सुकून, दर्द सब देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, दशकों बाद भी उनके गीत उतने ही जवां हैं जितने की पहले थे। उनकी रचनाएं कालजयी रचनाएं थी जो आज भी सुनकर महसूस होती है जैसे आज के युग पर लिखी गई हो।
0: जैसे समाज के खोखलेपन को दिखाते हुए वे लिखते हैं, जिंदगी सिर्फ मोहब्बत ही नहीं कुछ और भी है, भूख और प्यास की मारी इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है।
1: फिर 1961 में आई फिल्म हम दोनों में उन्होंने आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए लिखा, अल्लाह तेरा नाम, ईश्वर तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान।
0: समाज में महिलाओं की स्थिति पर साहिर लिखते हैं, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्द ने उसे बाजार दिया। फिल्म साधना के लिए ये गीत उन्होंने लिखी थी।
1: साहिर की कलम मानवीय रिश्तों के ताने बानों और प्रेम के नाजुक और महीन धागों को भी बहुत खूबसूरती से बयां करती है। साहिर बाप बेटी के रिश्ते और विदाई की बेला को बड़े ही खूबसूरती से बयां करते हैं। अपनी गीत में बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले।
0: साहिर अपने जीवन के अनुभव से जुड़े भी कई गीत लिखते हैं, जैसे जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, फिर फिल्म गुमराह की एक गीत, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये तमाम गीत आज भी हमारे एहसासों को बयां करने के काम आते हैं।
1: दोस्तों, साहिर साहब अपने कला की कदर करना और दुनिया से करवाना दोनों ही बाखूबी जानते थे। वे गीतकारों के हक के लिए आवाज़ भी उठाते थे। उन्होंने हमेशा अपनी गीतों के लिए पारिश्रमिक गायकों से एक रुपये ज़्यादा लेते थे। साहिर वे पहले गीतकार थे जिन्हें अपने गानों के लिए रॉयल्टी मिलती थी। इन्होंने ही पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर होने वाली घोषणाओं में गीतकारों का नाम भी दिए जाने की मांग की थी।
0: तो दोस्तों, ऐसे थे साहिर लुधियानवी। उनका नाम जीवन के विषाद, प्रेम में आत्मिकता की जगह भौतिकता तथा सियासी खेलों की वहशत के गीतकार और शायरों में शुमार है। चलते चलते सुनते हैं साहिर साहब की लिखी गीत,
1: और वह गीत है, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी।

0: भरा नहीं।
1: दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए अपनी दोस्त सना और वैभवी को इजाजत। नमस्कार।
2: इस समय आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: नमस्कार जोहार श्रोताओं, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और मेरे साथ हैं दीपा। आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार आशीष और सभी श्रमिक साथियों को भी मेरा नमस्कार। आशा करती हूं आप कुशल से होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे उस अनमोल धरोहर की जो केवल हरियाली ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन का आधार भी है।
0: जी हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया दीपा जी, आप वन यानी जंगल की बात कर रही हैं। प्रकृति के फेफड़े होते हैं ये वन। पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
1: इससे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम होती है और वैश्विक तापमान बढ़ने की गति धीमी पड़ती है। यही कारण है कि वनों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने का सबसे प्रभावी शस्त्र माना गया जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। और साथियों, वन वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती देती हैं, जिससे भूमि कटाव और बाढ़ जैसी समस्याएं कम होती हैं। साथ ही वन भूजल स्तर बनाए रखने और नदियों को जीवन देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: लेकिन साथियों, बढ़ती जनसंख्या, अंधाधुंध वनों की कटाई, शहरीकरण के कारण वनों का लगातार जो वन क्षेत्र हैं वो घट रहे हैं। इसका सीधा असर जलवायु पर पड़ रहा है। गर्मी बढ़ रही है और वर्षा कम हो रही है, उसका स्वरूप बदल रहा है और कहीं ना कहीं पूरे मौसम का स्वरूप बदल रहा है। और इसका ये ऐसी कोई बात नहीं है जो कहीं लिखी जा रही है, इसे हम महसूस कर पा रहे हैं। अभी ही जिस तरह की गर्मी थी और यूरोप जैसी जगहों पर जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, वहाँ गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये जो सारे चीजें हमें दिखाई दे रही है, हम जिनका सामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे इन्हीं जो हमने आज तक प्राकृतिक संसाधनों की अनदेखी की, वनों की कटाई के नहीं रोका और पेड़ पौधों को जो एक संरक्षण मिलना चाहिए उस और कम ध्यान दिया, उसी का नतीजा है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं दीपा जी, ये जलवायु परिवर्तन का गंभीर संकेत हमें मिल रहा है, क्योंकि कहीं गर्मी पड़ रही है तो अत्यधिक गर्मी, कहीं बारिश हो रही है तो अत्यधिक बारिश। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो फसल चक्र भी गड़बड़ हो रहा है, हमारे बारिश, हमारे मौसम, सभी का स्वरूप बदल रहा है। साथियों, ऐसे समय में हम सभी की जिम्मेदारी है कि वनों के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं, अधिक से अधिक पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें, अवैध कटाई का विरोध करें और प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करें।
1: याद रखें, एक पेड़ लगाना केवल पर्यावरण की सेवा नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य में निवेश है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण और वन संरक्षण अभियानों की जानकारी और जन भागीदारी बेहद आवश्यक है। जब समाज और प्रशासन मिलकर प्रकृति की रक्षा करेंगे, तभी एक स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण का निर्माण संभव हो पाएगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा जी। और मुझे लगता है कि हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि एक पेड़ माँ के नाम, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक संकल्प भी है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, कई पेड़ बचाएं और जलवायु की रक्षा में अपना योगदान निभाएं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आशीष आपने। और इसके साथ हम इस पर्यावरण संरक्षण के इस संदेश के साथ, इस संकल्प के साथ हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अपने श्रमिक साथियों के एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं और वह विषय है मानसिक तनाव। तनाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी हो सकता है, लेकिन यदि इसे समय रहते समझा जाए और संभाला जाए तो हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि काम का दबाव, पढ़ाई की चिंता, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां या भविष्य की अनिश्चितता, ये सभी तनाव के कारण बन सकते हैं। शुरुआत में तनाव सामान्य लगता है, लेकिन लगातार बना रहे तो यह अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, थकान, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का कारण भी बन सकता है।
1: और मानसिक तनाव किसी भी कारण से हो सकता है। जीवन की कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति इसे प्रभावित कर सकती है, लेकिन इससे बचना बहुत जरूरी है। और बचने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि मानसिक तनाव से जुड़ी जो बातें होती है ना वो बहुत ही छोटी होती है, शायद बहुत कोई उसको समझ भी नहीं पाते हैं, उस पर ध्यान भी नहीं जाता है, लेकिन कारण वहीं से शुरू होता है। तो इसके लिए हमें अपने दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, नियमित व्यायाम, योग, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और अपनी पसंद का कोई रचनात्मक कार्य, इन सभी को हम अपने दिनचर्या में शामिल कर तनाव को दूर कर सकते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग और अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना।
0: दिवाजी, आपने ये बहुत बड़ी बात कही। आज के समय में मैं लगभग हर एक जनरेशन में देख रहा हूँ कि हाथों में मोबाइल है और वो कंटिन्यूस उसको देखे जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम देख रहे हों, चाहे वो जानकारी के प्रोग्राम हैं या गाने ही देख रहे हों, लेकिन उसका कोई समय निश्चित नहीं है। और इसमें क्या होता है कि पहले के समय में अगर आप ध्यान करें या बात करें तो कुछ लोग सोने से पहले ध्यान करते थे या कुछ लोग किताबें पढ़ते थे, ये सारी व्यवस्थाएं जो थी बड़ी ही पहले के समय में बड़ी व्यवस्थित हुआ करती थी।
1: बिल्कुल आशीष, यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि पहले लोग अब घर पे बैठते थे, आपस में परिवार में लोग आपस में बात करते थे, अपनी असुविधाओं की बात करते थे, अपनी परेशानियों को बांटते थे, तो इससे क्या होता था, लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता था, तो तनाव कम होता था। आज लोगों का जो परिवार है वो सिमट गया है, लोग खुद में सिमटते चले जा रहे हैं और वो अपनी जो स्थिति है या अपने विषय में जो समस्याएं हैं
0: बोल नहीं पाते
1: हैं। और बोल नहीं पाते हैं ये भी एक कारण है, और कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं, लोग बोलना नहीं चाहते हैं, वो उसको वो अपनी सोशल स्टेटस से जोड़ने लगे हैं, सोचते हैं कि मेरी परेशानियों को अगर हम लोगों से बताएंगे तो मेरा स्टेटस कमजोर होगा, मैं लोगों के सामने कमजोर लगने लगूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी समस्याओं को जब हम लोगों के साथ साझा करते हैं तो हमें उसका समाधान मिलता है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों से बात करें।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथियों, मानसिक तनाव से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में जैसे छोटे छोटे बदलाव आप करते हैं, उसी तरीके से जैसे अभी मान लीजिए कि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले अभी 21 जून को योगा किया, तो आप उसे अपने नियमित जीवन में शामिल करें। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तनाव को नजरअंदाज ना करें। यदि तनाव लगातार बना रहे, रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे या निराशा घर आने लगे, तो बिना झिझक किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। समय पर सहायता लेना समझदारी का कदम है।
1: बिल्कुल साथियों, अपनी भावनाओं को मन में दबा कर रखना समाधान नहीं है, परिवार, दोस्तों या किसी विशेषज्ञ से बात करना भी हिम्मत की निशानी है। हम आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि स्वस्थ रहें, खुश रहें और मानसिक रूप से मजबूत बनें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातों को जाने देना चाहिए। ठीक है, आप कोई बातों को गंभीर रूप से उसको पकड़ के मत रखिए। आप जानते हैं कि कहीं मैं पढ़ रहा था कि सॉरी बोलना मानसिक शांति की भी निशानी है।
1: बिल्कुल, तो इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और कार्यक्रम, एक प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं।

0: बहुत ही
1: बहुत
0: अच्छा गीत आपने सुनवाया दीपा जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि तकनीकी शिक्षा कौशल विकास में सहायक विषय पर बदलते समय में केवल डिग्री ही नहीं, तकनीकी ज्ञान और व्यवहारिक कौशल भी सफलता की कुंजी बन चुके हैं।
1: तकनीकी शिक्षा वह शिक्षा है जो किसी व्यक्ति को विशेष कार्य, उद्योग या व्यवसाय के लिए आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को, खासकर युवाओं को, रोजगार योग्य बनाना और उन्हें आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना है।
0: आज उद्योगों में नई मशीनें, डिजिटल तकनीक और ऑटोमेशन नहीं रही है और आधुनिक कार्य प्रणालियां तेजी से अपनाई जा रही है। ऐसे में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जिसके पास तकनीकी दक्षता और नई तकनीकों को सीखने की क्षमता होती है। कौशल विकास आज के समय की आवश्यकता बन गई है।
1: इसका लाभ सभी लोगों को मिलता है और कार्यरत श्रमिकों को भी कौशल विकास का अच्छा लाभ मिलता है। इससे कार्य कुशलता बढ़ती है, साथ ही काम की गुणवत्ता बेहतर होती है, रोजगार के नए अवसर मिलते हैं, बेहतर कुशलता से उत्पादकता बढ़ती है और अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर और रोजगार के लिए सक्षम भी बनाया जा रहा है।
1: बिल्कुल, कौशल विकास का जो कार्यक्रम है यह सिखाता है कि जो व्यक्ति कौशल निखारता है अपना, वही बदलते समय के साथ आगे बढ़ता है। तकनीकी शिक्षा आत्मविश्वास बढ़ाती है क्योंकि समय तकनीक का है।
0: बिल्कुल
1: जो भी काम हो रहे हैं वो तकनीक से जुड़े काम हो रहे हैं, हर काम में आज तकनीक इस्तेमाल हो रही
0: बिल्कुल
1: है, तो
0: बिल्कुल
1: ये सीधी सी बात है कि तकनीकी शिक्षा आत्मविश्वास बढ़ाती है। अब ऑनलाइन प्रशिक्षण, डिजिटल पाठ्यक्रम और वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी तकनीकी शिक्षा सीखी जा सकती है।
0: बिल्कुल और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकें सीखें और कौशल को बढ़ाएं। कौशल विकास से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इस विषय में थोड़ी अधिक जानकारी लेते हैं हमारी आज की मेहमान पूनम शर्मा से, और उनसे बातचीत कर रही हैं दीपा।
2: दोस्तों, आज हर ओर हम स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास की बात सुनते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर अगर सही तरीके से ध्यान दिया जाए तो यह जीवन की दिशा को बदल सकता है। कौशल विकास योजना हमारे श्रमिकों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उनके कौशल को किस प्रकार बढ़ाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है, इन सारी बातों को जानेंगे हम हमारी आज की मेहमान पूनम शर्मा जी से। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से जोहार नमस्कार।
2: सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौशल विकास क्या है।
3: कौशल विकास व्यक्ति के ज्ञान, क्षमता और उसकी दक्षताओं को इस तरह विकसित करना है कि वह अपने आप को रोजगार या स्वरोजगार के योग्य बना सके और अपने जीवन की जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए उपयुक्त पैसा कमा सके।
2: जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि कौशल विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रोजगार प्राप्त करने को आसान बनाया जा सकता है।
3: बिल्कुल, ये रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए ही कौशल विकास की स्कीम या योजना चली है।
2: जी बिल्कुल, इस योजना के बारे में हमें कुछ बताइए।
3: ये योजना जो है उन लोगों के लिए है जो खास करके हमारे समाज में जो बहुत ज्यादा जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है या जिनको अवसर मिल पाया है, तो वैसे लोगों को आज के दिन में मार्केट के डिमांड के अनुसार उनकी दक्षता को आगे बढ़ाना है। जैसे युवा वर्ग को है, युवा वर्ग जो है 18 से 35 साल के जो बाहर में मजदूरी करने के लिए जाते हैं और उनके पास विकल्प नहीं होता, मजदूरी जाते हैं, तो उनके अंदर उनकी जो इंटरेस्ट है, उनका जो दिलचस्पी है, उसके अनुसार उनके हुनर को यानी उनके कौशलता को आगे बढ़ाना, उनको ट्रेन करना कि जब वो कहीं बाहर भी जाएं तो उनके अंदर बार्गेनिंग करने की क्षमता हो, अपनी मजदूरी के लिए बार्गेनिंग करने की क्षमता हो अपने दक्षता के अनुसार, और वो अच्छा खासा पैसा उनको कमा सके। तो 18 से 35 साल के अंदर के जो युवा हैं जिनको कि नौकरी पाने के लिए या व्यवसाय शुरू करने के लिए या आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको ये प्रशिक्षण दिया जाता है। और भारत में सबसे बड़ी जो आबादी है वो यही युवाओं की है, इसलिए देश के विकास के लिए भी इनका कुशल होना बहुत ही जरूरी है। शहर के युवाओं को तो फिर भी रोजगार मिल जाता है, उनके पास बहुत सारे विकल्प होता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं होता, उनके अवसर कम होते हैं। और कौशल विकास से वे छोटे छोटे उद्योग, कृषि आधारित कार्य या स्वरोजगार से भी जुड़ सकते हैं। कि हम कहते हैं ना कि भारत गाँव परिषद जो योजनाएं हैं वो सब गाँव पे ही केंद्रित है, वहां पर जब उनका हुनर बढ़ेगा, क्योंकि खेती से हमारे युवाएं बाहर जा रहे थे, तो खेती में भी अगर उनको कौशल विकास उनका किया जाए, बहुत सारे विकल्प हैं उनका किया जाए, तो उनके पास अवसर रहता है और वो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और इससे उनका मजदूरी भी बढ़ेगा, उनका शोषण कम होगा, उनके पास विकल्प होगा। फिर आप देखिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट तो होता है, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन आप देखो उनको गाड़ी करने में उनका मन लगता है, वो गाड़ी का कल पुर्जा को बहुत अच्छी तरह से सेट कर देते हैं, अपने घर के भी कई मशीनों को ठीक ठाक कर देते हैं। तो जो बच्चे 8वीं 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हुनर आधारित प्रशिक्षण देकर उनका रोजगार का रास्ता बन जाता है और वो एक बेहतर इंसान बन जाते हैं, वो देश के राष्ट्र के विकास में बहुत अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर। महिलाओं को हम देखते हैं तो वर्क फोर्स में, जबकि एक आम महिला जो है वो 16 से 17 घंटा घर में काम करती है, लेकिन देश की अगर आर्थिक व्यवस्था हम देखते हैं तो उसमें उनकी भागीदारी का नामो निशान नहीं रहता है। ऐसे में महिलाओं को हुनर बढ़ा के वो जो भी काम करती हैं, तो अगर महिलाओं का हुनर को बढ़ा दिया जाए कौशल विकास के जरिए, उसकी उपयोगिता उनको बताया जाए, उसके सार्थक मूल्य उनको पता हो, तो महिलाओं में बार्गेनिंग करने की क्षमता भी बढ़ेगी। आप देखो वहीं पर एक पुरुष अगर सिलाई सेंटर खोलता है तो एक साधारण सिलाई से वो ब्रांडिंग कपड़ा बनाना शुरू करता है, लेकिन महिलाएं वही पेटीकोट वही ब्लाउज बनाना शुरू करती हैं, उसमें अगर उनका कौशल विकास किया जाए तो वो भी डिजाइनर ड्रेस बनाना शुरू करेंगी, उनका भी मूल्य दाम वो बढ़ाएंगी, और इस तरह से महिलाएं हमारी दक्ष होंगी और देश के आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर बनेंगी, महिलाओं को अवसर भी आगे मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि दिव्यांग जन जो हमारे होते हैं उनके अंदर उनके इंटरेस्ट के अनुसार अगर उनकी दक्षता का विकास किया जाए तो वो एक सम्मानजनक रोजगार पा सकेंगे और उनका जो आत्मविश्वास है, उनका जो गरिमा है, उनके अंदर वो बढ़ेगा उनके सारे दक्षता के अनुसार।
4: यानी कि हम कहते हैं कौशल विकास योजना जो है ये हर तरह से लोगों को सक्षम बनाता है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में। और अब हम बात करें तो कौशल विकास श्रमिकों के सशक्तिकरण में क्या मदद कर सकता है?
3: देखिए, श्रमिकों के सशक्तिकरण में तो है कि एक तो उनके पास विकल्प रहेगा कि हम कौन सा काम करें, उनका शोषण नहीं होगा, उनके पास बार्गेनिंग करने की क्षमता उनके पास बढ़ेगी है, और आत्मसम्मान के साथ हो, आत्मविश्वास के साथ हो, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे उनके अंदर दक्षता बढ़ेगी, नई सोच भी उसके अंदर आएगा, वो एक नया इनोवेशन जो बोलते हैं ना, बहुत सारे इनोवेशन का जो प्रोजेक्ट है वो उसमें उसमें जोड़ेंगे, उसमें वो आगे बढ़ेंगे।
4: कौशल विकास योजना किस प्रकार से विकसित भारत बनाने में मदद कर रहा है?
3: कौशल विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे हम कहेंगे कि झारखंड में झारखंड कौशल विकास योजना है जो पूरे देश में कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं को लागू करता है, देश की जो भी कौशल विकास की योजना है उसको लागू करता है। इसका उद्देश्य होता है रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना है, और इसका मुख्य कार्यक्रम है राज्य कौशल विकास योजना जिसको SSDMY कहते हैं, और फिर अभी जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है जो 18 से 35 साल के युवाओं को प्रशिक्षण देकर और उनके रोजगार को सुनिश्चित करता है, और ये आवासीय प्रशिक्षण देता है और उनके आवास को सुनिश्चित करता है। अभी आप देखते भी होंगे कई जगह रोजगार मेला लगता है जिसमें इस तरह के युवाओं को सर्टिफिकेट देकर और उनको नौकरी दिलाया जाता है। फिर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे राज्य में लागू किया जाता है। ये सभी जो योजनाएं हैं इसमें स्किल ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा ये किया जाता है, और स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी उसका एक पैरामीटर होता है जिसके द्वारा सरकार के द्वारा इसको मान्यता दिया जाता है स्किल ट्रेनिंग सेंटर को, जो पार्टनरशिप के आधार पर कभी एनजीओ के द्वारा या अन्य एजेंसियों के द्वारा इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है।
4: हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे श्रमिक भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं, कौशल विकास योजना के बारे में उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
3: हम तो उनसे यही कहेंगे कि सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं वो हमारे लिए होती हैं। हम आज जो भी काम कर रहे हैं, हम जिस काम में हम दक्ष हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, तो और दक्षता के लिए हम क्या दो लाइन भी हम नया जानते हैं, नया सीख सकते हैं, तो हमें जुड़ना चाहिए। कौशल विकास के लिए जो पोर्टल है उस पोर्टल में हमको अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और ट्रेनिंग लेना चाहिए। हम जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होता है ना वो आज के मार्केट के अनुसार, आज का जो डिमांड है उसके अनुसार ये प्रशिक्षण देता है, और इसलिए हमारी जो आय है वो हमारे आय को भी बढ़ाता है, और इसके पूर्व में भी हम थे कि ये हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, क्योंकि हम उतना ही बोल सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं जितना हम जानते हैं। तो अगर हम और ज्यादा करें, और ज्यादा करने की इच्छा है तो हमें और ज्यादा जानने की भी इच्छा है, और ये अवसर देता है कि हम और ज्यादा जानें, तो इस अवसर से चूकना नहीं चाहिए। कौशल विकास का प्रशिक्षण जहाँ भी हो रहा है, जिस तरह से भी हो रहा है, हमें एकदम जैसे लगता है हमें भूख लगती है तो खाना बहुत जरूरी होता है, हमें जो हम खा लेते हैं, तो उसी तरह से कौशल विकास के लिए अपनी क्षमता को, अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारे अंदर भूख होनी चाहिए।
4: ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस प्रकार भूख लगने से हम खाना खाते हैं, उसी प्रकार जब हमारे अंदर अधिक जानने की इच्छा होगी तो हम इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे और अपनी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाएंगे, और इस तरह से हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और देश को विकास की राह पर आगे ले जा सकते हैं। पूनम जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मेरी तरफ से भी आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आप जानकारी ले रहे थे कौशल विकास रोजगार दिलाने में सहायक, और जानकारी दे रही थी पूरम शर्मा और इनसे बातचीत कर रही थी दीपा घोष। तो अब आगे बढ़ा जाए कार्यक्रम में, और क्या है पिटारे में, तो कार्यक्रम का अगला विषय है श्रमिक कल्याण की दिशा में नई श्रमिक संहिता की क्या भूमिका है। सरकार ने श्रम संबंधी अनेक पुराने कानूनों को सरल और व्यवस्थित बनाते हुए उन्हें चार प्रमुख श्रमिक संहिताओं में समाहित किया है। इनका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना, कार्यस्थल पर पारदर्शिता बढ़ाना और उद्योगों के लिए नियमों को सरल बनाना है।
1: यानी अब श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के लिए नियम अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित हो गए हैं। नई संहिताओं में वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और नई व्यवस्था का प्रयास है कि संगठित क्षेत्र के साथ असंगठित गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ धीरे धीरे पहुंचे। इससे श्रमिकों के भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।
1: श्रमिकों की गरिमा का संरक्षण नई श्रमिक संहिताओं की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे कार्यस्थल पर सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ सबसे जरूरी बात यह है कि इन प्रावधानों की जानकारी श्रमिकों को होनी चाहिए,
0: और निश्चित रूप से अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की जानकारी भी जरूरी है। जागरूक श्रमिक ही अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सकते हैं और बेहतर कार्य वातावरण के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। जागरूकता ही सशक्तिकरण का पहला कदम है।
1: बिल्कुल, इस विषय पर श्रमिकों को अधिक जागरूक होना है, और विशेष जानकारी के लिए अपने संस्थान, श्रम विभाग और सरकारी सूचना माध्यमों से सही जानकारी प्राप्त करनी है।
0: श्रमिक साथियों, इस विषय पर अपनी जानकारी बढ़ावें और आप खुद भी जागरूक बने और अपने साथियों को भी जागरूक रखें। इसी संदेश के साथ आज के लिए अपने दोस्त आशीष और
1: दीपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: इस समय आप सुन रहे थे श्रमिक बंधुओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सरकारी सेवा से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष रखने में रचनात्मक भूमिका के लिए कर्मचारी संगठनों की सराहना की। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्धविराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने लोहरदगा जिले के किस्को और पेशरार प्रखंड में आज ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आयोग के कामकाज की जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जनजाति के लोग उत्पीड़न या किसी भी समस्या की शिकायत आयोग से कर सकते हैं। पूर्व मंत्री और गिरिडीह से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा है कि महिलाओं की राजनीतिक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करवाना उनकी पार्टी का लक्ष्य है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी और हमारी दुनिया।

0: खेती बारी कार्यक्रम सुनवैया सब भाई बहन मन के सुनैना बहन बटले जमे जमा जोहार और मोनिका बहन राउर के हो जोहार
1: जोहार बहन जोहार और कार्यक्रम सुनवाइया सब भाई बहन मन के मोनिका भट्ट हो जोहार और कहू थी का हाल खबर है
0: ए बहन हाल खाली खबर पूछ थी कि हाल और चाल दुयो पूछ थी
1: पहले हाल बताओ। और चाल दुयो पूछ थी
0: हाल और चाल दुयो पूछ थी नहीं तो चाल चलन तो तनी ठीक ठाक कहब लेकिन हाल तो एखन का कहब
1: बनल है
0: हाल भी बढ़िया है काले पूछो काले के देखो एखन जब बरसात में पानी नहीं आवे धूप कर गरम कर दिन में गरम नहीं लागे ठंडा कर दिन में ठंडा नहीं लागे तो का मजा नहीं से तेरे खान हाल रोरे कहली नहीं का हाल चाल है तो चाल तो बता दिली हाल भी एकदम सुपर बरकरार है चलाते पानी तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक है एकदम है नहीं हाल चाल दुयो ठीक है और अपन बताओ अब रौर बटे का हाल चाल है से के हम तो अपन बताए दिली
1: हाँ मोर हाल चाल भी बढ़िया है और देखो यहो घड़ी इतना मुर्ग जोर से बरखा हुआ था कि मैं कहूँ तो हम रहो बटे हाल बढ़िया है और चालो भी बढ़िया है और से भेटा खातिर
0: और बढ़िया है
1: सुनवाइया भाई बहन मन के नवा नवा जानकारी देवे खातिर चल डाली ही
0: है नहीं भेज रहे उंजली का
1: हाँ जोर से
0: पानी बदरी, तो आवाज सुपर नहीं
1: हाँ बहुत जोर से
0: भिजक ना के छाता नहीं धेर रहे कि
1: छाता धेर रही कि मुर्गी जोर से पानी रहे तो
0: ऐसा है नहीं बहन कि आजकल छातों धर अब नहीं तो मुर्गी के तो बचा है लेकिन उधर न पधन अगर पानी आवे लागे ला नहीं हवा से तो भीतर नहीं मने भिजे जाए हुए ला नहीं
1: सही बात
0: पटा भिजे जाए लेकिन ज्यादा भिजक ना के जीव जहान के भी बचा के रखे के हमरे के है कि नहीं
1: कल की हमरे मन बेस से रह तो कोनो काम के बेस्तरी कर सके
0: कर सके ला हाँ
1: और देखो इन दिन तो गाँव घर में भी काम धाम तनिक बगरा बढ़ जाए बहन
0: एकदम एकदम और बरसात में नहीं हर चीज कर जतन करे बहुत जरूरी है कपड़ा लता खाए पिए जीव जहान से लेके हमरे कर जे अनाज मने है नहीं उकरो हमरे के रखे बहुत बढ़िया से जतन करके रखे कर दरकार है बहन जैसे कि देखो अनाज भंडारण में सावधानी खातिर हो
1: सही बात कहली बहन काल के देखो हमरे ते मेहनत करके अनाज के उत्पादन करी है ना फसल के और के अगर हमरे मन बेसी नहीं रखब तो हमरे के नुकसान होवी
0: सही बात है
1: तो के हम रे मन जब भंडारण कर रहे थे तो हमरे के बहुत सारा बात
0: जानने के
1: चाहिए जानना चाहिए और ध्यान छोट छोट बात के भी ध्यान देवे चाहिए है नहीं
0: तो हमरे के देखो ये अनाज भंडारण यानी अनाज के रखे के बेरा का कहब अनाज भंडारण करे के बेरा अनाज के नमी कीट चूहा और फफूंद से बचाए के लिए हमरे मन के खास सावधानी रखे के बहन और भंडारण से पहले अनाज के बढ़िया से धूप में सुखाए लेवे के चाहिए ताकि नमी का स्तर 10-12% से अधिक ना हो और अनाज के जमीन से कम 2 फीट ऊंच जगह में साफ सुखा और हवादार जगह में रखे है और हमरे मन की ई बात कर भी ध्यान रखे है बहुत ही जरूरी है ध्यान रखे कि भंडारण से पहले तैयारी करे बहुत जरूरी है जैसे सफाई अनाज भंडारण ले इस्तेमाल होवे वाला कमरा या डिब्बा मन के बढ़िया से साफ सफाई कर लेवे है और पुरना फसिल कर कचरा चाहे सड़ल अनाज के एकदम पूरी तरह से हटाए लेवे है नितब
1: पूरा साफ सुथरा करके
0: हाँ एकदम बढ़िया से सेहतर नमी और तापमान कर नियंत्रण जैसे धूप देखाए अनाज के 2-3 दिन कड़ा धूप में सुखाए चाहिए ताकि इकर नमी एकदम से खत्म हो जाए नितब का लेकिन नमी रहल से नहीं बहन अनाज में फफूंद लग जाए ला सेहतर हवा कर संचार भी बहुत जरूरी है नी और तो देखो हमरे मन के कीट और घुन से भी बचाव करे बहुत जरूरी है अनाज के कीड़ा जैसे घुन ना लागे इकर ले प्रति क्विंटल अनाज में नीम कर सुखल पत्ते चाहे सुखल और छनर लकड़ी कर राख लगभग 10-20%

0: मिलाएक चाहे, संगे संग रासायनिक उपचार भी करे बहुत जरूरी है बहन। नहीं तब
1: सही बात है बहन, काल के अगर हमरे इस सब बात के ध्यान देव तो हमरे कर फसल बढ़िया अनाज यानी कि बेस्तरी रख सकिल और कीट मन से बचा सकिल है नहीं।
0: और चूहा से भी सुरक्षा हमरे के करे बहुत जरूरी है। बोरा मन कर प्रबंधन बढ़िया से करे है, जैसे कि बोरा के केखनो में मतलब केखनो में भी सीधा जमीन में नखे रखे, और चूहा और जमीन के नमी से बचाए के लिए इके लकड़ी का तख्ता बनाए के रखे चाहिए, और नियमित देख रेख करते रहे है हमरे के, काल की भंडारित अनाज के बीच बीच में चेक करते रहल से वो बढ़िया रहे, और अगर कोई हिस्सा में कीड़ा या नमी कर पता चले तो उसे तुरंत अलग कर दे ताकि गोटा अनाज खराब ना हो। नहीं तब
1: रौरे सुपर बात कहली बहन, तो हमरे कर सब भाई बहन मन के सब बात के ध्यान देवे के, और चलो बातचीत तो करते रह लेकिन
0: कार्यक्रम
1: समय
0: से
1: कार्यक्रम के आगे करब तो बढ़िया रही है।
0: हाँ, नहीं तो हमरे का भाई बहन मैंने सोचवा नहीं ये दे मैंने भेटा ना अरे मेरे गोट शुरू।
1: तो चलो नागपुरी में लोकगीत सुनी लो, अग्नेश कुमार और संगे मैंने गावल गीत।

0: तो एखन हमरे नागपुरी में कृषि गीत सुनत रही जेके गा रहे इग्नेश कुमार और संगीमन बहिन। इ गीत से हमरे के बहुत बढ़िया बढ़िया संदेश भी भेटालक है ने। हमके उम्मीद लागेला आसरा करेला हमरे कर सब किसान भाई बहन जे भी गीत के सुन हुए माने भरपूर एकर उपयोग करबे इ गीत कर भीतरे छुपल जानकारी के
1: सही बात है
0: अपनाबे।
1: गीत कर माध्यम से यानी कि रोरे कहे को जथे कि गीत कर माध्यम से बढ़िया संदेश भेटा ले है ने।
0: तो चलो तो एक गीत गोविंद तो होते रहे काम कर संगे संगे
1: और देखो
0: जानकारी भी करे जब।
1: और ये दिन तो गांव घर में देखो हमरे कर किसान भाई बहन मन धान कर उत्पादन करे के लिए बहुत जोर शोर से लगल हथिन बिचड़ा मन करे के लिए हथिन है नी अपन खेत डाण के बना के लिए हथिन। तो चलो यही एगो एक से करल बातचीत के हमरे मन सुनब एगो किसान से धान के बारे में जो बता पाए मंगरू उराव और इनकर से बातचीत कर रहे हैं अरविंद कुमार मिश्र।
2: तो नौजवान किसान है आओ इनकर से हमरे वन गोठियाईला बतियाईला इनकर हाल समाचार कैसन है खेती बाड़ी कर काम इनकर कैसन चलक लाई है। सबसे पहले तो इनकर हमरे मन परिचय के जान ले थी ये कहाँ कर रहे वाला है इनकर नाम का होलक भाई जोहर
3: जोहर
2: का नाम होलक दादा रोर
3: मंगरू उरा
2: मंगरू भाई कहाँ कर रहे वाला है रोरे
3: खुखरा कर
2: खुखरा बेड़ो ब्लॉक में पड़ेला नहीं
3: बेड़ो ब्लॉक पड़ेला
2: जिला रांची
3: जिला रांची।
2: बहुत बहुत बहुत बढ़िया मंगरू भाई। अच्छा मंगरू भाई सबसे पहले तो रोर हम पढ़ाई लिखाई कर बारे में जाना ही खोजब कि पढ़ाई लिखाई रोरे कर रही कि नहीं
3: पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर रही छुआ मन तनी मनी पढ़ है।
2: अच्छा रोर छुआ मन पढ़ा था
3: छुआ मन पढ़े लाइक है
2: रोरे लेकिन नहीं पढ़ाई कर
3: हाँ हम पढ़ाई नहीं कर पा ली माए बाप कमजोर रहे खन नहीं पढ़ाई कर पा ली।
2: तो एखन का कर थी रोरे
3: एखन वह खेती बाड़ी गृहस्थी खेती कर थे वह सजा बुझा।
2: तो रोर अपन खेत नखेगा
3: अपन खेत नखे
2: एको जमीन नखे रोर अपन
3: को जमीन नखे।
2: अच्छा तो बड़ा मुश्किल वाला बात है लेकिन दूसर कर खेत में साझा लेके रोड़े करी ला।
3: हाँ दूसर कर खेत में साझा लेके करी ला दूसरे कर खेत में करी ला बढ़िया बेस बेकार जे भी करी ला सुंदर से कर के निकल जाए ला।
2: तो एखन का रोपे कर विचार है
3: एखन रोपे कर विचार है धान
2: अब एखन तो धान कर बेरा है नी।
3: हाँ
2: तो कितना रोड़े साझा ले ही कितना जमीन
3: साझा जमीन ले ही हम एक एकड़ हो गई।
2: हाँ तू कर में धान रोपे खे
3: हाँ धान रोपे खे
2: तो बीड़ा मन हो ही जाए का
3: बीड़ा नहीं भी है बीड़ा कल परसों कर
2: तो धान किन ली
3: धान किन चुकी है।
2: तो एक नंबर दो इन वास्ते की
3: हाँ एक दो नंबर वास्ते
2: दो नंबर वास्ते। तो का कहले कितना दिन में वो खेती तैयार होए लो जे धान ले ही रोरे हाइब्रिड के लिए होब नहीं
3: हाँ हाइब्रिड के लिए है
2: कितना दिन में तैयार हो जाए
3: अब उके तो
2: नहीं पूछ रहे कि कितना दिन में तैयार होए वाला धान है
3: आपके तो नहीं पूछ ले
2: एक अंदाज कितना दिन में तैयार हो जाए लो
3: वो हो जाए
2: 90 दिन आसपास।
3: हाँ 90 दिन में हो जाए।
2: तो कर खेत कर तैयारी मन कर ली
3: खेत तैयारी नहीं कर रही बॉयल कर वजह से
2: तो बैल तो देखा थे रोड बढ़िया तगड़ा कीन है
3: इकर में तनिक नवा नव सिखवा थे बैल के कीन है तो के सिखाए पड़े उके सिखा अथी करब तब फिर
2: तो कैसे तब कितना दिन में कहिया सिखाब रोरे क्योंकि अब तो खेती बाड़ी कर दी ना वो थे
3: नहीं तो नहीं सिखा पा तो फिर ट्रैक्टर से करब नी।
2: अच्छा ट्रैक्टर से जोतवा
3: हाँ ट्रैक्टर से जोतवा फिर है अथी एगो भाई है उकर बैल के लाना।
2: अच्छा
3: एगो भाई है तो उकर बैल के लाना पर उकरे से जोतवा पड़ुआ

0: तो बुना धान करब कि बीड़ा करे खाए?
1: बीड़ा भी करे खाए और बुना भी करे खाए,
0: दुयो
1: दुयो।
0: तो दोनों वास्ते कैसे खेत कर तैयारी होवेला, कैसे करी ले?
1: उनके एक ठोके तो बीड़ा करके ऊपर में अथी कर देवे ले, और एक ठोके तो बुना राखी ले, उके तो ये ताक नहीं देवत है शेखर वजह से, ऊपर में जोते नहीं पाई रही, तो के जोता ट्रैक्टर से और जोत के उके लगा।
0: अच्छा, जैसे बीड़ा करी ले तो बीड़ा कितना दिन में तैयार हो जाएगा?
1: बीड़ा उतना तो गोइन के तो
0: 20-22 रोज में।
1: हाँ, उतना दिन में हो जाए
0: रोपिंग, नियर हो जाए ना?
1: हाँ, 20-22 दिन में हो जाए रोपिंग।
0: अच्छा, धान रोपे के बेरा खेत में और क्या काम खाद मन के देवी ला?
1: उकर में खाद मन के देवी ला, DAP देवी ला, पोटास देवी ला, और उकर अलावा तो और कुछ नहीं दे पा रही ला।
0: जैविक खाद मन?
1: जैविक खाद तो नहीं दे पा रही ला।
0: तो बढ़िया खेती हो जाए ला उसन में?
1: हाँ, रोपा खेती मेहनत हो वेला, हल्का फुल्का तो हो ही जाएला।
0: अच्छा, धान कर अलावे और कोनो खेती करेला कि नहीं रोरे?
1: नहीं, धान कर अलावा और कोनो खेती नहीं करेला।
0: कैसे नहीं पारीला? अपन जमीन नखे से चलते?
1: हाँ, अपन जमीन नखे से चलते नहीं पारीला, और दूसरा कर जमीन में करे भी चाहेला तो कर में का कहे ना अलग से खेती भी करी ले, तो वहाँ से फिर कोई आधा हिस्सा निकलाए भी लेना, फिर उकर बंटवारा भी देवी ले।
0: तो बहुत कच कच है नहीं है। तो देखो, साल भर कर खेती है, खाली धान एक धाव लगा ली, क्योंकि गर्मी कर खेती तो ये आसपास नहीं हो गर्मा धान,
1: नहीं गर्मा
0: तो एक धाव रोड़े खेती करी ला, तो साल भर रोड़े का नियर चलाई ला अपन घर परिवार के?
1: साल भर चलाई ला, 6 महीना कर खा ले, यह सजा बुझा में हो जाए ला, और फिर भाठा भाठी चल जाएगा तो 2 पैसा होगा, तो उकरे से नहीं और फेर कर देवी।
0: तो घरे आसपास कोनो व्यवस्था काल नहीं करी ला केकरो और साझा लेके सब्जी उब्जी कर खेती करते ली? सब्जी कर तो बढ़िया डिमांड है, सब बढ़िया है।
1: नहीं तो इंदिरा कुइया कर तनिक अथी प्रॉब्लम होला, नहीं इंदिरा कुइया कर प्रॉब्लम होला यार, बर बरसात वाला खेती लगा थी तो उकर में बारिश कभी जोड़ दे देवेला, कभी कम देवेला, तो कर में नहीं सके पारी ला।
0: तो खेती बारी में मोटा मोटी रोके किसन बुझाते, खेती फायदा बुझाते कि तनी नुकसाने है, किसन बुझाते रोके?
1: खेती में तो खेती करल से तो फायदे है, खेती करब तो फायदे है, नहीं कर ले तो कहाँ से आवे, करब तो फायदे आवे ला।
0: लेकिन तनी जुगुत भिड़ाक होवेला नहीं?
1: हाँ, लेकिन जुगुत भिड़ाक पड़ेला।
0: अच्छा मंगरू भाई, रोरे बढ़िया खेती बारी कर काम करत ही, आसरा करी थी कि रोरे सब्जी बटे भी ध्यान देव, तो लय तब कहियो फिर और से भेंट हुई तो हमरे मन गोठिया बतिया, लय तब जोहार।
1: जोहार।
2: तो एखन हमरे एगो धान उत्पादक किसान भाई से करल बातचीत के सुनत रही है कि नहीं, कि धान कर खेती उकातर करने से के एक जे मंगरू भाई, हमरे कर किसान भाई रहे मंगरू राम, और इनका से बातचीत कर रहे हैं अरविंद कुमार मिश्रा। तो लागले लागल चलो एगो और हमरे मन जानकारी करेला कि अदरक और हल्दी कर वैज्ञानिक खेती कातर करल जा सके, इके बताबे विशेषज्ञ डॉक्टर सविता एक्का, और इनकर से बातचीत कर रहे हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
3: किसान साथियों नमस्कार, जैसा कि हम जानते हैं कि अदरक और हल्दी न केवल हमारी रसोई किसान है, बल्कि ये औषधीय गुणों से भी भरपूर ऐसी नकदी फसलें हैं जो कि कम लागत में किसानों को भरपूर मुनाफा दे सकती है। लेकिन सही समय, सही किस्म और वैज्ञानिक तकनीक के अभाव में अक्सर हमें वो पैदावार नहीं मिल पाती जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सविता एक्का, वरीय वैज्ञानिक पौधा रोग विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। आज हम इनसे जानेंगे कि अदरक और हल्दी की खेती के फायदे क्या हैं और इसे कैसे की जा सकती है, इसके बारे में। सविता जी, आपको नमस्कार है।
4: नमस्कार किसान बंधु।
3: आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि अदरक और हल्दी की खेती के लिए कैसी भूमि का चुनाव करेंगे?
4: जैसे कि हम सब जानते हैं कि अदरक और हल्दी की खेती सभी प्रकार के सामान्य भूमि जिसमें जल निकासी का उचित प्रबंधन है उपयुक्त रहता है, लेकिन उत्तम जल निकासी वाली दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है।
3: जी, हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करेंगे?
4: इन फसलों की खेती करने वाले किसान खेत की तैयारी गर्मी के दिनों में करते हैं, अर्थात अप्रैल से मई महीने में 3 से 4 जुताई करके करेंगे। अगर रोटावेटर से जुताई कर रहे हैं तो ऐसे ही मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, लेकिन अगर हल से कर रहे हैं तो जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरी होने देंगे और अंतिम जुताई के समय मिट्टी में 2 से 3 टन नीम की खली प्रति हेक्टेयर की दर से डालेंगे और साथ ही साथ में 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद का व्यवहार करेंगे।
3: जी, तो इन फसलों में कितने खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है एवं इसका प्रयोग कैसे करेंगे?
4: हम लोग जैसे जानते हैं कि दोनों मसाला फसलें जो हैं लंबी अवधि की फसलें हैं, अतः इन फसलों में खाद की आवश्यकता अधिक पड़ती है। जब अदरक की बात करेंगे तो अदरक में 150 से 200 किलोग्राम नेत्रजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस और 70 से 90 किलोग्राम पोटाश उर्वरक की मात्रा जो है ये अनुशंसित है। खेत की तैयारी के समय पोटाश और फास्फोरस की पूरी मात्रा डाल देनी है किसान भाइयों को और नेत्रजन की बराबर बराबर मात्रा 3 बार डालेंगे, पहली बुआई के 2 महीने के बाद, दूसरी 4 महीने के बाद और तीसरी 6 महीने के बाद। वहीं पर अगर हल्दी की फसल किसान भाई ले रहे हैं तो यहां पर 80 किलोग्राम नेत्रजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश की मात्रा अनुशंसित है और अदरक की तरह ही हल्दी में भी खेत की तैयारी के समय पोटाश और फास्फोरस पूरी मात्रा में डाल देंगे और नेत्रजन का प्रयोग जब करेंगे तो वो भी 3 बार करेंगे, पहला 30 दिन के बाद, दूसरा 60 दिन के बाद और तीसरा और अंतिम जो है 90 दिन के बाद डालेंगे और खाद देने के बाद क्यारियों को मिट्टी से अवश्य चढ़ा देंगे।
3: अदरक और हल्दी को लगाने का सही समय क्या है?
4: जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी फसल का भरपूर पैदावार प्राप्त करने के लिए सही समय में इनका बुआई करना अत्यंत आवश्यक होता है। जहां सिंचाई की सुविधा है वहां पर अदरक की बुआई 15 मई से 31 मई के बीच अवश्य कर दें और जहां सिंचाई नहीं है वहां इसकी बुआई बारिश होने के बाद करें। जहां तक हल्दी की बुआई की बात आती है, हल्दी की बुआई 15 मई से 7 जून के बीच कर दें। अगर जून में ये बुआई किया जाता है इन फसलों का तो 40% उपज में कमी आती है और लेट अगर जुलाई में किसान भाई बुआई करते हैं तो इन फसलों में 55% कमी आ जाती है उपज में।
3: जी, अदरक एवं हल्दी के उन्नत प्रभेद कौन कौन हैं एवं बुआई के लिए उनका जो प्रकंद है उसका चुनाव कैसे करेंगे किसान भाई?
4: जब अदरक लगाने वाले किसान भाई जो है वो 3-4 प्रभेद हैं, अच्छी प्रभेदें हैं ये, जैसे वर्धमान हुई, सुरभि हुई, सुरुचि हुई और सुप्रभा हुई, इन प्रभेदों का उपयोग कर सकते हैं अपनी खेती में। वहीं पर अगर हल्दी लगा रहे हैं तो राजेंद्र हल्दी हुआ, सोनिया हुआ, रोमा हुआ, ये सब किस्मों का चुनाव करेंगे। अच्छी पैदावार के लिए हम जानते हैं कि हमेशा स्वस्थ प्रकंद जो है बीज प्रकंद देना चाहिए जिनका वजन जो है 30 से 32 ग्राम होना चाहिए और जिसमें 3 से 4 कलियां हो, उन्हीं को बीज के रूप में उपयोग करेंगे किसान भाई।
3: जी, तो 1 हेक्टेयर भूमि में बुआई के लिए कितने प्रकंदों की आवश्यकता होती है एवं बुआई की विधि क्या है?
4: 1 हेक्टेयर में अदरक और हल्दी की खेती के लिए 25 क्विंटल बीज प्रकंद की आवश्यकता होती है। जब अदरक लगा रहे हैं किसान तो जो बीज प्रकंद हैं उनको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बाजार में ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से मिलता है ये फंजीसाइड, इसकी 3 ग्राम दवा जो है 1 लीटर पानी में घोल बना करके 1/2 घंटे तक प्रकंदों को डुबाकर उपचारित करेंगे। इसी प्रकार अगर हल्दी लगा रहे हैं तो प्रकंदों को बेवेस्टीन जिसका कि रासायनिक नाम कार्बेंडाजिम है उसकी 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके 1/2 घंटे तक डुबोकर उपचारित करेंगे और 1/2 घंटे के बाद में इन प्रकंदों को छायादार जगह में सुखाएंगे, उसके बाद ही लगाएंगे। अब लगाने के लिए हमेशा पंक्तियों में लगाएंगे, मतलब इधर उधर नहीं लगाएंगे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है किसान 30 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखेंगे और ये ध्यान देंगे कि जब भी प्रकंद लगा रहे हैं मिट्टी की गहराई जो है 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। 5 सेंटीमीटर की गहराई पर ही इसे बोएंगे और जल जमाव इन फसलों के लिए सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला कारक होता है, अतः बुआई के तुरंत बाद ये जरूर देख लेंगे अपने खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंधन है या नहीं और बुआई के तुरंत बाद पुआल जो धान का पुआल है या सूखी पत्तियों से झपनी कर देंगे, मल्चिंग कर देंगे। झपनी करने से दो फायदे होते हैं, एक तो मिट्टी में नमी बनी रहती है, दूसरा जो जीवाश्म की मात्रा जो है उसकी भरपूरी हो जाती है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है ना।
3: जी जी, फसलों की निकाई गुड़ाई कब करें एवं कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है इसमें?
4: अदरक की फसल में पहली निकौनी बुआई के 45 दिन के बाद हाथ से करने की जरूरत होती है और दूसरी और तीसरी निकौनी 60 दिन एवं 120 दिन पर खुरपी से करते हैं। उसी तरह से हल्दी की फसल में भी तीन

0: कोहनी की आवश्यकता होती है, पहली 30 दिन में, दूसरी 60 दिन में और तीसरी 90 दिन में। दोनों फसलों में 20 से 25 सिंचाई की आवश्यकता होती है। बारिश नहीं होने पर 15-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई अवश्य कर लेंगे किसान भाई।
1: ये तो आपने फसलों की निकाई गुड़ाई और सिंचाई के बारे में बता दी। अब ये बताइए कि अदरक और हल्दी में तो रोग लगते हैं, तो इसका प्रबंधन कैसे करें?
0: देखिए, हल्दी की फसल में ज्यादा रोग का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन अदरक जो है ये हमारा बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है और इसमें कंद सड़न रोग, इसके कंद में सड़न वाली एक बीमारी जो होती है, ये इसमें बहुत, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है किसान भाइयों को। और ये कंद सड़न रोग जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। तो अगर किसान भाइयों को इस तरह की समस्या अपने खेतों पे दिखती है, तो सबसे पहले तो क्रॉप रोटेशन जो कहते हैं हम लोग, जिस भी खेत पर अदरक लगाते थे पिछले साल, अगर कंद सड़न रोग आया होगा तो उस खेत में अदरक की खेती नहीं करेंगे। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा वो करेंगे कि जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय जो चूना, जो लाइम है, जो इसका एप्लीकेशन करेंगे, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टर की दर से लाइम का एप्लीकेशन करेंगे, चूना का, और खेत की तैयारी करने के समय में। और जब ऐसा किसान भाइयों के खेतों में इस तरह की समस्या आती है तो एक कवक नाशी है रिडोमिल MZ, इसको भी उपचार करेंगे। पहले तो ब्लाइटॉक्स 50 से करते ही हैं और साथ साथ में रिडोमिल MZ का भी उपचार करने के बाद में किसान भाई अपने खेतों पे अदरक लगाएंगे। और अगर कंद सड़न रोग जो है इसके लक्षण दिखाई देते हैं, इसके लक्षण भी जब ये जब कंद नीचे अच्छे से बैठने लगता है, मतलब मैच्योरिटी के पहले इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और लक्षण के रूप में हम देखते हैं कि पत्तियां पीली होने लग जा रही हैं और पूरा का पूरा पौधा जो है ये सड़ जा रहा है, तो इस तरह का लक्षण दिखने पर ब्लाइटॉक्स 50 जो दवाई से उपचारित किए थे उसी दवाई को कंद के पास, ऐसा नहीं कि पौधे पर छिड़काव करना है, जमीन जो मिट्टी जनित ये रोग है इसीलिए मिट्टी को उपचारित करना होगा उनको ब्लाइटॉक्स 50 नामक दवाई से। और दवाई की मात्रा वही रहेगी जो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में जो बताया गया। ब्लाइटॉक्स 50 के साथ साथ में अगर एक जीवाणुनाशक स्ट्रिप्टोसाइक्लिन जो है ये भी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो 10 लीटर पानी के लिए 1 ग्राम स्ट्रिप्टोसाइक्लिन और 30 ग्राम ब्लाइटॉक्स 50 लगा करके कंद को भिगाना है, पौधे को नहीं भिगाना है, हर पौधे के कंद को मतलब जड़ के हिस्से को भिगाते हुए ये इस रोग से उपचारित करेंगे, इस रोग से अपने फसलों को वो बचा सकेंगे। क्योंकि ये रोग एक कैंसर के जैसा, जिस पौधे पे लग गया उसको तो बचाना मुश्किल होता है, लेकिन जो दूसरे पौधे जो है उन पर इस रोग का प्रकोप नहीं आ पाता है इस तरह से उपचार करने पर।
1: प्रकंदों की खुदाई कब करना चाहिए?
0: ऐसे तो ये लंबे समय के प्रकंद हैं, इनकी खुदाई जो है दिसंबर जनवरी के महीने में इनका जो है हम देखते हैं कि इनकी बढ़ोतरी रुक जाती है और उस समय पत्तियां जो है इनकी पीली होने लग जाती है। जिन किसानों को फसल कच्ची अवस्था में बेचनी है वे दिसंबर के अंत में या जनवरी के शुरू में फसल की खुदाई कर सकते हैं, और जिन किसानों को बीज प्रकंद के लिए फसल रखना है वे मार्च के महीने तक इंतजार करेंगे और मार्च के महीने में ही इसकी खुदाई करेंगे।
2: तो बहन एखन हमारे मन जानकारी करत रही अदरक और हल्दी कर वैज्ञानिक खेती का तरीका जाला, और इके बतात रहे डॉक्टर सविता एक्का और इनकर से बता रहे कृषि जीवन पौराणिक, और एक रहे संगे हमारे कर खेती बाड़ी कर समय से भेलक और हमारे मन और करेला हमारी दुनिया कार्यक्रम में। तो सब सुनाया भाई बहन के फिर से स्वागत है नी?
3: हाँ एकदम, हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनवाइयाँ सब भाई बहन मनकर फिर से एक बार सुनाना बहन बटले जमे जमे जोहार है और एकदम स्वागत है बहन मनकर भाई मनकर है कि नहीं अपने घर में स्वागत है
2: नवा नवा प्रोग्राम कार्यक्रम में ना
3: एकदम
2: बहन तो बहन हमने कर अभी कर समय में तो सब भाई बहन मन कुछ ना कुछ काम करते ही रहते ला है नहीं, और सब मने अपन अपन काम में इतने व्यस्त हो जाते ला कि एक दूसरे से भेटा नहीं पा रही, लेकिन हमारे कर बीच में संचार ऐसा माध्यम है से कर से हमारे मन बातचीत कर सकेला, एक दूसरे के देख सकेला, एक दूसरे से सलाह भी बूझ सकेला है नहीं।
3: और तो हमने मतलब हाँ, बोलो बोलो का कह रहे
2: कखनो कखनो ऐसा हो जाए कि कोई कोई काम में हमरे मन इतना बहुत बगरा असमंजस हो जाए है नहीं
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: एकदम समझे बुझे नहीं पा रही तो चल कम से कम अपन संगी साथी से बातचीत करके अपन घर परिवार से बातचीत करके ओकर बारे में तो उस समस्या के दूर कर सकीला है नहीं।
3: सेहल तो कहते मन कर हारे हार है और मन कर जीते जीत सेहल जरूरी है सकारात्मक सोच रखे कर और हमरे के हाँ देखो सकारात्मक सोच कर वहाँ तो बढ़िया विचार हमरे मन कर दिमाग में ज़्यादा समय तक रही तो खुद ही दिन में मतलब कुछ ही दिन में हमरे कर जीवन में एगो सकारात्मक बदलाव आ जाए है कि नहीं और विचार कर शक्ति महान है इकर से ना खाली हमरे कर जीवन बदले ला बल्कि हियाँ तक की संसार कर नक्शा बदल जाए ला सेले सकारात्मक सोच कर अर्थ है कि हर परिस्थिति में आशावादी बनल रहे और हर चुनौती में अवसर खोजे ये मानसिक शांति के बढ़ाएगा तनाव के कम करेला और शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बेहतर बनाएला सेले जरूरी है कि हमारे सकारात्मक ही सोच है कि नहीं और इस सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण से हमरे कर पारिवारिक और सामाजिक संबंध बेहतर होवेला सकारात्मक सोच हमरे कर आत्मविश्वास के भी बढ़ाएला जेकर से हमरे मन अपन लक्ष्य के प्राप्त करे के लिए हाँ बगरा ऊर्जावान महसूस करेला और सकारात्मक सोच हमरे के जीवन में सफलता और खुशहाली लाने के लिए मार्गदर्शन भी करेला बहन
2: सही बात रोरे कहली बहन काले देखो अगर हमरे कुछो काम के कर थी तो करे से पहले हमरे के ओकर बारे में बढ़िया से सोच बुझ लेवे के है नी
3: हाँ,
2: और बढ़िया सोचब तो काम भी बढ़िया हो
3: एकदम तो चलो हमरे अब यह सकारात्मक सोच कर संगे और करेला एगो नागपुरी गीत के जी के गाए है दीना सिंह और संगी मन
4: माता पिता के वंदना करबू

0: তো এখন হামরে দীনা সিং আর সঙ্গে মানে গাওয়াল নাগপুরী লোকগীত শুনতে বহিন আর
1: মাধ্যম সে বড়িয়া সন্দেশ ভি ভেটালক বহিন হামরে কে ছোট ছোট ভাই বহিন মানে এই বাত কে ধ্যান দেওয়া কে চাই জেসে কি বিহান কে উঠতে চাই হামরো হো উঠতে তো আপন মা বাপ কো প্রণাম করে চাই চরণ ছুয়ে চাই আর ছোট ছোট ছো আমি কে স্কুল ভি ভেজাতে তো ই সংস্কার শিখা থাকে কি চল কম সে কম মা বাপ কর চরণ ছুয়াতে স্কুল পৌঁছাতে তো স্কুল কো প্রণাম করাতে তো এই সব বড়িয়া সংস্কার সংস্কার হেকে বুঝু আর আগে চলকে হামরে মানে বহুত বড়িয়া সংস্কার ভি সাবিত হয়ে গেলা হ্যাঁ
0: একদম তো বহিন এই তো হামরে কার গীত হয়ে গেলক আর একার ছুপল সন্দেশ রে বতা দিলি লেকিন চলো আব জানকারী করে কার বেড়া হ্যাঁ খোরঠা বার্তা লাগে জলবায়ু পরিবর্তন কাতির হইল সেকে আর বার্তাকার একে বতাত হ্যাঁ অজয় কুমার দাস হ্যাঁ
2: গোটে দুনিয়া মে জলবায়ু পরিবর্তন কে বিষয় জগ জাহির হ্যাঁ इहे बात से इनकार नाय करल जा सके है कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन वैश्विक समाज के सामने मौजूद सबले बड़ चुनौती है और एकर से निपटे खातिर वर्तमान समय के बड़ बेसी जरूरत बनल है। आंकड़ा देखल जाए तो 19वीं सदी के आखिर से लेके अखन तक धरती के औसत तापमान लगभग 1.62 डिग्री फारेनहाइट मतलब कि 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गेल है। एकर अलावे पिछला सदी से अखन तक समुद्र के जल स्तर में भी लगभग 8 इंच के बढ़ोतरी दर्ज करल गेल है। आंकड़ा से स्पष्ट हुए है कि यह समय जलवायु परिवर्तन की दिशा में गंभीर रूप से विचार करे के विषय है। जलवायु परिवर्तन में एक जगह विशेष से भी महसूस करल जा सके है और गोटे दुनिया में भी यदि वर्तमान संबंध में बात करल जा सके है तो एकर प्रभाव गोटे दुनिया में लगभग देखे मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभाव के वर्तमान में भी महसूस करल जा सके है। पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होवे से बर्फ पिघल रहे और महासागर के जल स्तर भी बढ़ल जा रहा है। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी भय रहल है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड एकरा सबले बेसी ग्रीन हाउस गैस मानल है और यह प्रकृति व मानुष दुयो कारण से उत्सर्जित हेवे है। वैज्ञानिक के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के सबले बेसी उत्सर्जन ऊर्जा हेतु जीवाश्म ईंधन के जलावे से हेवे है। आंकड़ा बताओ हत कि औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में 30% की बढ़ोतरी देखे मिले है। मिथेन गैस जैव पदार्थ के अपघटन मिथेन के एगो बड़ स्रोत है। मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड से बेसी प्रभाव ग्रीन हाउस गैस है मकिन वातावरण में एकरा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में कम है। फ्लोरोकार्बन एकर प्रयोग मुख्य रूप से फ्रिज और एसी आदि में करल जा है और ओजोन परत पर एकरा ढेर प्रतिकूल प्रभाव पड़े है। जमीन के उपयोग में परिवर्तन वाणिज्यिक या निजी प्रयोग हेतु जंगल झाड़ के कटा छटल जाना भी एगो जलवायु परिवर्तन के एगो बड़ा कारक है। गाछ वृक्ष केवल हमने फल और छाहुर ही ना देवत है बल्कि यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जैसन महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस के भी अवशोषित करो है। गाड़ी घोड़ा आदि संख्या में हो गया है। अपन जीवन शैली में परिवर्तन ने खतरनाक गैस के उत्सर्जन में ढेर ज्यादा योगदान दिया है। उच्च तापमान पावर प्लांट ऑटोमोबाइल गाछ ब्रिज के कटाई अगर ऐन स्रोत से हुए है वाला ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पृथ्वी के अपेक्षाकृत ढेर तेजी से गर्म रहल है। पिछले 150 बरस से वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है और वर्ष 2016 के सबले बेसी गर्म साल के रूप में रिकॉर्ड करल गेल है। गर्मी से संबंध रखे वाला मौत और बीमारी बढ़ल समुद्र के स्तर तूफान के तेज रफ्तार बढ़ोतरी और जलवायु परिवर्तन के कई गो खतरनाक परिणाम में बढ़ोतरी के खातिर बढ़ल तापमान के भी एक गो कारण मानल जा सके है। एक शोध में पावल गेल है कि यदि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के विषय के गंभीर रूप से ना लियल गेल है और एकरा कम करे के प्रयास ना करल जेते तो सदी के अंत तक पृथ्वी के सतह के औसत तापमान 3 डिग्री से 10 डिग्री फारेनहाइट तक बढ़ सके है। पिछले कुछ दशकों में बाढ़ सूखा बारिश आदि के अनियमितता ढेर बढ़ गेल है। इस सब जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। कुछ स्थान पर ढेर ज्यादा बारिश में हो रहा है, जबकि कुछ एक स्थान पर पानी की कमी से सूखे के संभावना बन गई है। समुद्र जल के स्तर में वृद्धि, वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के दौरान ग्लेशियर पिघल जाए है और समुद्र के जल स्तर भी ऊपर उठे है, जेकर प्रभाव से समुद्र के आसपास के द्वीप के डूबे के खतरा भी बढ़ जाए है। मालदीव जैसा छोट मोट द्वीप देश में लोग पहल से ही दूसर जगह के खोजे में है। जंगली जीव जंतु के नुकसान, तापमान में वृद्धि और वनस्पति के पैटर्न में बदलाव ने पशु पंखी प्रजाति के विलुप्त होवे खातिर मजबूर कर दिया गया है। विशेषज्ञ के अनुसार मानल जाए तो धरती के एक चौथाई प्रजाति साल 2050 तक विलुप्त हो सके है। साल 2008 में ध्रुवीय भालू के उन जानवरों के सूची में जोड़ल गेल हलत जे समुद्र के स्तर में वृद्धि के वजह से विलुप्त हो सके हलत। जानकार लोग अनुमान लगेला कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मलेरिया और डेंगू जैसन बीमारी आरो अधिक बढ़ता है, जकर वजह से नियंत्रण करल ढेरों मुश्किल भय जता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक से अभी तक हीट वेव्स के वजह से लगभग 150,000 से अधिक लोग के मौत भय गेल है। बीतियन के जरिए जलवायु परिवर्तन संकट का प्रबंधन करे आज ढेर ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण भय गेल है, जितना कि आरो अनेक उपाय है। वर्तमान मानवाधिकार संरक्षण उन्मुखी विश्व में जलवायु बीतियन यह संदर्भों में एक वेद मांग के रूप में उभर रहा है। हरित ऊर्जा और जहाँ तक भय सके है वहाँ अच्छे ऊर्जा कर प्रयोग करे के चाहिए, पेड़ पौधा लगावे के चाहिए।
1: तो बहन अखन हमरे मनखोठा में जानकारी करवात रहे जलवायु परिवर्तन और के बतात रहे अजय कुमार दास। सचमुच बहुत नगद जानकारी रहे बहन। और देखो आज का डेट में, आज का समय में हमरे कर बीच में जलवायु परिवर्तन हुआ थे तो हमरे कर महत्वपूर्ण हाथ है नहीं
0: एकदम जरूर सुपर बात कहली का लेके देखो। अगर हमरे प्राकृतिक से छेड़छाड़ करब नी है नी तो यही सब हमरे देखब, यह सब हमरे के देखे के लिए मिली।
1: सही बात है बहन। और देखो
0: जलवायु परिवर्तन होबे करिए समय नी, हमरे से कोनो नहीं भेटाए।
1: हमरे मन अपन स्वार्थी के चलते अंधाधुंध जंगल कर कटाई भी करत ही, इतना तक कि देखो जंगल कर कटाई तो करबे करत ही, ओकर संगे संगे हमरे कर जे वन्य प्राणी है पशु पक्षी मन है से हम के परेशानी करती है नी।
0: तो देखो परेशान करती बहन तो कहती अगर हमरे एकर से छेड़छाड़ करब तो हमरे कर संगे पशु पक्षी के संगे हमरे सब कोई के झेले के बहन से ले हमरे के कोनो तरी प्राकृतिक से छेड़छाड़ नखे करे, बढ़िया से फूल पौधा में लगाओ रोपो गाछ बीच में और एक दूसरे से एकदम सुपट प्यार मधुर वाला संबंध बनाए के रखो। कैसे हमरे कर भी जीव अंग मन बेस रही, हमरे पशु पक्षी मन भी ठीक रह, सब कुछ ठीक रहे। तो चलो एक संगे खोरथा में तो रे वार्ता सुना दिली है नी, अब चलो एक तो खोरथा में लोकगीत भी सुन लवी है कि नहीं।
1: सोहित कुमार और संगी मन।

0: बहिनी कन हमरे मन खोरठा में लोकगीत सुनत रही सोहित कुमार और संगी मने गावल गीत और दीदी बेरा बाचल है तो और एक नागपुरी गीत सुनाए देव।
1: अच्छा सुने के विचार है ने। चलो तब गुनगुनाए लेकिन भागे के नखे है ने।
0: हाँ,
1: सुनाते

0: बहुत नगद गीत सुनवाले बहन और एक रहे संगे हमरे कर हमारे दुनिया कार्यक्रम कर बेरा सिरा लग और
1: हाँ,
0: एक कार्यक्रम कर
1: प्रस्तुति रहे प्रभु शरण कर। तो चलो अगले दिन फिर से एह बेरा में एठन भेटा, तब तक ले जोहार।

इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी और हमारी दुनिया। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: हम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी आपूर्ति पर लागू आपातकालीन प्रतिबंध हटाए। हॉर्मुज जलडुमध्य से आपूर्ति सामान्य होने के बाद निर्णय। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए दो नई नीतियों का ड्राफ्ट किया जारी। हितधारकों और आम जनता से मांगे सुझाव। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पर राष्ट्रनायकों की उपेक्षा का लगाया आरोप। कांग्रेस ने किया पलटवार। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 9 जुलाई तक बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की जताई संभावना। और रांची में आयोजित जूनियर विश्व प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया सम्मानित। झारखंड की अंडर 18 बालिका रग्बी टीम का कल से हैदराबाद में मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। झारखंड सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति 2026 तथा झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 के ड्राफ्ट जारी कर हितधारकों को और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। दोनों ड्राफ्ट झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर सार्वजनिक किए गए हैं। सरकार का कहना है कि व्यापक सुझाव के आधार पर नीतियों को अंतिम रूप देकर राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन इसके बावजूद कई महान राष्ट्रनायकों के योगदान को जनता तक नहीं पहुंचाया गया। श्री वर्मा आज रांची में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने एकता और अखंडता की रक्षा के जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के विषय को लेकर

0: ईएफ को भरवाया गया। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी, स्थानीय विधायक आलोक कुमार चौरसिया और पांकी के विधायक शशिभूषण समेत अन्य मार्क वोटरों को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा है कि उनकी पार्टी के जिला और जमीनी स्तर के नेता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ के साथ तालमेल बिठाकर बूथ स्तर तक वोटरों की सक्रिय रूप से मदद करेंगे। श्री राजू आज रांची में पार्टी की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
1: क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। हम सब 20,000 BLS को अपॉइंट किया और सभी को भी बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग दिया। हम ब्लॉक संवाद ऑर्गेनाइज करके सभी ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी मेंबर्स और BLS को बुला के ट्रेनिंग दिया। मेरा विश्वास ये है कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरह SIR प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे।
0: केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सरकारी सेवा से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष रखने में रचनात्मक भूमिका के लिए कर्मचारी संगठनों की सराहना की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने लोहरदगा जिले के किस्को और पेशरार प्रखंड में आज ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आयोग के कामकाज की जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जनजाति के लोग उत्पीड़न या किसी भी समस्या की शिकायत आयोग में कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आयोग जनजाति समुदाय की रक्षा कवच है और समाज के संरक्षण के लिए पूरे देश में काम करता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है, और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग के बड़कट्ठा अंचल स्थित मौजा बेरो कला की 117.68 एकड़ विवादित जमीन मामले में 118 रैयतों को अंतरिम राहत देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने बरही के अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से रैयतों की जमाबंदी रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और अन्य पक्षों से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। झारखंड में भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों में पिछले 3 वर्षों के दौरान कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में राज्य में भ्रष्टाचार के 67 मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2023 में ये संख्या घटकर 55 रह गई, जबकि वर्ष 2024 में मामूली बढ़ोतरी के साथ 58 मामले दर्ज किए गए। हालांकि 2022 की तुलना में राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में कुल मिलाकर कमी दर्ज की गई है। रांची के धुरबा में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक रथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू होने वाला है। रथ यात्रा और मेले के सुचारू संचालन के लिए आज मंदिर न्यास समिति, पुलिस प्रशासन और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधिमंडल के बीच एक बैठक हुई। बैठक के बाद अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक ने बताया कि रथ यात्रा और मेले की सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
3: मुख्य तौर पे रथ यात्रा का पूरा रूट है उसको सैनिटाइज करना है, प्रॉपर बैरिकेडिंग करवाना है ताकि रथ यात्रा के बीच में कोई भी किसी तरह का हादसा नहीं हो। उसके साथ साथ वॉलंटियर्स हैं उनका ऑप्टिमल यूज हो, पूरी यात्रा को

0: पद बनाने के लिए, तो वही सब व्यवस्थाओं पे आज चर्चा हुआ है और उसका अब एग्जीक्यूशन हम लोग आज से ही शुरू कर देंगे।
1: मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 9 जुलाई तक बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित रांची जिला जूनियर वुशु प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों और क्लबों के लगभग 100 जूनियर खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। झारखंड की अंडर 18 बालिका रग्बी टीम कल और परसों हैदराबाद के गच्ची बावली स्टेडियम में आयोजित जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंच गई है। राज्यस्तरीय प्रशिक्षण शिविर में अभ्यास के बाद टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी आपूर्ति पर लागू आपातकालीन प्रतिबंध हटाए। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से आपूर्ति सामान्य होने के बाद निर्णय। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2 नई नीतियों का ड्राफ्ट किया जारी। हितधारकों और आम जनता से मांगे सुझाव। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पर राष्ट्रनायकों की उपेक्षा का लगाया आरोप। कांग्रेस ने किया पलटवार। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 9 जुलाई तक बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की जताई संभावना। और रांची में आयोजित जूनियर वुशु प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया सम्मानित। झारखंड की अंडर 18 बालिका रग्बी टीम का कल से हैदराबाद में मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: दादी कौन सा प्लांट है?
3: टैंजरीन। बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
1: पलामू जिले के सदर प्रखंड के पोखरा और जोड़ ओवर ब्रिज बनाने और हाईवे निर्माण पूरा होने तक जोरकट में टोल वसूली पर रोक लगाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन का नेतृत्व पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने किया। यहां उन्होंने कहा कि यह स्थान ब्लैक स्पॉट बन गया है। इसी महीने 3 लोगों की दुर्घटना में मौत हुई है।
2: सैकड़ों ऐसा कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, इस मांग को लेकर कि यहाँ पर पांकी से, चतरा से, हजारीबाग से प्रतिदिन 11 गाड़ियां इस सड़क से गुजरती, इस चौक से गुजरती, और जितने लोगों का इस 8-10 महीने में एक्सीडेंट में डेथ हुआ वहां से ज्यादा लोगों को जाने की, तो आने वाले समय में जो वो जान नहीं देना पड़े अनावश्यक रूप से यहाँ पर फ्लाईओवर बनाए और फ्लाईओवर बना करके वो अपना सो अपने मान को ये नचाई पर पार करे, इस क्रॉसिंग से नहीं जाए।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावा की चोरी में संलग्न सभी तत्वों को जेल भेजा जाएगा। वह डाल्टनगंज में परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
3: सरकार किसी के बिना योग जी के राज में किसी को चोरी करने की छूट नहीं है। चोरी किया आज जेल के अंदर में जो है और जेल में कड़ी से कड़ी सजा आपको मिलेगी, और जो दोषी होगा वो जेल जाएगा।
1: 25 जून को आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने पर देश भर में भाजपा ने संविधान हत्या दिवस मनाया। मेदिनीनगर के नगर भवन में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व सांसद इंदर सिंह नामधारी, पलामू के सांसद वीरीराम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि
4: संविधान के हत्यारे जो देश पर न्याय अत्याचार करने का काम किया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से लेकर अन्य लोगों का अधिकार को सीमित करने का काम किया गया, और संविधान में भी न्यायपालिका जो अधिकार था समीक्षा करने का बीच बीच में उससे भी प्रतिबंध लगाने का काम किया गया कि मिशा जिसे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी प्रमुख आदमी समाज काम कर रहा है, कोई अपराध नहीं किया है। संविधान की हत्या किसने करने का काम किया? जिसने कोई जुर्म नहीं किया, जिसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उसको जेल के अंदर जाने का काम करना पड़ा।
1: झारखंड के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा पलामू पहुंची। यहां उन्होंने समीक्षा बैठक की, विधि व्यवस्था की जानकारी ली। बैठक में पलामू, गढ़वा, लातेहार के एसपी भी उपस्थित थे। बाद में तदाशा मिश्रा ने कहा कि
5: देख रहे हैं कि कैसा यहां परिस्थिति है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या स्थिति ज्ञान है, ये सब रिव्यू हो रही है। ये रूटीन मैटर है, कोई विशेष हम लोग जिला वार रिव्यू कर रहे हैं। गढ़वा है, पलामू है, नंदा है, लातेहार, एक एक जिला का सब चीज देखेंगे। काम अच्छी हो रही है, लोग नए हैं और यंग है, हार्ड वर्किंग है। जमीन का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग को लिखना पड़ेगा। इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, मेनली डिसीजन जो है उन लोगों के स्तर से लिया जाता है।
1: पलामू के हुसैनाबाद शहर के जपरा रेलवे स्टेशन रोड स्थित मां दुर्गा मंदिर में चोरी हो गई। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
0: अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।
6: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं संताली समाचार पत्रिका का कार्यक्रम।

0: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱦᱟᱯᱛᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱤᱧ ᱟᱸᱡᱮᱞᱟ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱟᱢᱮᱞᱟᱭᱛᱮ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫ ᱫᱟ ᱢᱟᱱᱥᱩᱱ ᱥᱚᱛᱨᱚ 20 ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ 13 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫᱤᱭᱚ ᱠᱟᱨᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠᱤᱨᱮᱱ ᱨᱤᱡᱤᱡᱩ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱨᱚᱣᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫ ᱫᱟ ᱢᱟᱱᱥᱩᱱ ᱥᱚᱛᱨᱚ 20 ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ 13 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵ ᱦᱮᱡ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱛᱨᱚ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱥ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱨᱱᱚᱭ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ 25 ᱢᱟᱦᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱛᱨᱚ ᱨᱮ 19 ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱜᱩᱡᱽᱨᱟᱴ ᱥᱟᱱᱚᱫ ᱨᱮ ᱦᱳᱞᱟ ᱥᱮᱢᱤ ᱠᱚᱱᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱸᱜᱚᱡ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱝᱭᱚᱱᱛᱨ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽᱡᱤᱠ ᱥᱮᱢᱤ ᱠᱚᱱᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱭᱚᱱᱛᱨ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱞᱟᱦᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱤᱧᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱟᱨ ᱚᱯᱟᱨᱮᱴᱚᱨ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱟᱶᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱟᱜ ᱡᱟᱢᱥᱮᱫᱽᱯᱩᱨ ᱨᱮᱱ ᱛᱟᱱᱤᱥᱟ ᱜᱚᱛᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱤᱴᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ
1: हमें प्लेसमेंट मिला और यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए हमको मलेशिया भेजा गया एक महीना के लिए जोहार सर मेरा नाम पूनम कुमारी है मैं झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी है और एक मेरी बहन जिसकी शादी हो चुकी है मैंने अपनी 12th की पढ़ाई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विरनी से की है उसके बाद मैंने ITI किया ITI करने के बाद प्लेसमेंट हुआ CG सेमी में यहाँ आने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके
2: मजाक उड़ाते हो कि ITI क्या होता है
1: पहले तो लगता था कि हाँ गांव की लड़की है बाहर जाके पढ़ रही है रांची में जब मैं थी तो कि बाहर जाके पढ़ रही है कुछ नहीं कर पाएगी ऐसे ही जा रही है बस टाइम पास करने के लिए

0: लेकिन नहीं, अब उन्हें लगता है कि हाँ एक्चुअल में कुछ कर रही है।
1: आप लोगों का एक वीडियो तो बड़ा पॉपुलर हुआ था।
0: ऐसा है।
2: जोहार सर, मेरा नाम प्रियंका धनवार है और मैं झारखंड के वेस्ट सिंहभूम जिले की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे भैया हैं और मैंने भी अपनी पढ़ाई आईटी तक करी हुई है। उसके बाद मैं यहाँ सीधी सही में आई और हमें भी मतलब मुझे भी जाने का मौका मिला मलेशिया ट्रेनिंग के लिए है। उसके बाद फिर यहाँ पे अभी मैं ऑपरेटर के रूप में काम कर रही हूँ।
3: नई दिल्ली रे 8 और 9 जुलाई हिलो झारखंड सरकार कुरुमुटु ते नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन हुआ। सिरा मंत्री हेमंत सोरेन नुआ रे पोनोता डिजिटल रोड मैप सदराय नुआ कमी अरी ओक्ते AI रेहो चर्चा हुआ। 12 माह कंसल्टेशन ना पहिल दिन देश विदेश रेन कोम से कोम 1000 मरंग आईटी कंपनी रेन प्रतिनिधि और पुनः सरकार रेन मरंग अधिकारी बारिया एटा एटा सत्र रेको सेलेदोआ। नुआ आयोजन ते झारखंड रे प्रौद्योगिकी विकास नवा आयाम एमो लगी को कुरुमुटुया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी दो तेहेन जामताड़ा रेना सुगी पहाड़ी आतो रे नायके बाबा और आतो होड़ को साव मंझी थान रे जुमित बोंगा बाखेड़ के दाय। नुआ आतो रे एतवार पीछे जुमित प्रार्थना को एतोहो अकादा उना नेता प्रतिपक्ष दो सनाम संथाल आतो रेहो अगू लगी मेन के दाय। मानोतान मरांडी दो जनजातीय परंपरा और अरी चली बंचा रेहो जोर ए मिनाय। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी दो नई दिल्ली रे भाजपा रे राष्ट्रीय सूत्रेत नितिन नवीन साव नपा मेनाय। नुआ सम्बन्ध रे मिटेन फोटो साझा करते मानोतान मरांडी दो लई केदे जे नपाम ओक्ते राष्ट्रीय सूत्रेत सांकेटे आर एटा कथारे चर्चा हुए ना। बड़ायापे जे नुआ खोनलाहा आदित्य प्रसाद साहू हो राष्ट्रीय सूत्रेत सां नपाम लेना है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर सुरक्षा काफिला प्रकरण रे बाबूलाल मरांडी दो हाड़ा रोड के दाय। मानोतान मरांडी दो मेन किदा जे राधा कृष्ण किशोर दो यथात बुझो लगतिया। मीटेन सोशल मीडिया पोस्ट रे नेता प्रतिपक्ष दो दोसा लगाव किदा जे झारखंड रे सिस्टम पूरे लिकाते चबाएना। सरकार आर महकमा नीत अधिकारी कोते बांग चला करना। बिचकोम सत्ता गलियारा रे दुड़ू अकान किचु होड़ सर्वशक्तिमान को बनावा करना। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू दो पलामू रे पार्टी संगठनात्मक दरबार हुए ना। निये ओक्ते SIR सांते भेगार भेगार समसामिक विषय रे चर्चा हुए ना। प्रदेश प्रभारी दो पार्टी संगठन बूथ लेकाते केटे लगी टिप्स एमिनाय। SIR प्रपत्र पेरेज रे मतदाता तको लगतियन गोणो आर होर उदुई बनाव रेहो हुकुम एमिनाय। नुआ दरबार रे पार्टी रेन आयमा नेता ताको को तहें करना। राष्ट्रीय जनता दल तेहें आया 30वां स्थापना महा मनावेदाय। पोनोत रेन मंत्री और पार्टी नेता संजय प्रसाद यादव दो राजद रेन सनाम नेता और कमिय ताको स्थापना महा मेनते शुभकामना एमा कुआ है। उन्हीं दो मेन किदाय जे सामाजिक न्याय केटे बिनाव रे लालू प्रसाद यादव वा कमी आर लड़ाई सनाम कमिया को लगी होर उदु ई तहे कना। रांची रे आशु पार्टी संबंध अखिल झारखंड महिला संघ होला पोनोत लेकाते अधिवेशन हुए ना। निये ओक्ते महिला संघ रेन पोनोत भूर रेन अधिकारी ताको आर नेता को जारवा लेना। अधिवेशन रे रोड ओक्ते आशु पार्टी रेन सूत्रेत सुदेश कुमार साहू दो महतो दो पार्टी संगठन केटे रे जोर ए मिनाय। उन्हीं दो आयो होड़ को नेतृत्व क्षमता और सशक्तिकरण रेहो जोर ए मिनाय। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कुरुमुटु ते चरणबद्ध लेकाते एटा एटा ठोठा रे जनजातीय संवाद हुयुक कना। तेहें लोहरदगा रे नवा संवाद कमी अरी हुए ना। होला गुमला रेना चैनपुर प्रखंड कार्यालय रे जनजातीय संवाद ओक्ते आयोग रेन सदस्य आशा लकड़ा दो आयदरी तको आदिवासी सांवता खुन जुड़ो एटके टोड़े चबाय लगी लगतियन हुकुम एमा को है। आशा लकड़ा दो ओंडे रेन होड़ परंपरा लेकाते को अतंग दराम के दया। जनजातीय और क्षेत्रीय पर्सी उत्नव और बचाव मेंते रांची विश्वविद्यालय दीक्षांत मंडप रे होला राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव हुए ना नुआ रे पर्सी अकिलान शिक्षाविद और शोधकर्ता तको आरएल पर्सी बचाव रे विचार हुए ना कमी अरी रे मारे मंत्री बंधु तिर्की और रांची विश्वविद्यालय रेन कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा हो सेलेक्ट लेना है। पनोत गोम के संतोष कुमार गंगवार दो होला रांची या मेन रोड रे मिना संकट मोचन हनुमान मंदिर या तेसार मंजिल रे नवा बिना वाकान श्री राम वाटिका सभागार उड़ाव के दाय पनोत गोम के दो निये उक्ते सावता सेवा कमी सरहाव के दाय और मरांग मंत्री विकास और विरासत मंत्र रे चर्चा के दाय नुआ ताक रे विधायक सीपी सिंह और रांची नगर निगम रेन महापौर रोशनी खलको मारे विधायक गुलशन लाल अजमानी सावते आयमा मानो थोड़को तहें कना नुआ ताक रे पनोत गोम के दो पूजो के दाय और पनोत सुलुक निरय तहें लगी आस के दाय पनोत रेन प्रतिभा ताको मान मोह तेमा को लगी हुई एन सातवां झारखंड एक्सीलेंस अवार्ड 2 जुलाई हिलो रांची विश्वविद्यालय आर्यभट्ट सभागार रे हुए ना पनोत गोम के संतोष कुमार गंगवार दो भेगार भेगार क्षेत्र रे अडी मोज योगदान एमो 17 विशिष्ट हस्ती ताको मान मोहत के कुआ को सेमलेद रे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विधायक सीपी सिंह सावते आयमा मानो थोड़को तहें कना पनोत रे एसआईआर कमी चला कना बीएलओ होते ते वोटर कुआ इन्यूमरेशन परपत्र एमा को कना को ओना मतदाता तको को पेरे एदा निये हफ्ता पनोत गोम के संतोष कुमार गंगवार आर सिरा मंत्री हेमंत सोरेन हो नुआ प्रपत्र पेरे के दाय आर सनाम होड एसआईआर कमी रे भगी हत्थाव लगी उस्कूर के दाय पनोत रे मानसून रफ्तार साफ के दाय चलावे निंद खोन गे रांची सावते आयमा ठोठा रे थीर थीर काते दा हिजुक कना नोते मौसम विज्ञान केंद्र पहिल अनुमान लेकाते तेहन खोन 8 जुलाई हबी रांची लोहरदगा गुमला पश्चिमी सिंहभूम आर सिमडेगा सावते आयमा ठोठा रे अडी कजाक दा हे दाड़ेया 24 घंटा उक्ते पश्चिमी सिंहभूम मा हाट गमरिया रे सनाम कोन ढेर 32 मिलीमीटर दा हे लेना केंद्र दो लय किदा जे 24 घंटा उक्ते अधिकतम तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस हबी न्यूर दाड़ेया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की दो शुक्रवार हिलो विभागीय समीक्षा दरबार रे कृषि प्रक्षेत्र विकास रे अधिकारी को साव मंथन के दाय निये उक्ते उन्नी दो उर्वरक का काला बाजारी रे प्रभावी तरीका ते रोक लगाव लगी हुकुम एम नए दरबार उक्ते पनोत रे रोहड़ इते कार्य योजना रेह विचार हुए ना कृषि मंत्री दो मेन किदा जे नुआ को निपटाव लगी पनोत सरकार सपड़ाव ठीक अकाना है नेहा तिर्की दोस पंचायत रे मिलेट मिशन तेज लगी हो मेन अकादा है। सिरा मंत्री हेमंत सोरेन मंझी अरी रे 2 जुलाई हिलो राज्य मंत्री परिषद बैसी हुई ना उना रे आयमा महत्वपूर्ण निर्णय हुए ना पनोत रे मनरेगा लेकाते रोजगार सृजन रे आदिम जनजाति समूह मिटेन वित्तीय शर्मा रे 100 दिन ना रोजगार सावते 50 दिन हबी रोजगार एमो संबंधी प्रस्ताव को आंगोच के दा पनोत सरकार द विकसित भारत जी राम जी योजना हो सैद्धांतिक है के दाय रिम्स दो बिनाव लगी लट्टू टका प्रशासनिक स्वीकृति जाम के दाय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी दो 3 जुलाई हिलो रिम्स रांची रे क्षेत्र नेत्र संस्था उठव के दाय निये उक्ते उन्नी दो खबरियों को साव गपाल मराव रे मेन के दाय जे नुआ संस्थान अत्याधुनिक सेवा ते परे अकाना उनाते मरीज तक गुनाना चिकित्सा सेवा को नामा नुआ ताक रे विधायक सुरेश कुमार बैठा सावते आयमा मानो थोड़को तहें कना पनोत गोम के संतोष कुमार गंगवार दो लोक भवन रे नवा बिना पुण्य सूचना आयुक्त अनुज कुमार सिन्हा तनुज खत्री अमूल्य नीरज खलको आर शिवभजन शिव पूजन पाठक ताको दो 1 जुलाई हिलो पद और गोपनीयता शपथ को हथाव के दा निये उक्ते सिरा मंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सावते आयमा मानो थोड़को तहें कना पनत गोम के आर सिरा मंत्री तो बहाते सराव के कुआए विश्व प्रसिद्ध श्रावणी पता सपड़ा मेंते होला देवघर परिसदन रे अंतरराज्य समन्वय समिति दरबार हुए ना दरबार रे झारखंड और बिहार तुरुई ठोठा रेन प्रशासनिक और पुलिस आयदरी को तहे करना निये उक्ते श्रद्धालु को सुरक्षा ट्रैफिक प्रबंधन और मौज सुविधा मेंते रणनीति को बनाओ केदा आखिरी रे मुरुख खबर सिरा मंत्री दिल्ली रे 8 और 9 जुलाई हिलो सेमलेद ओक्ते पोनो था डिजिटल रोड मैप्स दोसो दोराए आईटी निवेश रे फोकस बाबूलाल मरांडी दो जामताड़ा रे आतो होड़ को सा मंजी थान रे जुमित बोंगा बाखेड़ परंपरा बंचाव रे जोर गुमला रे राष्ट्रीय एसटी आयोग यते जनजातीय रोड रांची रे जनजातीय परसी बंचाव मेंते कॉन्क्लेव आर मानसून जोर साब के दाए रांची सावते आयमा ठोठा रे थिर थिर ते दा आयमा जायगा रे अडी कजाक दा यते चेतावनी
4: इस समय आप सुन रहे थे संताली समाचार पत्रिका कार्यक्रम आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय फाइनल मैच का सीधा प्रसारण। जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: एक बार फिर से पहुंच रहे हैं इंग्लैंड के लंदन में और वहां लॉर्ड्स का मैदान इंतजार कर रहा है। एशेज की पुरानी राइवलरी कह लीजिए जो T20 क्रिकेट में आ गई है, या फिर दिग्गज टीमें जिनको बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, एक होम टीम है इंग्लैंड और दूसरी ऑस्ट्रेलिया। और आज विमेंस वर्ल्ड T20 का फाइनल है लॉर्ड्स में। मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद है।
1: ओ मनीष, आई मस्ट टेल यू द पैल्पिटेशन इज रियली हाई बिकॉज़ ऑब्वियसली देयर इज लिटिल हिट एंड मिस। We are missing India at the moment, but right now we will only talk about Australia and England. Australia, pure dominance, super. It's lots, a lot more to happen, but we have much more to talk about in the studio because we have our super, super experts. First of all, we have Chetan Sharma, former Indian fast bowler, and needless to say, 1987's World Cup hat-trick hero, the most loved. Chetan, welcome to the studio.
2: Thank you.
1: Also, we have Vaishali Mathur, India, first-class cricketer. Vaishali, you also have a lot to talk, right?
0: बहुत बहुत स्वागत है चेतन भाई, आप ही से शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप का एक और फाइनल लॉर्ड्स की बात करते हैं।
3: हर गली गजल, ये लखनऊ है जनाब।
4: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10-90 में गुजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।

सोनाली राठौर के युगल स्वरों में अभी आपने सुनी ये प्यारी सी गजल। और श्रोताओं, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवा देते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गजल।

0: जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे प्रतिज्ञा सेन और सुमित भौमिक की पियानो और वायलिन पर बजाई फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं सिलसिला और मुकद्दर का सिकंदर।

0: आज के हवा महल में प्रस्तुत है हरि मेहरा की लिखी नाटिका बहादुर की शादी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।
1: बहादुर, अबे ओ बहादुर के बच्चे।
2: जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब।
1: अबे गुड मॉर्निंग के लगते अलार्म बंद कर, ये आज अलार्म क्यों लगाया है? आज इतवार है और तुझे मालूम है छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठता।
2: वो तो मालूम है साहब, पर आज शाम को भी तो जल्दी तैयार होना है।
1: वो किस खुशी में?
2: साहब खुशी की तो बात है ही, हमने आपको कितने दिन पहले से बताया था साहब, आज लड़की वाले आपसे मिलने आएंगे।
1: लड़की वाले? किसकी लड़की? कैसी लड़की? मुझे किसी लड़की वड़की से नहीं मिलना।
2: लड़की से नहीं साहब, लड़की के बाप से।
1: किसका बाप? लगता है रात ज्यादा चढ़ा ली जो नाप शनाप बके चला जा रहा है। चल दवा हो जाए यहाँ से और सोने दे मुझे।
2: क्या है साहब, आप भी हमारी बेइज्जती खराब करना चाहते हैं साहब? हमारी इज्जत का सवाल है साहब, वो लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे और अभी हमें आपको नाश्ता देकर हजामत बनवाने जाना है साहब, स्नान भी करना है और तैयार भी होना है।
1: वही बक बक बक बक बक बक कर रहे हो, किस जंगली से पाला पड़ा है। कहा ना मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ अपनी हजामत कराओ और मुझे सोने दो।
2: पर साहब आपको भी तो टाइम पर रेडी होना है साहब, और वो लोग आपको मिलने आते हैं साहब।
1: कौन लोग? मुझे कोई नहीं मिलने मिलने आ रहा।
2: साहब जी आप सब कुछ भूल गया साहब, वो लोग हमारी शादी के वास्ते आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे साहब? हमारा और कौन है साहब इधर? आप ही तो है हमारा माई बाप साहब, भाई बंधु आप ही तो है, और 10 बरस से आपके साथ हैं हम साहब।
1: ठीक है ठीक है, देखो अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, बहुत वक्त है। हाँ। मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगा। हाँ? तुम दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ गेट आउट।
2: साहब जी।
1: हा? तुम अभी तक यही हो
2: साहब?
1: क्या है
2: साहब, वो रीटा मैम साहब आज भी आएंगी।
1: हाँ, पर ये बेहुदा सवाल किस लिए?
2: नहीं साहब, आप उनको फोन कर दो साहब, आज वो थोड़ा देर से आएंगी।
1: क्यों?
2: वो साहब इसलिए कि हमने लड़की वालों को बोला है कि हमारे साहब का अभी शादी नहीं बना।
1: ठीक ही तो बोला है।
2: वो यही तो गड़बड़ है साहब, अगर वो लोग रीटा मैम साहब को यहाँ देखेंगे तो क्या समझेंगे? तो
1: उनके समझने ना समझने से क्या होता है?
2: सब कुछ होता है साहब, सब कुछ होता है। हम आपको कितनी बार बोला है साहब कि तुम लोग अपनी शादी बना लो, अब हमारी मुसीबत हो जाएगी साहब।
1: हमारी शादी हो या ना हो उससे तुम्हारी कैसे मुसीबत हो जाएगी?
2: वो लोग ठहरे सीधे साधे पहाड़ी आदमी साहब, वो बड़े लोगों की बात नहीं समझते। हमारे मुल्क में शादी के बिना लड़की किसी के घर में नहीं जाती।

0: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बहादुर ने फोन किया, शाबाश देर से उठेगा, शुमिम साहब तुम भी देर से आना। मैंने पूछा क्या बात है तो बोला शाब की तबीयत रात को जरा ठीक नहीं थी इसलिए देर से आंख लगी है। कहाँ है बहादुर, मुझे तो डरा दिया उसने।
1: क्या बजा? 9:30। अरे वो लोग 10 बजे आएंगे।
0: कौन लोग? तुम्हें मालूम था डार्लिंग, आज हमारा सारा दिन बाहर रहने का प्रोग्राम है, फिर तुमने 10 बजे का अपॉइंटमेंट किसे दे दिया?
1: भाई मैंने नहीं, बहादुर ने।
0: बहादुर ने? ये बहादुर आज को मिस्टीरियस फिगर बन रहा है। देखो अनिल डार्लिंग, अब ज्यादा परेशान ना करो, हमारा संडे सब स्पॉइल हो जाएगा। तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ और 10 बजे से पहले ही रफू चक्कर।
1: नहीं नहीं, अरे अरे भाई सुनो तो, ऐसा नहीं हो सकता, किसी की इज्जत का सवाल है, तुम नहीं जानती।
0: मैं सब जानती हूँ, यू गेट रेडी एंड नो मोर एक्सक्यूजेस, ओके? खूब तमाशा है, देखा मैं कब से कह रही हूँ लेट्स गेट मैरिड। लेकिन जनाब को तो पहले प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा फ्लैट चाहिए, स्कूटी के बजाय कार चाहिए, और मेरे ख्याल से होने वाले बच्चे के लिए किसी स्कूल में जगह का बंदोबस्त भी पहले से ही हो जाना चाहिए। क्यों?
1: हंसने की क्या बात है? This is called pre-planning. हमारी शादी और बहादुर की शादी में बहुत फर्क है। बहादुर आ गया लगता है।
0: हाँ।
1: बहादुर, बहादुर।
2: आया साहब।
3: ओ मेम साहब, आप भी आ गए।
0: वाह बहादुर, तुम तो आज बड़े टिप टॉप हो, क्या बात है?
3: हम साहब वो आज।
0: घबराने की कोई बात नहीं बहादुर, मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है।
3: सब कुछ बता दिया?
0: हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
3: नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इधर ही बैठना, हम सब कुछ संभाल लेगा। साहब वो लोग आ गए साहब, हम हाथ जोड़ता है साहब, आप हमारा का ख्याल रखना साहब।
1: आइए आइए, तशरीफ लाइए।
4: सलाम साहब जी, सलाम साहब जी।
1: सलाम सलाम, बैठिए। अरे अरे नीचे नहीं,
4: नहीं साहब,
1: यहाँ यहाँ कुर्सी पर बैठिए।
4: अरे नहीं साहब, हम लोग नीचे ही ठीक है साहब।
1: ये कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं।
4: अच्छा लक्ष्मी, तुम इसी कुर्सी पे बैठ जाओ साहब जी, ये हमारा घर वाली है साहब, हमारा लड़की की माँ है साहब, ये बहुत शर्माता है साहब, बहुत शर्माता है। अरे मैं शर्माती रहोगी हीरा साहब को सलाम भी करोगी? सलाम करो।
5: सलाम साहब।
1: सलाम।
5: सलाम मैम साहब।
6: सलाम।
5: बहादुर, ये तुम्हारी मालकिन है, तुम तो बोला था कि तुम्हारे साहब ने भी शादी नहीं बनाया।
1: ये ठीक ही कहा था बहादुर ने आपसे, हमारी अभी शादी नहीं हुई पर एंगेजमेंट, मेरा मतलब है सगाई हो चुकी है।
4: मेम साहब शादी से पहले ही इसी घर में रहती हैं?
0: जी नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
4: होटल में साहब?
0: होटल नहीं, हॉस्टल, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं साहब, इससे भी बड़ा घर लेंगे तब।
1: ये सब बातें इनसे करने की क्या जरूरत है, ये लोग बहादुर के रिश्ते के लिए आए हैं, हमारी शादी तय करने के लिए नहीं। बहादुर भाई, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ।
3: मैं अभी लाता हूँ साहब।
0: ठहरो बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
1: आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
4: नहीं साहब नहीं, हम बिल्कुल नहीं साहब, हम लड़की वाले हैं साहब, हम आपका पानी तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते साहब।
1: अरे भाई ये सब पुरानी बातें हैं, ये घर बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं, आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं।
5: ए जी, बहादुर तो बोलता था साहब इसके माई बाप सब कुछ है, पर साहब तो कुछ और ही बोलते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत ना समझिए, मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। रीटा।
0: हाँ तो आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
4: अच्छा साहब, आप बहुत मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे साहब, दोनों ले लेंगे।
5: चलो आप साहब से साफ साफ बात कर लो।
1: हैं? क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लड़का नहायत शरीफ, मेहनती और अच्छे घर का है। मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है, इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो। और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए।
4: नहीं साहब नहीं, बहादुर के बारे में तो हम साहब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसका बाप हमारे गांव का है साहब।
1: तो फिर रुकावट किस बात की है, फौरन शादी कर डालिए। और हाँ बाय द वे, आपकी लड़की को बहादुर ने देखा तो है ना?
5: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं साहब, शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे?
1: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए।
5: ना, ना, ना, ना।
1: इसमें हर्जी क्या है, शादी तो उन दोनों को करनी है ना।
4: अरे क्या बोलता है साहब।

0: हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था शाह।
1: वो तो नजर आ ही रहा।
0: क्या मामा मतलब शाह?
2: नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है।
0: कुछ अदला बदला नहीं शाह, कुछ अदला बदला नहीं। दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया है शाह। हमारी पार्वती बहुत सुंदर है शाह। हाँ। कोई नुकश नहीं। हाँ, घर का सब काम का जानती है। खेती में काम करती है शाह। घर का चूल्हा चक्की।
2: खुशी की बात है ये तो। अब ये बताइए, शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
0: शादी की बात भी हो जाएगा शाह, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए शाह।
2: हाँ हाँ, क्या बात है?
0: तुम्हारी बात का शाह।
2: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला।
0: नहीं शाह नहीं, बात ये शाह के बात ये कि
3: मैं... तो बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है? अजी पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो शाह को, साफ साफ साफ बात कर दो।
0: चल तू ही बोल दे साफ साफ।
2: देखिए अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
0: नहीं शाह नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थूक दे शाह। हाँ, ये फैसला तो आपको करना है शाह।
2: मुझको?
0: जी
2: बोलिए बोलिए, क्या फैसला करना चाहते हैं
3: शाह? आप शादी कब करेंगे?
2: भाई मैंने तो आपको पहले ही से कह दिया था, ये सारी बातें आप बहादुर से ही करें।
0: तुम्हारी शादी का बहादुर थोड़ी फैसला करेगा शाह।
2: मेरी शादी? क्या मतलब?
0: मतलब ये शाह कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफिक ही हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
2: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं। मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहां करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं?
3: चलो जी अब बस बहुत हो गया। हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को शाह बोल दो। शाह का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
0: ठीक कहती है तू, बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा शाह माफी देना शाह, हमने आपका बहुत टाइम खराब किया शाह। चल लक्ष्मी।
4: क्या बात है शाह, ये लोग इतना गुस्सा में क्यों है साहब?
2: बहादुर तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
5: क्या फैसला करना है, मैं भी तो सुनूं।
0: बात ये मेम साहब के मेरा
3: तो पीछे हटो, मेम साहब से हम बात करेंगे। हाँ तो मेम साहब, शादी के बाद हमारा छोकरी बहादुर के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ठीक, फिर तुम्हें बोलो तुम्हारा और साहब का शादी अभी नहीं बना है, साहब अकेला है। मेम साहब, हम पार्वती को ऐसे कैसे इधर रहने को छोड़ देगा? हाँ
5: बिल्कुल ठीक।
2: रीटा तुम भी क्या इनके हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो? किस्सा मुख्तसर ये है कि ये चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले पहले, फिर बहादुर की शादी हो।
5: ये भी ठीक।
2: अरे व्हाट नॉनसेंस, हम अभी 10 बरस शादी नहीं करेंगे तो क्या बहादुर भी कुंवारा रहेगा?
5: कभी नहीं हो सकता।
2: क्या नहीं हो सकता?
5: ये है कि बहादुर कुंवारा रहे, इसीलिए ये जरूरी है कि पहले हम दोनों शादी कर ले।
2: ये कोई जबरदस्ती है?
0: चलो लक्ष्मी। सलाम मेम साहब। सलाम साहब।
2: क्या मुसीबत है, दिस इज स्टेट ब्लैकमेल। ठहरिए ठहरिए आप लोग, आप लोग बहादुर की शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी शादी का इंतजाम करते हैं।
0: थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं साहब। अच्छा बहादुर, शादी जब साहब का हो जाए तो हमको खबर देना।
5: अच्छा खबर नहीं बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
0: जरूर आएंगे मैम साहब, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम साहब। सलाम मैम साहब।
5: सलाम
0: साहब।
5: सलाम
0: मैम साहब।
2: बहादुर इन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ा।
5: ओह डार्लिंग, आई एम सो हैप्पी, लेट्स सेलिब्रेट इन अ ग्रैंड स्टाइल। चलो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी।
2: गुड आइडिया, मैं बस गया और आया।
6: भीम साहब जी, साहब किधर गया?
5: अंदर कमरे में तैयार होने।
6: अच्छा
5: वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
6: ये सब तो मैंने आपके लिए किया मेम साहब। हाँ, हम साहब को रोज रोज समझाता था, साहब शादी कर लो, साहब शादी कर लो, पर अपने कभी सुनता ही नहीं था साहब, तो इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था ना मेम साहब?
5: अरे ठीक नहीं था बहादुर। अच्छा बहादुर, तुम इन दोनों को कहाँ से पकड़ लाए?
6: ये दोनों हमारे सास ससुर है मेम साहब। हाँ, अपने मुल्क से बुलाया इनको।
5: ओ, तुम्हारे होने वाले सास ससुर?
6: ओ नहीं नहीं नहीं मेम साहब, हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था।
5: हाँ,
6: हाँ हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मेम साहब। तब हम अपनी पार्वती को इधर बुलाएंगे।
5: क्या बात है, वाह बहादुर वाह, मैं तो तुम्हें बिल्कुल बुद्धू समझती थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसी बात पर आज तुम्हें सारे दिन की छुट्टी और ये लो इनाम, और तुम भी मौज करो। हाँ
6: थैंक यू मेम साहब।

बहादुर की शादी, हरी मेहरा की लिखी नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत प्रीतम का।

आइए अब सुनते हैं नीरज श्रीधर और सुजैन डमेलो की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गाना। गीत इशात कामिल का है, संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम का अगला गीत बैड बॉय फिल्म से है। इसे गाया है अरिजीत सिंह और ज्योतिका तांगरी ने। गीत सोनिया कपूर रेशमिया का, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: चित्रलोक का शेष भाग अंतराल के उस पार

0: अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।
1: पल पल बिगड़ जाए

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना, ऐश किंग और शशा त्रिपाठी की आवाजों में। गीत राफत महमूद और तनिष्क बागची का है, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग-अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और

0: आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदे ईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
4: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ. मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
5: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी।

विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए। गीत लिखा है नक्शलालपुरी ने, संगीत जयदेव का है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि

0: बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गाना। गीत निदा फाजली ने लिखा है, संगीत से सवारा है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है कालीचरण, गीत इंद्रजीत सिंह तुलसिया का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजों में सुनिए सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अदालत फिल्म का गाना। गीत गुलशन वावरा ने लिखा है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर, इलारुन और साथियों की आवाजों में लम्हे फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिव हरी का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

दामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर

0: नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

0: दे।
1: फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: की श्रृंखला कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है और दुनिया के जितने उदास लोग हैं यह आसमान उनका साथ दे रहा है, यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

ये दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया की

कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर। कभी

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयान करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नख्मे, फिल्मों के नाम
1: आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: दो बदन, शकील बदायूनी, रवि।
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
0: हमराही हसरे जयपुरी, शंकर जयकिशन। मेरी हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: 2400024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: जयंत जी,
0: जी
1: आज की विविधा का आरंभ, मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का।
0: वाह।
1: एक ऐसा गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते। आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीत का।

0: क्या बात है, गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया
1: जी।
0: और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है
1: जी जी
0: रहे
1: जी
0: होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।
1: हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
0: निश्चय ही
1: और
0: बहुत उचित बात आपने कही है मनीषा जी, तत्सम शब्द होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
1: जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं और वो फिल्म

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नौरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ए मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मनपसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पाँव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहाँ पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना की हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है। इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है।

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखे जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित हूँ।

0: तुम क्षमा मैं भूल हूँ, एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए जी, तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार, और इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है असल में, फिल्मकार।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात
1: शायद
0: की है।
1: इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता
0: है। जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी, एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा, शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला।

0: किया था।
1: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की
0: जी,
1: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशोरी लाल आनंद के सुपुत्र।
0: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी
1: जी,
0: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। बाद में डून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी फिल्म के लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था
1: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था और उस फिल्म का नाम था राजकुमार जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
0: जी, 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
1: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत। और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है,
0: वही जो लता जी के स्वर में है।
1: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्ड सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
0: चलिए।

0: कितने महान फिल्मकार की आवाज हमारे पास है। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए चेतन आनंद जी द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
1: फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर और लद्दाख की वादियों में कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक दो फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। आप में से बहुत से भाई इस वक्त 2,000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी।

हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान की।
1: कर चले हम फिदा जान तन।

0: जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी,
3: जी
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतनानंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
3: अच्छा।
2: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतनानंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या किया था, क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
4: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने, यू नो, कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आगे तो धड़ रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो एक्सर करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में।
5: फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया,
4: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीज़ें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है, वो छोटी छोटी चीज़ें प्लान है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है, और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीज़ें उसने बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है, स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे।
1: बहुत लोकप्रिय गायक, जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था, और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओं, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल की बात है ये। और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं
0: अवश्य।

0: मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फैन थे। और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे, और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना, और वो भी पहले ही ब्रेक में,
0: जी
1: ये बहुत किस्मत

0: पलों की बात होती है।
1: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था,
0: जी
1: बहुत ही हिट था उन दिनों, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे।
0: जी हाँ
1: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि वो रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
0: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास से श्रोताओं विविध भारती के स्टूडियो में आए थे, तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: 20 में ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करनी पड़ेगी, वनडे में टिक कर खेलना पड़ेगा। क्या सेम प्लेयर्स दोनों फॉर्मेट में खेलें या फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, T20 में यंग अलॉट इंट्रोड्यूस किया जाए तो बेटर है?
1: देखिए T20 निश्चित तौर पर कि आपको एक ही स्पेल में मैच शुरू करना पड़ता है, और 50 ओवरों का जो क्रिकेट है उसमें आपको टिक कर खेलना है। लेकिन अभी आप ज्यादातर टीमों को देखिए तो जो फलक्रम होता है, जो कोर ग्रुप
0: जी
1: होता है, वो ऑलमोस्ट
0: सेम।
1: सेम ही होता है। हम अपनी महिला टीम की भी बात करें तो ऑलमोस्ट वही टीम है, ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जिन्होंने

वर्ल्ड कप जीता है 50 ओवरों का, तो अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि विराट कोहली का उदाहरण ले लीजिए आप, कि आप वो टीम